आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: फ्रीक्वेंसी पर। आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88 291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88 291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: ठंडा ठंडा मौसम में राव रेडियो दोस्त दीपाली इरोज की तरह हाजिर बाड़ी प्रोग्राम आपन दे आपन देखभाल लेके। दोस्तों सवेरे सवेरे जब ले हम रउआ से ना मिली तब ले ई लग भी ना करेला कि सवेर भइल बा, तो श्रोता लोग सवेर ता हो गइल बा। आ हमरा पता बा कि रउआ सब अपना कान के रेडियो सेट के पास लगावले बानी आज के घरेलू नुस्खा सुने खातिर। ता अब हम अपना कार्यक्रम के शुरू करी, उससे पहले रउआ सब के दीपाली की ओर से नमस्कार।

0: दोस्त लोग आज जानल जाई सबसे पहले चमकत त्वचा खातिर कुछ पौष्टिक पेय के बारे में। दोस्त लोग अपना डाइट में शामिल करी जूस और पानी। पेय पदार्थ के हमनी के डाइट में एगो अलग ही भूमिका होला, फिर भले ही वो पेय पदार्थ पानी होके या जूस। एके नियमित सेवन से हमनी के त्वचा में निखार आवे के साथ ही शरीर के भी भरपूर ऊर्जा मिलेला। फ्रूट जूस जहां आयरन और विटामिन से भरपूर होला, उन्हें वेजिटेबल जूस यानी सब्जी के जूस शरीर खातिर उपयोगी पोषक तत्व से युक्त होला। ये दोनों ही तरह के जूस के सेवन शरीर खातिर फायदेमंद होला। यदि रउआ बेहतर स्वास्थ्य पावे के इच्छा रखतनी तो रउआ आज ही से अपना डाइट में जूस और पानी के उचित मात्रा के शामिल करे के होई। कम मात्रा में पानी पिए से हमनी के शरीर में पानी के कमी हो जाला, जेके प्रभाव शरीर के साथ ही त्वचा पर भी देखल जा सकेला। चमक के बरकरार रखे खातिर रुआ हर दिन भरपूर मात्रा में पानी के सेवन करे के चाही। पानी हमनी के त्वचा के कोशिका के भी प्रमुख तत्व होला। जिस तरह से हमनी के त्वचा के बाहरी नमी के बरकरार रखे खातिर वही पर मॉइस्चराइजर लगावे निसन, वही प्रकार से त्वचा के अंदरूनी नमी व पोषण प्रदान करे खातिर हमनी के पानी के अधिक से अधिक सेवन करे के चाही। सौ प्रतिशत फल या सब्जी से बनावल गयल जूस हमनी के शरीर में विटामिन के पूर्ति करे के साथ ही त्वचा के भी पोषण प्रदान करेला। जवाब होके के साथ ही जूस त्वचा के गहराई से सफाई कर विषैला पदार्थ के बाहर निकालेला। एगो रिसर्च के अनुसार गहरा रंग के फल के जूस शरीर खातिर अधिक गुणकारी होला। ब्लूबेरी के जूस में हमनी के शरीर व त्वचा के लाभकारी एंटीऑक्सीडेंट के भरपूर मात्रा होला। चुकंदर के रस भी स्वास्थ्य खातिर बहुत फायदेमंद होला। ओलोंग टी के ब्लैक ड्रैगन टी के नाम से भी जानल जाला। ई विशेष प्रकार रोज चाइनीज रेस्टोरेंट में देखे के मिली। ई चाय में भरपूर मात्रा में पॉलीफिनोल्स होला, जौन की एक्जिमा और झुरी जैसन समस्या से त्वचा के सुरक्षा करेला। आँख के नीचे काला घेरा, चेहरा पर झुरी जैसन बढ़त उम्र के लक्षण के कम करे व वजन के नियंत्रित करे में ओलोंग टी बड़ा ही कारगर होला। त्वचा के लालीपन व खुजली के खत्म करे के साथ ही एलोवेरा के जूस त्वचा संबंधी अन्य समस्या जैसे एक्जिमा, सोरियोसिस में भी औषधि के तरह काम करेला। शुद्धि, पाचन क्रिया के बढ़ावल, आर्थराइटिस में कारगर व शारीरिक क्षमता के बढ़ावे के साथ ही एलोवेरा जूस के अनगिनत फायदा होला। रोजाना एक कप एलोवेरा जूस के सेवन हमनी के स्वास्थ्य व त्वचा संबंधी कई गो समस्या के निदान में कारगर है। वगैरह उबालल हरा पत्ती से बनावल जाला। यह वजह है कि ग्रीन टी में उच्च स्तर पर पॉलीफिनोल्स होला। जौन एगो आइसन केमिकल कंपाउंड है जौन के पिगमेंट एंटी एजिंग के तौर पर कार्य करके त्वचा में झुर्री के कम कर ओई के फोटो प्रोटेक्शन देवेला। विशेषता ओई के एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी होला। बाल खातिर भी ग्रीन टी बेहतर है। यदि हम शुद्धता की बात करी तो चाय में शुद्धता के मामला में ग्रीन टी से बेहतर कौनो नहीं थे। टी भी ग्रीन टी के समान पत्ती से ही बनावल जाला। स्वीट, स्पाइसी, चॉकलेट आदि ब्लैक टी के अलग अलग फ्लेवर्स होला। विटामिन ई और सी के साथ ही ब्लैक टी में मौजूद स्ट्रांग एंटीऑक्सीडेंट त्वचा पर प्रीमैच्योर एजिंग के लक्षण के कम करेला। ऐसन एस्ट्रिजेंट के तौर पर काम करेला जैसे चेहरा बेदाग व चमकदार बनेला। ब्लैक टी के बेहतर परिणाम खातिर एके बिना दूध के पी, काहे कि दूध एके एंटीऑक्सीडेंट गुण के घटावेला। कॉफी के सेवन ना करी। कॉफी में कैफीन व शुगर के अधिक मात्रा होखे के कारण इस त्वचा पर कील मुहासा के कारण बनेला। कॉफी में मौजूद टैनिन त्वचा के शुष्क बनावेला। अल्कोहल त्वचा के नमी के सोख त्वचा में ढीलापन लावेला। कॉकटेल, डाइग्यूर्स और मार्गरीटा में शुगर के बहुत अधिक मात्रा होला जौन त्वचा के नुकसान पहुंचावेला। सोडा में मौजूद शुगर व अन्य सामग्री हमनी के स्वास्थ्य खातिर नुकसानदेह होला। सोडा के अधिक मात्रा शरीर में पानी के स्तर के कम कर देवेला। बेहतर स्वास्थ्य खातिर जहाँ तक संभव हो के हमनी के सोडा पिए से बचे के चाहिए। तो दोस्त लोग अब हम ले आपन दे आपन देखभाल कार्यक्रम से जाए के अनुमति। तो खुशी खुशी आपन दोस्त दीपाली के दी जाए के इजाजत। रुआ सुनत रही रेडियो रिमझिम 90.4। फिर होई हमार भेंट काल। तब तक खातिर नमस्कार।
1: तो भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
2: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
1: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
3: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
4: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
5: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
6: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
7: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-0096-575।
8: समय, लोग, नियत, सोच और चेहरे बदलते हैं, दृष्टि भी बदलती है, पर घटनाएं नहीं बदलती। वो स्वयं को बार बार दोहराते हैं, पर वो एक ही समय में बाहर भी घटते हैं और भीतर भी। मैं संसार की उन सभी घटित घटनाओं का साक्षी हूं। मैं वो आंख हूं जो सब कुछ देखती है अपलक, क्योंकि मैं आकाश हूं। मैं आपको महाभारत की फिर वही कहानी सुनाने आया हूं, जिसमें कहीं हम युधिष्ठिर की तरह हारे हुए खिलाड़ी हैं, तो कहीं शकुनी की तरह चौसर के चतुर, कहीं दुर्योधन की तरह बिगड़ैल कुमार हैं, तो कहीं भीम की तरह बेबस महाबली। ये बात और है कि जीवन के इस खेल में कोई जीतने के लिए बार बार हारता है। हैरानी की बात है ना, मैं भी हैरान हूं। लेकिन शकुनी का खेल भी कुछ ऐसा ही था कि वो बार बार हार रहा था।
9: आपकी बुद्धि तो भ्रष्ट नहीं होगी ना मामा? जब आपको खेलना नहीं आता तो चौसर के इस आयोजन की आवश्यकता क्या थी मामा? आपको क्या लगता है, क्या मैं अपने अपमान का बदला लेने का कोई और तरीका नहीं ढूंढ सकता था? क्यों मेरी नाक कटवा रहे हो मामा?
10: लोमड़ी सा सोचो, बाघ सा नोचो भांजे, तुम बहुत कच्चे हो, इसलिए मामा शुकनी से प्रश्न कर रहे हो। ये जीवन एक खेल है, संख्याओं का मेल है, सिर्फ खेल देखो भांजे, सिर्फ खेल देखो।
9: देख तो रहा हूं मामा, देख तो रहा हूं, उन पांडवों के मुख पर मुस्कान देख रहा हूं, अपनी नाक कटते देख रहा हूं मामा, और कितना दिखाओगे, क्या दिखाओगे?
10: मिट्टी डालो भांजे, अपने इस तुच्छ ज्ञान पर मिट्टी डालो। कुछ सच भविष्य के गर्भ में छुपे होते हैं, जिन्हें तुम्हारी ये साधारण आंखें हैं ना नहीं देख सकती, इसलिए धीरज रखो भांजे।
9: धीरज के कारण ही तो ये इतना कुछ देख लिया मामा, पर अब और नहीं देखा जाता ना, और नहीं, मेरा धीरज टूट रहा है मामा।
10: मेरे ये पासे वो तूफान है जो पांडवों को उड़ा के ले जाएंगे भांजे। पांडवों की विजय तो बस उस तूफान से पहले की शांति है, शांति।
9: तो इस बार क्या होगा, क्या वो हारे हुए सारे गांव, सारे हाथी और घोड़े हमें वापस मिल जाएंगे?
10: तुम बस देखते रहो भांजे, और मेरी तरह लोमड़ी सा सोचो और बाघ सा नोचो।
11: ये भरत वंश का दुर्भाग्य है विदुर, विनाश का आरंभ है ये द्यूत।
12: मैं कभी इस द्यूत क्रीड़ा के पक्ष में था ही नहीं तात।
11: परंतु इस द्यूत से भी बड़ा दुर्भाग्य है शस्त्र प्रदर्शन। मैं समझ नहीं पाता कि अतिथि के रूप में आए हुए इन पड़ोसी राजाओं को किसने आमंत्रित किया है।
12: और कौन करेगा तात? मामा शकुनी के इशारे पर भांजे दुर्योधन ने आमंत्रित किया है।
11: तो क्या इसे ज्ञात नहीं है कि आपसी क्रीड़ा में पड़ोसी राजाओं को आमंत्रित करना राज धर्म के विरुद्ध है?
12: ये शकुनी की कूटनीति है तात। उसने सोचा होगा कि यदि कोई हस्तक्षेप करे तो बल प्रयोग किया जा सके।
11: मैं जानता था कि विदुर ऐसा ही होगा।
10: इस बार दाव पे क्या लगा रहे हो भांजे दुर्योधन?
9: रत्न भंडार, मैं अपना रत्न भंडार दाव पे लगाता हूँ मामा।
13: तो मैं भी रत्न भंडार दाव पर लगाता हूँ। ये रहा
11: 5।
10: ये मारा 5 नहीं 3। इस बार तुम बाजी हार गए महाराज युधिष्ठिर।
13: रुको मामा शकुनी, बिना खेले आप अपनी जीत की घोषणा नहीं कर सकते।
10: हाथ कंगन को आरसी किया, अभी देख लेते हैं। ये रहा 5।
9: अब तो ठीक है ना धर्मराज, अब तो हम जीत गए ना हैं? यह भी कोई शंका बाकी है?
13: तो ठीक है मामा, अब मैं अपना संपूर्ण स्वर्ण और आभूषण दाव पर लगाता हूँ।
10: और तुम बोलो मेरे प्यारे भांजे,
9: अब भ्राता युधिष्ठिर की बराबरी तो मैं नहीं कर सकता, पर फिर भी मैं भी अपने स्वर्ण और आभूषण दाव पे लगाता हूँ, क्योंकि खेल तो बराबरी का होना चाहिए।
10: इसके लिए ये रहा 7। महाराज युधिष्ठिर, देखो देखो देखो, आ गया है 7। तुम्हारी फिर से होगी ये मात।
2: महारानी, महारानी द्रौपदी।
14: क्या हुआ निहारिका, क्या मेरी आशंका सच हुई?
2: हाँ, महाराज युधिष्ठिर ने तो 2 दावों में इंद्रप्रस्थ को दरिद्र बना दिया।
14: बस अब आगे कुछ मत कहो, मैं सुन नहीं पाऊंगी।
2: पर महारानी, सच तो सच है, इसे स्वीकार तो करना होगा।
14: ये सच तो मैंने उसी समय स्वीकार कर लिया था जब दुर्योधन का निमंत्रण आया था, तभी मुझे इसका आभास हो चुका था। सुनो, क्या अभी भी पांडव खेल रहे हैं?
2: जी महारानी, ये खेल अब रुकने नहीं वाला है देवी।
10: युधिष्ठिर, और कुछ है दाव पे लगाने के लिए?
13: मैं अपनी सेना, दास दासियां, अन्न भंडार और इंद्रप्रस्थ दाव पर लगाता हूँ।
9: वाह वाह भैया युधिष्ठिर, वाह, ये हुई ना बात, तो मैं भी दाव पर लगाता हूँ। पासे फेंकी मामा, पासे फेंकी।
10: चलो फेंका और समझो के जीता। 3। लो आ गया 3। भांजे तुम हुए धनवान और युधिष्ठिर हुआ 3।
9: वाह मामा वाह।
11: ये पांडवों की नहीं, कुरुवंश की हार है विदुर। उस कुरुवंश की जिसे मैंने वट वृक्ष की तरह अपने रक्त से सींचा है, और मैं अपने जीते जी कुरुवंश की पराजय कभी नहीं देख सकता।
12: तो रुकवाइए इस द्यूत को, ये द्यूत रुकवाया जा सकता है तात?
11: नहीं विदुर, नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। इस स्थिति में दुर्योधन और शकुनी को रोकने की कोशिश भी की गई तो ये सभागृह युद्ध का मैदान बन जाएगा।
12: आप उन्हें ये द्यूत क्रीड़ा रोकने का आदेश तो दीजिए तात, संभव है हस्तिनापुर की प्रतिष्ठा बच जाए।
11: क्या बचाने की कोशिश करूं विदुर, युधिष्ठिर अपनी सेना तक हार चुके हैं, अब तो बस स्वयं को दांव पे लगाना शेष है। और विवशता ये है कि शकुनी की चालों में फंसे युधिष्ठिर ऐसा करने से भी पीछे नहीं हटेंगे।
15: भैया अब बंद कीजिए विनाशकारी खेल और चलिए यहां से।
10: पर भीम, धर्मराज खेल छोड़कर जाएंगे कहां? चूहे की बिल में या द्रौपदी के दिल में? अब तो तुम्हारे पास इंद्रप्रस्थ तक नहीं है। जो कुछ तुम हार गए हो वो सब कुछ वापस पाने के लिए एक ही रास्ता है, दाव लगाओ। लगाओ दाव, जो अभी भी शेष है उसे लगाओ।
12: मामा सत्य कह रहे हैं बड़े भैया।
10: विचार मत करो धर्मराज, सत्यानाश हो जाएगा, दाव लगाओ।
12: आप सुन रहे हैं महाराज, कुरुवंश के लिए जितना मान सम्मान पितामह भीष्म ने अर्जित किया है, कुमार दुर्योधन उसे मिट्टी में मिला रहे हैं।
10: मुझे दुख है विदुर कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं।
12: आप महाराज हैं, हस्तिनापुर के सम्राट, और आप विवशता की बातें कर रहे हैं। आप देख नहीं सकते, पर क्या आपको सुनाई भी नहीं देता? क्या आपने कभी सोचा था कि दुर्योधन का द्वेष इस सीमा तक जाएगा कि वो पांडवों का मान सम्मान मिटाकर उन्हें अपना दास बनाना चाहेगा?
10: नहीं विदुर, नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो इतना कुछ करेगा। तुम नाहक भयभीत हो रहे हो।
12: आप सच को झुठलाने की भूल कर रहे हैं महाराज। यदि आप हस्तिनापुर को विनाश से बचाना चाहते हैं तो इस द्यूत क्रीड़ा को अभी रोक दें। मेरी बात समझने का प्रयास करें महाराज, हस्तिनापुर सर्वनाश के सन्मुख खड़ा है।
16: बस बस बस तात विदुर, बस इस सभा को बाधित करने का प्रयास ना करें, अन्यथा ऐसा ना हो कि हस्तिनापुर के पहले सर्वनाश आपको देखना पड़े।
12: विवेक से काम लो कुमार दुशासन, तुम्हें पता नहीं तुम क्या बोल रहे हो।
16: मुझे अच्छी तरह पता है तात, मुझे समझाने का प्रयास ना करें। क्या आपको लगता है कि हम आपकी भावनाएं नहीं समझ रहे हैं?
12: आप इन्हें कुछ बोलते क्यों नहीं महाराज?
17: चुप रहिए तात विदुर,
18: चुप रहिए, वरना मेरी तलवार आपके रक्त से अपनी प्यास बुझाएगी। इस सभा की मर्यादा भंग कर रहे हैं आप तात, शांत हो जाइए।
10: शांत हो जाइए, सब लोग शांत हो जाइए, इन्हें जीतने का मौका भी तो देना चाहिए ना।
14: निहारिका, युद्ध सभा में क्या हो रहा है, कोई सूचना? मैं तो इस स्थिति में वहां जा भी नहीं सकती।
19: वहां जो हो रहा है मुझमें उसे बताने का साहस नहीं है देवी।
14: क्या हुआ, कोई अनहोनी तो नहीं हुई ना निहारिका?
19: इससे अधिक अनहोनी और क्या होगी महारानी। महाराज युधिष्ठिर पूरा इंद्रप्रस्थ हार चुके हैं।
14: क्या, ये क्या किया धर्मराज ने? मैं ये सब बंद करा कर रहूंगी।
19: अब ठहरिए देवी, आप रजस वाला हैं, ऐसे में आप सभा में कैसे जा सकती हैं? काश आप ये सब सुनने के लिए हस्तिनापुर आती ही नहीं।
14: मैं जानती थी यही होने वाला है। मैं जानती थी उस नीच दुर्योधन के षड्यंत्र को, मैं जानती थी।
12: यदि खेल आगे बढ़ा तो अनर्थ हो जाएगा महाराज। अपने पुत्र की बातें सुनी आपने? दुर्योधन में पांडवों से सीधे लड़ने का साहस नहीं है, इसलिए वो दुष्ट शकुनी के इशारे पर नाच रहा है। यदि आपने इस खेल को यहीं पर बंद नहीं करवाया तो कुरुवंश के साथ साथ सारे आर्यवर्त का भविष्य अंधकार में डूब जाएगा महाराज।
18: तात विदुर जो कर रहे हैं पिताश्री, उसके लिए यदि मैं उन्हें काल के मुख में भी भेज दूं ना तो मुझे दोष मत दीजिएगा।
10: ऐसा ना कहो पुत्र, तुम नहीं जानते कि तुम्हारे तात विदुर सदा तुम्हारा हित चाहते हैं।
18: मुझे मत समझाइए पिताश्री, कौन मेरा हित चाहता है कौन नहीं मैं सब जानता हूं। जैसे कर्म है इनके, इससे तो ये मेरे तात हो ही नहीं सकते, 100 जन्मों में भी नहीं। एक दासी पुत्र दुर्योधन का तात कभी हो नहीं सकता पिताश्री।
10: तुम निरंकुश हो रहे हो पुत्र, भले बुरे की पहचान भूल रहे हो। विदुर जैसे ज्ञानी का परामर्श व्यर्थ नहीं है।
18: मैं जो कुछ भी करूंगा पिताश्री, इस दासी पुत्र की इच्छा से तो बिल्कुल नहीं करूंगा। भले ही आप उसे निरंकुशता कहें, पर ईश्वर सदा मेरे साथ है और मैं सदा उसी के कहे पर चलता हूं।
10: शांत हो जाइए, सब लोग शांत हो जाइए, और मेरी एक बात ध्यान से सुन ले। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने अनुज नकुल को दांव पे लगाया है।
11: यदि जीत गए उन्हें अपना स्वर्ण और अन्न भंडार वापस मिल जाएगा, और नहीं तो नकुल हमारे सेवक होंगे।
8: इस बार भी कुमार युधिष्ठिर की बाजी हाथ से निकल गई। अब निकल गई क्या करें, उसके पास हताशा के अलावा कुछ नहीं बचा, सब हार गया। लेकिन आपको मालूम है हार का सबसे बड़ा कारण सही फैसले न ले पाना। रिस्क इज अ पार्ट ऑफ एवरी गेम, बट शुडंट इट बी अ कैलकुलेटिव रिस्क? ऐसे सवाल आया मन में तो पूछ लिया। एनीवेज, उधर कुटिल शकुनी दुर्योधन की बुद्धि और विवेक पर छा चुका था, और इधर पितामह भीष्म और महाराज धृतराष्ट्र कुछ नहीं कर सकते थे। कुछ नहीं मतलब नथिंग। सुनते रहिए महाभारत।

0: ठक ठक।
1: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
3: जी हाँ कमलश्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
3: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
5: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
6: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
4: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
6: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
6: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
6: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
4: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ अंकल, मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6052 62112 पे।
4: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
6: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
7: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
6: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
7: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
6: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
7: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
6: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
8: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198886973। प्यारा

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।

0: 6978856 या 6203139564।
1: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
2: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
3: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल।
2: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
3: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
2: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
3: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेष टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
2: संपर्क करें 84710309 या 97665650।
4: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। सड़क सुरक्षा को लेकर जिलाधिकारी ने की समीक्षा बैठक, पुलिस अधीक्षक और जिला पदाधिकारी के कार्यालय में सुनी गई जनता की फरियाद, नदी में डूबने से एक किशोर की मौत, परिजनों में मचा कोहराम, कर्नाटक में बिहारी कहकर गोपालगंज के मजदूर की हत्या, अज्ञात बदमाशों ने एक घर पर सो रहे अधेड़ को मारी गोली। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। बिहार सरकार की सड़क हादसों पर रोक लगाने और जान माल की क्षति को कम करने के लिए पूरे राज्य भर में अभियान शुरू कराया गया है। इसी कड़ी में गोपालगंज के जिला पदाधिकारी समीर सौरभ की अध्यक्षता में आज सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई, जिसमें संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान जिले में सड़क दुर्घटनाओं की स्थिति, दुर्घटना संभावित क्षेत्रों, ब्लैक स्पॉट, यातायात नियमों के अनुपालन तथा सड़क सुरक्षा से जुड़े विभिन्न बिंदुओं की विस्तृत समीक्षा की गई। जिला पदाधिकारी ने सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया। बैठक में बताया गया कि पिछले सड़क हादसों की समीक्षा के दौरान पाया गया है कि 2022 में 277 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गई थी, जिनमें 248 की मौत हुई, 191 लोग जख्मी हुए। 2023 में 269 सड़क हादसों में 221 लोगों की मौत हुई, 143 लोग घायल हुए। 2024 में 255 दुर्घटनाओं में 202 लोगों की मौत हुई, 207 लोग घायल हुए। 2025 में 243 हादसों में 200 लोगों की मौत हुई, 138 लोग घायल हुए। तो वहीं 2026 में अभी अगस्त महीने तक ही 206 सड़क हादसे हुए हैं, जिनमें से 177 लोगों की मौत हुई है और 100 लोग घायल हुए हैं। इन आंकड़ों को गंभीरता से लेते हुए दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाने पर प्रशासन ने बल दिया है। जिलाधिकारी ने कहा कि सड़क सुरक्षा सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रशासन, पुलिस, परिवहन विभाग सहित सभी संबंधित विभागों के साथ आम नागरिकों की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। सभी लोग यातायात नियमों का पालन करें तो सड़क हादसों में काफी हद तक कमी लाई जा सकती है। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को सड़क सुरक्षा से जुड़े कार्यों में गंभीरता बरतने और दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बिहार सरकार के मुख्यमंत्री के निर्देश पर जन समस्याओं के त्वरित और प्रभावी समाधान को लेकर प्रशासन की ओर से लगातार पहल की जा रही है। इसी कड़ी में आज जिलाधिकारी ने अपने कार्यालय में सबका सम्मान जीवन आसान के तहत जनता दरबार में लोगों की समस्याओं को सुना और उसे निष्पादित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने भी अपने कार्यालय में जनता दरबार के माध्यम से लोगों की समस्याओं को सुना और उसे निष्पादित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। बरौली थाना क्षेत्र के बतरदे गांव में एक युवक की नदी में डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक शौच के लिए नदी किनारे गया था, इसी दौरान पैर फिसल गया और नदी में डूबने से उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। मौके पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज

0: दिया। मृतक बरौली थाना क्षेत्र के बतरदे गांव का 14 वर्षीय नौशाद अली बताया जा रहा है। घटना के बाद से ही परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। कर्नाटक में स्थानीय लोगों द्वारा कथित रूप से बिहारी कहकर गोपालगंज के एक मजदूर की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि मृतक बिशंभरपुर थाना क्षेत्र के तिवारी मटिहनिया गांव का पीर मोहम्मद का 35 वर्षीय पुत्र चांद मोहम्मद है। वह वेल्डिंग का काम करता था और पिछले करीब 3 वर्षों से पुणे में रहकर काम कर रहा था। ठेकेदार के माध्यम से वह वेल्डिंग के काम के लिए कर्नाटक गया था। परिजनों के अनुसार कर्नाटक में किसी बात को लेकर चांद मोहम्मद का कुछ स्थानीय लोगों से विवाद हो गया। आरोप है कि विवाद के बाद स्थानीय लोगों ने उसके साथ मारपीट की और कथित रूप से बिहारी कहकर प्रताड़ित किया। मारपीट में चांद मोहम्मद गंभीर रूप से जख्मी हो गया। यह घटना 8 सितंबर के रात की बताई जा रही है। परिजनों के अनुसार घटना के अगले दिन सुबह पुलिस ने चांद मोहम्मद को अचेत अवस्था में देखा। इसके बाद उसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज कराया गया। घटना की जानकारी मिलने पर परिजन कर्नाटक पहुंचे। चांद मोहम्मद की गंभीर स्थिति देखते हुए परिजन उसे अस्पताल से बिहार लेकर आने के लिए निकले। इसी दौरान रास्ते में इसकी मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों ने स्थानीय थाने में मारपीट करने वाले आरोपियों के खिलाफ हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है। हथुआ थाना क्षेत्र के मिर्जापुर गांव में सुबह एक गोलीबारी की घटना सामने आई, जिसमें एक अधेड़ को गोली मार दी गई है। बताया जा रहा है कि पीड़ित अपने बाथान में सो रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार 3 हथियारबंद अपराधियों ने गोली मार दी। गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए। वारदात के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। घायल की पहचान हथुआ थाना क्षेत्र के मिर्जापुर गांव निवासी मजिस्टर यादव, उम्र 50 वर्ष, पिता रामचंद्र यादव के रूप में हुई है। मजिस्टर यादव बथान में सोए थे, तभी 3 अपराधियों ने उन पर हमला किया। उनके पास राइफल और पिस्टल बताई जा रही है। अपराधियों के साथ मजिस्टर यादव की हाथापाई भी हुई। इसी दौरान एक अपराधी ने पिस्टल से उन्हें गोली मार दी। गोली उनके बाएं सीने में लगी है। घटना के बाद उन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है और पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। उत्पाद विभाग की पुलिस ने कुचायकोट के भाटवा मोड़ के पास एक बोलेरो गाड़ी को पकड़ा, जिसके अंदर से 91 लीटर से अधिक देशी विदेशी शराब मिली है। इसमें मोतिहारी के रहने वाले अमीरुल्लाह देवान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह उत्तर प्रदेश की तरफ से बोलेरो गाड़ी में शराब लेकर मोतिहारी की तरफ जा रहा था, तभी भटवा मोड़ के पास उत्पाद पुलिस ने इसे पकड़ लिया और अब इसकी गाड़ी शराब को जब्त कर इस पर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। कलवार समाज के द्वारा आयोजित भगवान श्री बलभद्र पूजा का आयोजन 24 सितंबर को धूमधाम से मनाने की तैयारी पूरी की गई है। 21वां श्री बलभद्र पूजनोत्सव कार्यक्रम भव्य तरीके से कलवार महासभा के नेतृत्व में आयोजित होगा। इसको लेकर बैठक की गई और निर्णय लिया गया कि सुबह 9 बजे से पूजा होगी और 11 बजे से महाप्रसाद का वितरण किया जाएगा। 2 अलग अलग मामलों में हत्या के प्रयास को लेकर फरार चल रहे 3 आरोपियों को आज फुलवरिया थाना की पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस मामले में पुलिस की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार पकड़ा गया एक आरोपी जमरुद्दीन मियां है, जो सलाउद्दीन मियां का पुत्र है, और दूसरा इरशाद अली नौशाद मियां का पुत्र है। ये दोनों फुलवरिया के बथुआ बाजार गांव के रहने वाले हैं। इन पर पहले से ही हत्या के प्रयास का मामला दर्ज था और पुलिस इन्हें ढूंढ रही थी। आज इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही एक दूसरे मामले में फरार चल रहे अभियुक्त संदीप गिरी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। यह फुलवरिया के ही गोसाई माझा गाँव के दिनेश गिरी का पुत्र बताया जा रहा है। इन पर भी पहले से हत्या के प्रयास का मामला दर्ज था। इन्हें भी आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और सभी आरोपियों को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। शराब तस्करी को लेकर बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने चेक पोस्ट पर तैनात अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जो भी लंबे समय से अधिकारी यहां तैनात हैं, उन्हें चिन्हित कर उनको हटाया जाएगा। सभी चेक पोस्ट पर ट्रक पिकअप समेत अन्य वाहनों की आधुनिक तकनीक से जांच की जाएगी। मंत्री ने कहा कि 2-3 महीनों में पहले की तुलना में अधिक शराब पकड़ी गई है। युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील भी की गई। शहर में इस बार गणेश चतुर्थी के अवसर पर पुरानी चौक ब्रह्म स्थान के पास गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की गई है और यहाँ पूरे विधि विधान से भगवान श्री गणेश की पूजा आराधना की जा रही है। आज भी कई लोगों ने यहाँ पूजा आराधना कर भगवान गणेश का आशीर्वाद लिया। इसमें रोहित जायसवाल, सागर कुमार, हिमांशु कुमार, रिशु, अमन, यशराज, कृष्णा, आशीष, सोनी इत्यादि लोगों ने भरपूर सहयोग किया। इसकी जानकारी छत्रपति शिवाजी समाज कल्याण ट्रस्ट के अध्यक्ष आनंद बिहारी श्रीवास्तव और मनोज पांडे ने दी। उन्होंने कहा कि हम सबके सहयोग से भगवान गणेश की पूरे विधि विधान से गणेश चतुर्थी के अवसर पर पूजा आराधना किया जा रहा है। गोपालगंज के मॉडल सदर अस्पताल में अब नवजात बच्चों के इलाज की सुविधा को लेकर और बेहतर व्यवस्था की गई है। अस्पताल में संचालित 10 बेड के SNCU को अब नए भवन के फर्स्ट फ्लोर में 17 बेड की क्षमता के साथ वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा है। बेड की संख्या बढ़ने से गंभीर नवजात बच्चों को अब भर्ती कर वहां इलाज करने में अस्पताल प्रबंधन को काफी सहूलियत मिलेगी। SNCU में जन्म के बाद सांस लेने में परेशानी, कम वजन, संक्रमण और अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे नवजात बच्चों को चिकित्सकीय निगरानी में रखा जाता है। नए वार्ड में अतिरिक्त बेड उपलब्ध होने से ऐसे बच्चों के इलाज की क्षमता बढ़ेगी। गंभीर नवजातों को समय पर भर्ती कर इलाज उपलब्ध कराने में भी इससे मदद मिलेगी। सदर प्रखंड के कोटवा में धर्म पारायण विदुषी और समाज सेवी स्वर्गीय जगरोशनी देवी की 40वीं पुण्यतिथि के अवसर पर प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी रघु रोशनी सेवा संस्थान कोटवा और अभिलाषा ज्योति फाउंडेशन पटना के संयुक्त तत्वाधान में शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिभाशाली और जरूरतमंद विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान मध्य विद्यालय कोटवा की विभिन्न प्रतियोगिताओं में सफल 5 छात्र छात्राओं के लिए अगले शैक्षणिक सत्र से रघु रोशनी स्मृति छात्रवृत्ति, विपिन बिहारी श्रीवास्तव स्मृति छात्रवृत्ति और भवानी मीरा एवं प्रतिबिंब अभिनव छात्रवृत्ति प्रति विद्यार्थी 1,000 रूपए मासिक छात्रवृत्ति के रूप में दूसरे सत्र की शुरुआत की गई है। पिछले सत्र में चयनित छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति की अंतिम किस्त भी दी गई। साथ ही कक्षा 1 से 8 तक के प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के साथ नियमित एवं अनुशासित 3, ऑलराउंडर 3 और निर्धन कोटि के 3 तथा चित्रकला के 2 विद्यार्थियों को स्कूल बैग, कॉपी किताब, कलम, वस्त्र, मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। सह डिग्री हाई स्कूल के छात्र छात्राओं को भी उनकी उपलब्धियों के लिए पुरस्कृत किया गया। इस दौरान संस्थान के तरफ से सामान्य प्रशासन विभाग के सेवानिवृत्त अपर सचिव आनंद बिहारी प्रसाद, उनकी धर्मपत्नी ज्योति श्रीवास्तव सहित तमाम गणमान्य लोगों ने अतिथियों का स्वागत किया। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में ADM अजय कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार पांडे और सेवानिवृत्त DIG RN सिंह ने जगरोशनी देवी के व्यक्तित्व और कृतित्व को स्मरण करते हुए शिक्षा के माध्यम से समाज सेवा की इस पहल की सराहना की। इस कार्यक्रम के उपरांत जिला शिक्षा पदाधिकारी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा,
1: ये रघु रोशनी सेवा संस्थान के द्वारा मातृ स्मृति समारोह आनंद सर के द्वारा आयोजित किया गया है, जिसमें स्कूल के भी बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं। आज हिंदी दिवस भी है, बच्चे हिंदी दिवस भी मनाए और मातृ स्मृति दिवस में सहभागिता भी की। सर का ये प्रयास बहुत अच्छा है और बच्चों को मोटिवेट किया गया, बच्चों को उत्साहित किया गया, इसमें बच्चियों ने अच्छा प्रदर्शन किया।
0: और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। सड़क सुरक्षा को लेकर जिलाधिकारी ने की समीक्षा बैठक। पुलिस अधीक्षक और जिला पदाधिकारी के कार्यालय में सुनी गई जनता की फरियाद। नदी में डूबने से किशोर की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। कर्नाटक में बिहारी कहकर गोपालगंज के मजदूर की हत्या। अज्ञात बदमाशों ने एक घर पर सो रहे अधेड़ को मारी गोली। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: राधा, तुमने अपनी चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में। क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज यहाँ सम्राट हॉस्पिटल जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
4: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
3: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9478434668 पे।
5: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
6: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
7: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
8: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9493945651 या 9707065775।
9: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
7: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
8: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है, चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
7: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
8: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 9452111001।
10: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज, ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
7: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
11: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
7: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
11: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
7: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
11: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
7: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
8: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।
12: भारतवर्ष, महानायकों की गौरव गाथा, अनुपम खेर के साथ
13: भारतवर्ष की यात्रा जारी है। महात्मा बुद्ध, चाणक्य, सम्राट अशोक, आदि शंकराचार्य जैसे व्यक्तित्वों की आभा चमक को हमने महसूस किया। अगले पड़ाव पर आज हम ऐसे व्यक्ति की विराट छाया में खड़े हैं जिनके नाम का अर्थ होता है महान। नमस्कार, मैं अनुपम खेर, भारतवर्ष की इस अद्भुत और विराट यात्रा में आपका स्वागत है। मैंने कहा आज हम एक ऐसे व्यक्ति की विराट छाया में खड़े हैं जिनके नाम का अर्थ होता है महान। कहते हैं पेशे से वो बुनकर थे, कपड़ा बुनने का काम करते थे, लेकिन अपने समाज के लिए वो ऐसी बातें बुनकर कहकर चले गए कि आज उनके बगैर भारत की कहानी अधूरी है। एक बात और, वे व्यक्ति आज से 600 साल पहले हुए और उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि अगर आज वो होते तो ना जाने कितने मुकदमे हो गए होते उन पर। जी, उन्हें कबीर कहते हैं। चलिए इस बार भारतवर्ष में कबीर को ढूंढते हैं, खुद में अपने अंदर कबीर को ढूंढते हैं और कबीर में खुद को ढूंढते हैं।
14: अरे धीरे धीरे रे मना, मुझे लगता है कबीर इनके अंदर भी है, कबीर इनके अंदर भी है। कबीर में ना अमीर है ना गरीब है, कबीर हर इंसान के अंदर है, बट उसको बस पहचानना है।
15: कबीर एक साक्षात एहसास है हर इंसान का अपना।
16: मेरे लिए कबीर मुझे काफी ग्राउंड करता है। कबीर
17: कबीर एक वे ऑफ लाइफ है बेसिकली।
18: कबीर कबीर कबीर
19: हो जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँ को मेरे राम गाड़ी।
18: कबीर नाम की ये गूंज हमने सुनी मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के गांव लुनिया खेड़ी में।
19: अरे गाड़ी भारी रंग रंगीली पहिया है लाल।
18: पिछले 20 साल से दिल्ली से लगभग 900 किलोमीटर दूर इस गांव में कबीर प्रेमी और कबीर भक्तों की भीड़ जुटती है।
19: ए जी गाड़ी भारी रंग रंगीली पहिया है लाल गुलाब।
14: मैं फिल्म एडिटिंग करता था, मैंने अपना काम छोड़ दिया। उनका इतना प्रभाव हमारे पर पड़ा, हमारे उसमें जो वायलिन बजाते हैं वो इंजीनियर थे, उन्होंने इंजीनियरिंग छोड़ दी। मैं किताबों से नहीं पढ़ा कबीर को, मैं सच्ची बोलूंगा, मैंने इसीलिए स्कूल छोड़ दिया, मैं ड्रॉप।
20: When you stop being the center of your own world and when you realize that you're part of a bigger community, it's a great feeling to be part of something bigger than yourself. So I think that's what I felt.
18: कबीर के शब्द और सुर में डूबने के लिए लोग हजारों मील की दूरी तय करने के लिए तैयार रहते हैं।
19: अरे लाली देखन में गई तुम्हें हो गई लाल।
18: लेकिन इससे पहले कबीर की चोट लगती है। ये चोट ऐसी है जिससे लगने पर आनंद का अनुभव होता है।

0: चोट शब्द की चोट, जिसको कहते हैं हम सबद, सबद की चोट, जिन जाना तिन माना है भाई। तो जिसको लग गई वो लग गई, लागी होए सो जाने हो सबद की।
1: कबीर को कुछ लोग भगवान मानते हैं, कुछ भगवान का अवतार, कुछ लोग फकीर दरवेश, कुछ लोग कबीर को भगवान राम का भक्त मानते हैं, कुछ लोग उन्हें निर्गुण संत मानते हैं, कुछ सतगुरु तो कुछ लोग कवि मानते हैं। सबके अपने अपने कबीर हैं। चलिए असली कबीर को ढूंढा जाए।
2: संत कबीर को ढूंढने निकले तो पहुंचे काशी, काशी जिसे बनारस या वाराणसी कहते हैं।

0: कबीर ने कहा था, तू ब्राह्मण मैं काशी का जुलाहा, चिन्हन मोर ज्ञानी, यानी तुम ब्राह्मण हो मैं काशी का जुलाहा हूं, मेरे ज्ञान को पहचानो।
1: ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं भरत।
0: इससे ये बात साफ होती है कि काशी में कबीर पले बढ़े, काशी ही उनकी कर्मभूमि थी।
1: ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास रे।
2: बनारस केवल धार्मिक केंद्र नहीं था, बनारस बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था। और जैसे आज आप पश्चिम एशिया कहते हैं या दक्षिण एशिया या इवन दक्षिण पूर्व एशिया कहते हैं, ऐतिहासिक प्रमाण इस बात के हैं कि वहाँ तक के व्यापारी बनारस आते थे कारोबार के सिलसिले में। कबीर बनारस के थे, बनारस अपने समय का एक कॉस्मोपॉलिटन नगर था। वहाँ तमाम तरह की भाषाएं बोलने वाले लोगों से कबीर का संपर्क हुआ होगा, तमाम तरह के धार्मिक मतों को मानने वाले लोगों से कबीर का संपर्क हुआ होगा।
0: काशी के पास लहरतारा तालाब है जिसमें कमल के फूल उगा करते थे। कबीर से जुड़ी कहानियों में लहरतारा तालाब और कमल का जिक्र आता है। अब तालाब का एक हिस्सा ही बचा है और बाकी तालाब को पाट कर कबीर मठ बना दिया गया है। मठ के भीतर बने मंदिर की ये मूर्ति कबीर के शुरुआती जीवन के बारे में बताती है। इस मूर्ति में नवजात कबीर को कमल के फूल पर लेटा हुआ दिखाया गया है। अब यहीं से कबीर को लेकर अलग अलग मान्यताओं की शुरुआत होती है। प्रचलित लोक मान्यताओं के मुताबिक कबीर को एक विधवा ब्राह्मणी ने जन्म दिया था। वो नवजात शिशु को लहरतारा तालाब के पास छोड़ गई। नीरू और नीमा नाम के मुसलमान जुलाहा दंपत्ति उस बालक को अपने घर उठा लाए और उन्होंने ही कबीर को पाला पोसा।
3: कुछ कहते हैं कि वो विधवा ब्राह्मण की फूंक से पैदा हुए और वो फेंक गई और उन्होंने उठा लिया। जो इंसान ने शायद मेरा जहाँ तक ख्याल ये कहा कि वो विधवा ब्राह्मण की कोख से पैदा हुआ, तो उनको ये तो मालूम था कि विधवा ब्राह्मण की कोख से हुआ, तो उनको ये मालूम था कि वो विधवा ब्राह्मणी कौन थी, ये भी तो बता सकते थे लिखने वाले ने। लिखा लिखी में जो बात बनती है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है।
0: कबीर पंथ की एक दूसरी धारा के मुताबिक कबीर लहरतारा तालाब में एक कमल के फूल पर बाल रूप में प्रकट हुए थे। वो अविगत अवतारी हैं।
4: कबीर साहब इस लहरतारा तालाब में कमल पुष्प पर बाल स्वरूप में नीरू और नीमा को प्राप्त हुए थे। इसके लिए गरीब साहब की एक वाणी आती है इसके संबंध में। गगन मंडल से उतरे सतगुरु सत्य कबीर, जलज माहि पौड़न के सब पीरन के पीर।
2: कबीर अवतार थे या कबीर कमल के पत्ते पर तैरते हुए मिले या कबीर किसी तरह अवतरित हुए। देखिए इस बात को हम समझें कि ये कहानियाँ ऐतिहासिक तथ्य की व्यंजना उतनी नहीं करती जितनी की एक सांस्कृतिक सोच की या किसी व्यक्ति से जो आप उम्मीद करते हैं उसकी।
5: ए जी पानी केरा बुदबुदा आसमान उसकी जात।
0: कबीर के जन्म से जुड़ी तमाम बहस अपनी जगह मौजूद है। कहीं कहीं इस बात का जिक्र आता है कि कबीर का जन्म स्थान काशी नहीं बल्कि बस्ती जिले का मगहर और कहीं आजमगढ़ जिले का बेलहारा गांव है। वैसे कबीर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका पालन पोषण करने वाले किस धर्म के थे। वो मुसलमान थे या हिंदू, तुर्क थे या सनातनी, ये सवाल कबीर के लिए बेमानी है। लेकिन समाज में क्या चल रहा था और क्या चलता आ रहा था, इसको लेकर कबीर किसी को भी छोड़ने वाले नहीं थे।
6: हिंदू जो पंडित थे उनसे कहा, पांडे तुम निपुण कसाई, तुम जो हो पांडे जी जो संभवतः मेरे जैसे कोई ब्राह्मण रहे होंगे, उनको संबोधित करते हुए कहा कि तुम तो निपुण कसाई हो। ये कहने की हिम्मत 15वीं-16वीं शताब्दी में सनातन धर्म की राजधानी बनारस में एक जुलाहा करता है, इसको जरा ध्यान में रखिए। ये पंडित नहीं है।
7: कबीर जिस युग में हुए उसे इतिहासकार मध्यकाल कहते हैं। ये वो काल था जब राजनीति में मुसलमान सामंत यानी छोटे राजा खुद को स्थापित कर रहे थे। दिल्ली की गद्दी पर लगभग 200 साल से मुसलमान सुल्तानों का राज चला रहा था। इस्लाम खुद एक संगठित संप्रदाय था जो तब के समाज में ब्राह्मणों के बोलबाले और उससे जुड़ी जात पात को चुनौती दे रहा था, चैलेंज कर रहा था। कहने का मतलब ये कि समाज में खूब उथल पुथल थी।
2: आप उन्हें तुर्क कहिए या इस्लामी कहिए, उन शासकों के आने के साथ जाहिर है कि आक्रामक रूप से उनमें से बहुत से शासक आए, आक्रमण के साथ शुरुआत हुई, तो उसकी वजह से समाज में एक आरंभिक तौर पर तनाव का प्रश्न भी उत्पन्न हुआ। कबीर की अपनी ही पंक्ति है, हिंदू कहे राम हमारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दो लड़त मरत हैं, मरम ना काहू जाना। इसका मतलब ये कि धार्मिक पहचान या धार्मिक विश्वास के आधार पर संघर्ष की भी स्थिति वहाँ बनी।

0: काशी इन बदलावों से अछूता रहा हो ऐसा नहीं है। ये है काशी के बीचों बीच कबीर चौक। मान्यता है कि यहीं कबीर का लालन पालन करने वाले नीरू और नीमा की झोपड़ी हुआ करती थी।
1: सुनिए सुनिए सुनिए,
2: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
1: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
2: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
4: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
3: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
4: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
3: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत, यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
4: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
3: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
4: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
5: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
3: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
6: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल।
3: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
6: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
3: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
6: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेष टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
3: संपर्क करें 84710-3992 या 97765-6750।
7: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
8: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
7: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
8: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
1: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
8: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
1: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
8: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
1: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
9: ठक ठक।
8: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
10: अच्छा, मिला ही नहीं।
8: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमलश्री में।
1: जी हाँ, कमलश्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
8: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
1: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

कबीर के जमाने में ताने बाने की मध्यम आवाज के बीच नीरो नीमा के घर कबीर नाम की गूंज रहती थी। कबीर एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है महान। आमतौर पर यह माना जाता है कि नीरू नीमा मेहनतकश गरीब जुलाहे थे, कपड़ा बुनने का काम किया करते थे। तब मुसलमान बुनकरों को

0: कबीर जब बड़े हो रहे थे तब के हालात की आज सिर्फ कल्पना ही हो सकती है। हालात तो खराब थे ही, उस पर से कबीर के तेवर ने मुमकिन है कबीर और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ा दी होंगी। हिंदी के कथाकार और नाटककार भीष्म साहनी ने अपने मशहूर नाटक कबीरा खड़ा बाजार में तब के हालात की तस्वीर खींची है।
1: अरे क्या बात है, बहुत ही जल्दी बहुरे बाजार से। अरे हमार कबीरवा मिला रहा, उकरा कोनो मार उल बिका कि नहीं? अरे सबेरवा से घर से निकला है।
2: ए माल तोहरे है ना, वही दिए है
1: कबीर। अरे कबीर तोहे काहे माल दिया, वो तो इके लेके बेचे खातिर गया रहा बाजार में।
2: अरे कह रहे घर पहुंचा देना, और एक संदेशा भी दिए है कि शाम तक घर आ जाएंगे। हाँ
1: अरे कहाँ मिला रहा तो के?
2: कोतवाली बाजार के पास खड़ा रहे, बहुत मजमा भी रहे वहां।
1: का? फिर से कौन?
2: अरे हम सर्राफा बाजार से निकल के मस्जिद की तरफ जा रहे, वहीं देखा काफी मजमा इकट्ठा किए रहे वो।
1: का कह रहा था?
2: अरे वही बकबक झकझक, कुछ लोग समझ लेते सह लेते और कुछ लोग नहीं सह पाते हैं। हाँ
1: छुपा काहे रहे हो हमसे, सच सच बताओ ना कि वो कहा क्या।
2: अरे बड़े महंत की झाकी सवारी निकल रही रहे, और वहां महंत के आदमी एक लौंडे को डंडे से मार रहे, और वो कबीर बीच में कूद पड़ा और वो लौंडे को छोड़ के कबीर पे पिल पड़े। और कुछ देर पहले वो एक मौलवी से भी उलझ रहा है, क्या कहा रहा है वो। अरे अरे का तुम तो जाना तो कौन सा युग जमाना आएगा भाई।
1: लो सुन लो अपने बेटुआ की करतूत।
2: अच्छा नूर भैया हम चले थे।
0: कबीर ने जो समाज में देखा उसमें तरह तरह की विषमताएं थी। कौन किस जाति में जन्मा है वही भाग्य तय करता था। व्यक्ति के बड़े या छोटे होने का मापदंड उसका जन्म कुल ही रह गया था। ब्राह्मण चाहे जितना दुराचारी हो सामान्य था, दलित चाहे जितना भी सदाचारी हो नीच समझा जाता था। कबीर ने इस आधार को नाकार दिया। कबीर ने कहा, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई, यानी ब्राह्मणों को सीधी चुनौती।

0: पंडित जी, ऐसे नहाए कि का लाभ, जो मन का मैल ही न जाए। क्यों तो मछली जल में सदा ही पड़ी रहती है, पर धोने से काबास चली जाती है।
1: अरे जुलाहे, तुझे क्या पता शुद्ध होना और दूरी रहना, कहीं तुम्हारी परछाई पड़ गई तो हमें दोबारा नहाना पड़ेगा।
0: पड़ी पड़ी के पत्थर भया, लिख लिख भया जू ईट, कहे कबीरा प्रेम की लगी न एक छीट। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया ना कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए।
2: कबीर यही नहीं रुके, बोले कहे कबीर चेतरे भोंदू, बोलन हारा तुरक न हिंदू। काशी उस समय भारत का हृदय थी, सब धर्म के अपने अपने मठ थे, वहां ठांव ठांव पर मंदिर थे, मस्जिदें थी। कबीर के पास कुछ नहीं था, केवल शब्द थे। और जब शब्द ऐसे हों, बोलन हारा तुरक न हिंदू, यानी ऊपर वाला न हिंदू है ना मुसलमान। पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, बातों ये चक्की भली पीस खाए संसार। या कंकड़ पत्थर जोरी के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे बहरा हुआ खुदाए। काशी में बैठकर 14वीं शताब्दी में ऐसे निडर दोहे बोल बोलने वाला कबीर अक्सर गुरु की महिमा गाते थे। कबीर के गुरु कौन थे? निडरता की ये सीख उन तक पहुंची कैसे?
3: काशी में जिस समय कबीर की वाणियों ने हड़कंप पैदा करना शुरू किया, उस समय वहां स्वामी रामानंद की बड़ी पूज थी। स्वामी रामानंद दक्षिण भारत से काशी आए थे। स्वामी रामानंद के अनुसार भक्ति के पथ में जो आ गया, उसके लिए जाति का बंधन व्यर्थ है। इस तरह सभी भाई भाई हैं, सभी एक जाति के हैं। बड़ा छोटा भक्ति से होता है, जन्म से नहीं। स्वामी रामानंद के 12 शिष्य बताए जाते हैं, जिनमें कबीर की गिनती भी होती है। कबीर ने अपने एक दोहे में कहा है, काशी में हम प्रकट भए हैं, रामानंद चिताए।
2: एक बड़ा तबका है जो स्वामी रामानंद को कबीर का गुरु मानता है, लेकिन स्वामी रामानंद कबीर के गुरु बने कैसे, या कबीर ने स्वामी रामानंद को अपना गुरु बनाया कैसे, इससे जुड़ी कई कहानियां प्रचलित हैं। ये कहानियां दरअसल तब के समाज और कबीर के सामने की चुनौतियों की भी कहानी है।

0: कौन है?
1: जुलाहा है।
0: अरे देखता नहीं कहाँ बड़ा आ रहा है, महाराज बैठे हुए हैं।
1: महाराज ये दास आपका शिष्य बनने आया।
2: कौन है तू?
3: प्रभु कबीर।
2: कौन जात?
3: जुलाहा।
2: जो काम तू कर रहा है वही कर, वही काम तेरा धर्म है।
3: महाराज आपकी शरण से कोई निराश नहीं लौटता। क्या राम सबका नहीं? क्या राम मेरा नहीं? क्या राम मेरा नहीं?
4: बाहर निकल।
3: अरे
4: निकल।
3: चलो चलो चलो।
4: क्या राम सबका नहीं?
3: बाहर निकालो।
4: चल।
3: अरे
4: बाहर निकाल, निकालो।
5: राम मेरा नर।
6: ये काशी का पंच गंगा घाट है। पंच गंगा घाट स्वामी रामानंद के आश्रम में हुए अपमान की अगली कड़ी का साक्षी है। रोज सुबह इसी घाट पर स्वामी रामानंद स्नान करने आते थे। कबीर उसी घाट पर पहुंचकर उसकी सीढ़ियों पर लेट गए।
7: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
8: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी। अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
7: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
8: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
7: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
8: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
7: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
8: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
7: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
9: सोहन मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
10: अरे टीना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL जियो एयरटेल VI जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
9: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
10: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF लेमिनेशन प्रिंट फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99 399 66 999।
7: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
8: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
7: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
8: अभी कॉल कीजिए 90 066 7231।
7: कॉल कीजिए 90 066 7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
11: नन्ना मुन्ना लाही देश का सिपाही हूँ।
12: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
11: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
12: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
11: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
13: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
14: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
13: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
14: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
13: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
14: जानकारी है तो कॉल करे 6052 62112 पे।
8: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
7: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
8: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
7: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
8: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
7: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
8: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
7: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स NH 27 चैन पट्टी गोपालगंज।
0: राम राम राम राम राम राम। कौन कौन?
15: राम राम।
0: कबीर,
15: मुझे मेरा गुरु मंत्र मिल गया।
0: कबीर कबीर
15: कबीर,
0: तू जीत गया कबीर। तूने मुझे अभिमान, अन्याय तथा पाप के बंधनों से मुक्त कर दिया। मैं तो अंधा हो गया था, सारा ब्रह्मांड राम है, सारा ब्रह्मांड राम है। ये भेदभाव तो मनुष्य के बनाए हुए हैं वत्स, उसके लिए तो सब बराबर है। वही राम तुम हो, वही गंगा है, और राम राम तो सबका सबका
16: पहले उन्होंने कबीर जैसे स्वामी रामानंद जी तिलक करते हैं, कंठी माला पहन करके जब निकले तो सबसे पहले उनकी मां ने देखी, कहा कि तो हिंदू मुड़ियों का काम है, मतलब हिंदू सन्यासियों का काम है, बेटा तुम क्यों धारण किया? तो कहा स्वामी रामानंद ने दीक्षा दे दी, वो फैल गया गांव में।
6: कबीर ने स्वामी रामानंद को अपना गुरु बनाया, ये कहानी प्रचलित है। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि कबीर निगुरा थे, यानी उनका कोई गुरु नहीं था। कबीर ने एक जगह कहा है, आपै गुरु आपै चेला। इसका अर्थ ये निकाला गया है कि गुरु से उनका एकात्म हो गया है, गुरु और उनमें फर्क नहीं है।
17: कबीर ने तो गुरु शरीर को माना ही नहीं, उन्होंने तो ये कहा कि ये सब गुरु हैं हद के, और बेहद के गुरु नहीं, और बेहद अपने आप उपजे अनुभव के घर में आए, अनुभव ही आपका गुरु है।
6: कबीर को मानने वालों की एक दूसरी परंपराओं के मुताबिक उन्होंने वैष्णव पीताम्बर पीर को अपना गुरु बनाया था। इस मत के मुताबिक कबीर उनकी कुटिया पर सत्संग के लिए जाते थे और उसे वो हज करना बताते थे। वो हिंदू मुसलमान का भेद नहीं मानते थे, जबकि एक और परंपरा के मुताबिक कबीर को शेख तकी का शिष्य बताया गया है। भारतवर्ष में आगे देखेंगे।
0: ये जुलाह कहाँ था? दिन भर रोजा रहा था, रात हंडत है गाय, ये तो खून व बंदगी, कैसे खुशी खुदाई?
18: बता तू कौन मजहब मानता है?
19: कहे कबीर त दोनों भूले, रामहु किनहु ना पाया, वे खसिया वे गाय कटावे, वादे जन्म गवाया।
6: भारतवर्ष भारतवर्ष महा महानायकों की गौरव गाथा अनुपम खेर के साथ।
20: गुरु थे नहीं थे, थे तो कौन थे, इन सवालों को यहीं छोड़ते हैं। इतना तय माना जाता है कि कबीर ने अक्षर ज्ञान प्राप्त नहीं किया था, लेकिन उन्हें कभी इसकी जरूरत भी नहीं पड़ी। उन्होंने कहा, मैं कहता आंखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता सुरझावन हारी, तू राख्यो उर्जाई रे। जो कहा डंके की चोट पर कहा, साफ साफ कहा। और धर्म से जुड़े कर्म कांड, आडंबर और ढकोसलों पर हमला किया, मजहबों की लड़ाई पर हमला किया।

इसे कबीर और उनके साथियों ने समझ लिया था। कहा जाता है कि कबीर सत्संग किया करते थे जिसमें समाज के दबे कुचले शामिल होते थे। कबीर जहां जहां जाते वहां मजमा लग जाता था। आज कबीर के जीवन से जुड़ी घटनाओं का ऐतिहासिक प्रमाण तो नहीं मिलता, लेकिन जनश्रुतियों में वो हमेशा मौजूद रहे हैं, हमारी बोलचाल में, हमारी

0: भारत किन तत्वों को मिलाकर बना है, उनमें से एक तत्व को हम कबीर तत्व कह सकते हैं। इस अर्थ में कि वो जो दी हुई दुनिया है, जो दिया हुआ ढांचा है, उसको मानने को तैयार नहीं है। जो चित्त, वो कबीर चित्त है।
1: इन्हीं जन श्रुतियों के मुताबिक पंडित और मौलवियों से उनकी लगातार टक्कर रहती थी। कबीर के जीवन पर आधारित उपन्यास लोई का ताना में ऐसे ही एक प्रकरण का जिक्र आता है।

0: सुने हैं तुम मुसलमानों के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हो।
1: ये हमको भड़का नहीं रहे हैं, समझा रहे हैं।
2: नहीं भाई, ये जुलाहा कहा था दिन भर रोजा रहत है, रात हनत है गाय, ये तो खून व बंदगी, कैसे खुशी खुदाई। ये का हिंदू वाली बात ना हुई
0: तो तुमने ही कहा था।
3: तो क्या बेकसूर जानवर का हिफाजत करना आदमी को हिंदू बना देता है?
2: बाकी हिंदू तो गाय नहीं खाते?
3: ना खाएं?
0: तो तू वैष्णव है?
3: नहीं।
0: तो फिर क्या है तू? तो तू अल्लाह को भी नहीं मानता है?
3: नहीं।
0: फिर सुना तुम सबने, ये लो अपने को हिंदू कहता है ना बहुत, पर मुसलमान की बुराई करता है। काजी के पास चलो।
2: मजाल तो देखिए भाई, ये सब काफिर हैं।
0: चुड़ा है तू आग में हाथ डाल रहा है।
1: कैसे मुल्ला साहब?
0: बता तू कौन मजहब मानता है?
3: तुम भूले हुए हो, अगर भगवान ने तुम्हें अलग अलग सचमुच बनाया होता, हिंदू और मुसलमान को जन्म से अलग किया होता, तो मैं झूठा। बताओ दुई जगदीश कहां ते आए, कहूं कोने भरमाया, अल्लाह राम करीम केशव हरी, हजरत नाम धराया, गहना एक कनकते गहना, तामे भाव न दूजा, कहन सुनन को दुई कर घाते, एक निवाज एक पूजा, वही महादेव वही मोहम्मद, ब्रह्मा आदम कहिए, कोई हिंदू कोई तुरक कहावे, एक जमी पर रहिए, वेद किताब पढ़े व कुतबा, वे मौलाना वे पांडे, बिगत बिगत के नाम धरायो, एक माटी के भांडे, कह कबीर त दोनों भूले, रामहू किनहू ना पाया, वे खसिया वे गाय कटावे, वादे जन्म गवाया, कहत कबीर सुनाए साथ।
4: अगर कबीर आज जीवित होते सौभाग्य से या संभवतः दुर्भाग्य से, तो अनेक जेलों में सड़ रहे होते, क्योंकि कबीर ने जिस तरह के सवाल उठाए, जिस तरह की गहरी चोट की, वो चोट आज तो किसी भी 10-12 लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं और पुलिस कार्रवाई शुरू हो जाती है।

कुमार जी का गाया हुआ बहुत अप्रतिम भजन है जो कबीर की वाणी है, निर्भय निर्गुण गुण रे गाऊंगा, मूल कमल दृढ़ आसन बांधो जी उलट पवन चढ़ाऊंगा, निर्भय निर्गुण। तो निर्भय होकर निर्गुण की उपासना, निर्भय होकर, क्योंकि वो पहली शर्त है कबीर की कि निर्भय होना चाहिए। यदि आप डर गए तो कबीर को नहीं समझ पाएंगे।

0: हिंदू हो या मुसलमान, कबीर ने धर्म और उसके कर्मकांड का विरोध तो किया, लेकिन भक्ति का साथ कभी नहीं छोड़ा। कबीर ने मानवीय प्रेम और ईश्वर में गहरी आस्था दिखाई। इस तरह से कबीर भारत में धर्मनिरपेक्षता के पहले पैरोकार बने। उन्होंने कहा, हिंदू मुसलमान नहीं, मानवीय प्रेम सबसे ऊपर है।
1: मैं तो तेरे पास में, मैं तो सांसों की सांस में, तू मुझे कहां खोज रहा है बंदे। तो ये अपने आप में न सिर्फ कविता में क्रांति है, ये तो अध्यात्म में क्रांति है। और इन दोनों में एक तरह का जनतांत्रिकीकरण है कि हर व्यक्ति को ईश्वर तक पहुंचने का अधिकार है, और उसको ईश्वर तक जाने के लिए किसी ब्राह्मण का और किसी अनुष्ठान का और किसी यज्ञ का और वेद पुराण का और पुराण किताब का इसका सहारा ले

0: मैंने, कोई आ रहा था कोई, तो मैं जाके उससे पूछा।
1: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
2: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
3: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई संतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
2: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
3: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
4: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
5: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034 48652 पे।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
0: दुख में सुमिरन सब करें, सुमिरन का क्या मतलब होता है? तो उसने बताया, हमने गले से माला निकाली, छोटे छोटे रुद्राक्ष जैसे माला थे, लेकिन ये जो है माला, इसमें भगवान का नाम होता है। एक एक दफा बोलो भगवान, भगवान का नाम।
7: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, DRM 810 किलो हर्ट्ज पर। सुबह के ठीक 8 बजने को है, अब से थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।
8: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार, सरकार ने कहा 2000 रुपए तक के UPI भुगतान पर बैंक कोई शुल्क नहीं लेंगे। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 का आज से गुजरात के गांधीनगर में शुभारंभ। भारत और कनाडा के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते पर अगले दौर की बातचीत शुरू। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों के निवारण के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा विकसित तंत्र को मजबूत और कारगर बताया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की। और भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज शाम दिल्ली में। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने कहा है कि बैंक 2000 रुपए तक के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI लेन देन और रूपे डेबिट कार्ड से भुगतान पर कोई भी शुल्क नहीं लगा सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने UPI लेन देन पर शुल्क से जुड़े नियमों को स्पष्ट करने के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम के अंतर्गत इन बदलावों को अधिसूचित किया है। एक रिपोर्ट।
9: वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यह नियम ग्राहकों और छोटे व्यापारियों दोनों पर समान रूप से लागू होंगे। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते में किए जाने वाले UPI लेन देन पूरी तरह मुफ्त रहेंगे। अगर भविष्य में कभी डिजिटल लेन देन पर कोई शुल्क जैसे मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लगाया भी गया तो वह केवल दुकानदारों पर लगेगा, ग्राहकों पर नहीं। हालांकि ये शुल्क भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड लेन देन पर लागू MDR से काफी कम होंगे। सरकार का यह स्पष्टीकरण भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 में हालिया संशोधन के बाद UPI लेन देन पर शुल्क की आशंकाओं के बीच आया है। समाचार कक्ष से जया भारती।
8: प्रतिष्ठित विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 आज गुजरात के गांधीनगर स्थित

0: परमात्मा मंदिर में शुरू होने जा रहा है। दक्षिण एशिया में पहली बार आयोजित हो रहे इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव तथा गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल संयुक्त रूप से करेंगे। सम्मेलन का विषय है चक्रीय अर्थव्यवस्था, जन और समृद्धि के लिए परिवर्तन। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इसमें 65 से अधिक देशों के 2000 से अधिक हितधारक भाग लेंगे।
1: दो दिवसीय वर्ल्ड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम में विश्व भर से पर्यावरण विशेषज्ञ, नीति निर्माता, उद्योजक और शोधकर्ताओं हिस्सा ले रहे हैं। इस फोरम का मुख्य उद्देश्य पुरानी सामग्रियों और उत्पादों के पुनरुपयोग, रिसाइकलिंग और पुनर्चक्रण के माध्यम से सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। इस आयोजन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग, हरित ऊर्जा, रोजगार, वित्त और स्टार्टअप इकोसिस्टम जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर 4 प्लेनरी और 16 विषय आधारित सत्र आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही आयोजित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो में 125 से अधिक प्रदर्शक अपने व्यावहारिक सर्कुलर समाधानों का भी प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद 17 और 18 सितंबर को दुनिया भर में 80 विशेष एक्सीलेटर सत्र आयोजित किए जाएंगे। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: भारत और कनाडा ने प्रस्तावित व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के लिए नई दिल्ली में चौथे दौर की वार्ता शुरू कर दी है। दोनों देश वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 50 अरब डॉलर तक बढ़ाने के प्रयास में हैं। 5 दिन की ये वार्ता कल से शुरू हुई जो 18 सितंबर तक चलेगी। इसमें वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार, मूल स्थान के नियम तथा तकनीकी व्यापार बाधाओं सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। एक रिपोर्ट।
2: दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2024-25 में 8 अरब 66 करोड़ डॉलर से घटकर वर्ष 2025-26 में 7 अरब 95 करोड़ डॉलर रह गया, जो 8.22% कम है। भारत से कनाडा को प्रमुख निर्यात में दवाइयां, लोहा और इस्पात, समुद्री खाद्य, सूती परिधान, इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन शामिल हैं, जबकि कनाडा से भारत के प्रमुख आयात में दालें, मोती और अर्धकीमती पत्थर, कोयला, उर्वरक, कागज और कच्चा तेल शामिल है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबेतकिन ने भारत और दक्षिण अमेरिका के प्रमुख व्यापार समूह मरकोसुर के बीच तरजीही व्यापार समझौते के विस्तार के लिए बातचीत शुरू करने की घोषणा की है। दोनों मंत्रियों ने वर्तमान समझौते में आपसी हित के क्षेत्रों को शामिल करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है। नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की सह अध्यक्षता करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में वियतनाम महत्वपूर्ण साझेदार है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों के निवारण के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा विकसित तंत्र को सुदृढ़, सक्रिय, समयबद्ध और बेहद कारगर बताया है। कल नई दिल्ली में राम जेठमलानी स्मृति व्याख्यान के 6वें संस्करण में उन्होंने ये बात कही।
5: Given a choice, a judicial officer,
6: अगर किसी न्यायिक अधिकारी को अंतरिम आदेश देने पर, मामले की सुनवाई टालने पर या अंतिम आदेश पारित करने पर शिकायत का सामना करना पड़े तो हर चरण में उसके खिलाफ शिकायत आ सकती है। यह गंभीर बहस का विषय है कि क्या ऐसी हर शिकायत को किसी सार्वजनिक मंच या वेबसाइट पर रखा जाना चाहिए या फिर इसके लिए न्यायपालिका के भीतर ही एक मजबूत व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था में पूरी निष्पक्षता और बिना किसी पूर्वाग्रह के शिकायतों पर विचार किया जाना चाहिए।
5: इन अ वेरी रिस्पॉन्सिबल मैनर मस्ट डील विद इट।
0: मुख्य न्यायाधीश ने न्यायपालिका में निरंतर सुधार और अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। ये वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र को एक मंच पर लाने तथा सहयोग, नवाचार, विनिर्माण, निवेश और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने का प्रमुख मंच है। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने कहा कि राजस्थान के लोगों ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वे डबल इंजन सरकार के अंतर्गत सुशासन और विकास की नीतियों का पूरा समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोगों के बीच प्रेम और सद्भावना बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जिनसे हृदय में प्रेम, सौहार्द और सद्भावना का विकास हो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही दिशा सालियान की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। दिशा सालियान की 8 जून 2020 को एक इमारत की 12वीं मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई थी। बंबई उच्च न्यायालय के आदेश के बाद ये प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, उनके सुरक्षाकर्मी डिनो मौर्या, रोहन रॉय, सूरज पंचोली, रिया चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती और पुलिस अधिकारियों सचिन वाजे तथा परमबीर सिंह सहित कई लोगों के नाम हैं। झारखंड में सीआईडी ने झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की 14वीं प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं के मामले में एक कोचिंग सेंटर संचालक संजीत कुमार को गिरफ्तार किया है। रांची के रातू रोड इलाके में शिवांगन कोचिंग सेंटर चलाने वाले संजीत कुमार पर आरोप है कि उसने एजेंट के तौर पर उम्मीदवारों से परीक्षा पास कराने का वायदा कर पैसे वसूले थे। पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर गहरा गया है। यमन के ईरान समर्थित हाउसी विद्रोहियों ने दक्षिणी सऊदी अरब के एक सैन्य हवाई अड्डे पर कई मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं। सऊदी गठबंधन के अनुसार इस हमले में 13 नागरिक घायल हुए हैं, जिसके बाद 4 पड़ोसी शहरों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। दूसरी तरफ हाउसी विद्रोहियों ने लाल सागर के पास देश के पश्चिमी तट पर अपनी स्थिति मजबूत करना शुरू कर दिया है। इस बढ़ते तनाव के कारण खाड़ी देशों ने ईरान के साथ होने वाली बातचीत को फिलहाल टाल दिया है। जानकारों का मानना है कि यदि ये टकराव और बढ़ा तो लाल सागर के रास्ते होने वाली दुनिया की तेल आपूर्ति बड़ी मुसीबत में पड़ सकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन एक दूसरे के ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने पर सहमत हो गए हैं। हालांकि उन्होंने इसे लागू कराने से जुड़ी जानकारी नहीं दी। सोशल मीडिया मंच ट्रुथ सोशल पर पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन रूस के ऊर्जा ठिकानों पर हमला नहीं करने और रूस भी ऐसा ही करने पर सहमत हुआ है। हालांकि पोस्ट में ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि किन ऊर्जा प्रतिष्ठानों को इस समझौते के दायरे में रखा जाएगा या क्या दोनों पक्षों ने कोई शर्त रखी है। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनावों से पहले डाक से मतदान प्रतिबंधित करने की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना को खारिज कर दिया है। न्यायाधीशों ने संघीय न्यायाधीश के उस आदेश को बरकरार रखा है जिसमें डाक सेवा को डाक मतपत्रों से जुड़े नए नियमों को लागू करने से अस्थायी रूप से रोक दिया गया था। न्यायाधीश सैमुअल एलिटो और क्लेरेंस थॉमस ने संक्षिप्त आदेश से असहमति जताई। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में भी दिन भर ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा और राजस्थान में बिजली चमकने की आशंका है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। तीसरा और अंतिम मुकाबला दिल्ली में ही बृहस्पतिवार को होगा। भारत ने पहले T20 मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। एशियाई ट्रैप चैंपियन निशानेबाज सबीरा हारिस के नेतृत्व में 20 सदस्यीय भारतीय दल आज से इटली में ISSF जूनियर विश्व कप शॉटगन में भाग लेगा। प्रतियोगिता का समापन 19 सितंबर को होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
7: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
8: धन्यवाद प्रियंका। आज अधिकांश अखबारों ने रक्षा मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट को प्रमुखता से दिया है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर चीन ने घटाई सैन्य तैनाती, देश फिर से चौकस। दैनिक भास्कर ने लिखा है, रिपोर्ट में तकनीकी बदलाव का रोड मैप बताया गया। ऑपरेशन सिंदूर से सबक, ड्रोन के 9 फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट शुरू होंगे। अमर उजाला ने भारत चीन में भरोसा और बढ़ा शीर्षक से चीन के विदेश मंत्री का बयान दिया है, सुधार और नई ऊंचाई की ओर बढ़ रहे रिश्ते। नव भारत टाइम्स की खबर है, साइबर ठगी के आरोप पर बैंक खाते से लेन देन पर 60 दिन तक लग सकेगी रोक, RBI ला रहा नियम। हिंदुस्तान के आर्थिक पन्ने की खबर है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने करोड़ों अंशधारकों को दी बड़ी राहत, PF की सूचनाएं अब WhatsApp पर मिलेंगी। EPFO पोर्टल या उमंग ऐप पर बार बार लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को आसान हिंदी में समझ सकेंगे लोग, कल हिंदी दिवस पर न्यायालय की नई पहल को दैनिक जागरण सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। लोक सत्य ने लिखा है, जन सूचना सेवा में सरल हिंदी सारांश के साथ ऑडियो वीडियो बुलेटिन भी मिलेंगे। जनसत्ता की ये खबर ध्यान खींचती है, लंदन में टेम्स नदी के तट पर पहली बार हुई गंगा आरती, हजारों लोग शामिल हुए, वाराणसी के घाटों जैसी दिखी झलक।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, सरकार ने कहा, 2000 रुपए तक के UPI भुगतान पर बैंक कोई शुल्क नहीं लेंगे। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 का आज से गुजरात के गांधीनगर में शुभारंभ, भारत और कनाडा के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते पर अगले दौर की बातचीत शुरू। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों के निवारण के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा विकसित तंत्र को मजबूत और कारगर बताया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की। और भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज शाम दिल्ली में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण। अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
10: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
9: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
10: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
9: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
10: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
9: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
11: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है, इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 41 51 51 पे।
12: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
13: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
12: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
13: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
12: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
14: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
15: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
14: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज और लखपतिया मोड़, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।

0: रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
5: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
4: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
5: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
4: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
4: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
5: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
6: ठक ठक।
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
9: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
5: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
4: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
5: सिर्फ 1-2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से 2:00 PM।
4: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं। दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करे 87894 18744।
5: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
6: मैं बनूंगा।
5: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80 29 94 921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रमझे 90.4 पर।
7: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
8: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034 48652 पे।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
4: नन्ना मुन्ना लाही देश का सिपाही हूँ।
5: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
4: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
5: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
4: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी, जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
6: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
6: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
6: जानकारी है तो कॉल करे 6052-62112 पे।
7: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
8: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
7: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
2: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
9: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट फर्स्ट।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
3: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
2: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
3: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
4: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
3: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार्य एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
4: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
3: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
4: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।

0: राज्य सरकार ने 6,800 ASI को दारोगा के पद पर प्रोन्नति दी और प्रदेश के अधिकतर भागों में मानसून की सक्रियता फिर बढ़ी। मौसम विभाग ने आज मुजफ्फरपुर, किशनगंज और पटना समेत कई स्थानों पर बारिश की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने कहा है कि बैंक की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI और रुपे द्वारा संचालित डेबिट कार्ड से 2,000 रुपए तक के लेन देन पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शुल्क नहीं लगा सकते। वित्त मंत्रालय ने UPI लेन देन पर शुल्क संबंधी नियमों को स्पष्ट करने के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम के अंतर्गत इन परिवर्तनों को अधिसूचित किया है। एक रिपोर्ट।
1: वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यह नियम ग्राहकों और छोटे व्यापारियों दोनों पर समान रूप से लागू होंगे। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते में किए जाने वाले UPI लेन देन पूरी तरह मुफ्त रहेंगे। अगर भविष्य में कभी डिजिटल लेन देन पर कोई शुल्क जैसे मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लगाया भी गया तो वह केवल दुकानदारों पर लगेगा, ग्राहकों पर नहीं। हालांकि ये शुल्क भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड लेन देन पर लागू MDR से काफी कम होंगे। सरकार का यह स्पष्टीकरण भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 में हालिया संशोधन के बाद UPI लेन देन पर शुल्क की आशंकाओं के बीच आया है। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज बाढ़ पीड़ित परिवारों को 5,079,23,00,000 रुपए की आर्थिक सहायता की राशि प्रदान करेंगे। श्री चौधरी प्रभावित परिवार को 7,000 रुपए उनके बैंक खाते में DBT के माध्यम से हस्तांतरित करेंगे। आपदा प्रबंधन विभाग ने बाढ़ प्रभावित जिलों से 8,27,472 परिवारों की पूरी सूची मंगवा ली है। गौरतलब है कि प्रदेश के 15 जिलों के 88 प्रखंडों में लगभग 49,00,000 से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में एक केंद्रीय दल कल बिहार में बाढ़ की स्थिति का सर्वेक्षण करने आएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनकी बात हुई है।
2: आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक टीम बनाने का निर्देश दिया। आज ही गृह मंत्री जी का फोन आया था कि हम लोग एक केंद्रीय टीम केंद्रीय मंत्री के स्तर पर बिहार परसों शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में बिहार आएगा, जो पूरे बाढ़ की समस्या का अध्ययन करके कितना क्षति हुआ ये तमाम चीजों के अध्ययन करने आ रहे हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि बिहार की चिंता ब्रिक्स जैसे सम्मेलन होते हुए भी आपने बिहार की चिंता किया।
0: आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री रत्नेश सादा ने कहा है कि बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में श्री सादा ने बताया कि बाढ़ पीड़ितों के लिए सामुदायिक किचन, तिरपाल, चिकित्सा की व्यवस्था और पशुओं के चारे की व्यवस्था की गई है।
3: आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा या सरकार के द्वारा लगभग राहत सामग्री जैसे सामुदायिक किचन, पोलोथीन सीट, पशु चारा, मोटर बोट, एम्बुलेंस, डॉक्टर की व्यवस्था, पशु चिकित्सा, स्वच्छ पेयजल, शौचालय की माने आदि जो भी बच्चे का दूध, सारी व्यवस्था आपदा प्रबंधन विभाग और बिहार सरकार करने का काम किया है।
0: प्रदेश में नदियों के जलस्तर में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। गंगा, पुनपुन, बागमती सहित कई प्रमुख नदियां खतरे के निशान से अभी भी ऊपर बह रही हैं। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार गंगा नदी पटना के गांधी घाट, हाथीदह, भागलपुर और मुंगेर में खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। वहीं पटना के श्रीपालपुर में पुनपुन, मुजफ्फरपुर के बेनीबाद में बागमती, सीवान के दरौली में घाघरा नदी लाल निशान के ऊपर बह रही है। वाल्मीकि नगर बराज पर गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि की प्रवृत्ति दर्ज की गई है। बीरपुर बराज पर कोसी का जलस्तर स्थिर बना हुआ है, जबकि इंद्रपुरी बराज पर सोन नदी का जलस्तर घट रहा है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से 1,260 रसोई घर चलाए जा रहे हैं, जबकि 13 राहत शिविरों में भोजन, चिकित्सा और आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 1,500 से अधिक नावों का परिचालन किया जा रहा है। इसके अलावा पशुओं के लिए चारा भी वितरित किया जा रहा है। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि चालू वित्तीय वर्ष में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत प्रदेश के सभी जिलों में 285,107 एकड़ फसल क्षेत्र में ड्रोन से खाद और कीटनाशक का छिड़काव होगा। पटना में समीक्षात्मक बैठक में श्री सिन्हा ने कहा कि योजना के लिए 11,81,00,000 रूपए की स्वीकृति दी गई है। पंचायती राज विभाग ने अंतर जिला स्थानांतरण में अनियमितता बरतने के आरोप में अररिया, नवादा और नालंदा के जिला पंचायती राज पदाधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने इन सभी पदाधिकारियों के खिलाफ आरोप पत्र गठित करने का निर्देश दिया है। श्री प्रकाश ने कहा कि विभागीय कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही और निर्धारित नियमों का पालन करना अति आवश्यक है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने आगामी विधान परिषद चुनाव में दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से रामदेव राय को उम्मीदवार बनाया है। पार्टी के राज्य कमेटी ने इसकी घोषणा की है। पार्टी के राज्य सचिव ललन चौधरी ने बताया कि इस सीट पर पार्टी के उम्मीदवार पहले भी कई बार चुनाव जीत चुके हैं। श्री चौधरी ने कहा कि पार्टी सारण स्नातक सीट से भी अपना उम्मीदवार उतारेगी। बिहार पुलिस मुख्यालय ने 6,800 सहायक अवर निरीक्षक एएसआई को पुलिस अवर निरीक्षक दारोगा के पद पर प्रोन्नति दी है। इस संबंध में बिहार पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी करते हुए कहा कि 1 सितंबर और उसके बाद हुई केंद्रीय स्क्रीनिंग समिति की बैठकों में लिए गए निर्णय के आधार पर यह प्रोन्नति दी गई है। इसके साथ ही प्रोन्नति प्राप्त दारोगा को वेतनमान का आर्थिक लाभ भी मिलेगा। यह लाभ पदभार ग्रहण करने की तारीख से लागू होगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आज पटना स्थित मुख्य सचिवालय के मंत्रिमंडल कक्ष में कैबिनेट की बैठक होगी। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश के अधिकतर भागों में मानसून की सक्रियता फिर से बढ़ी है। मौसम विभाग ने आज मुजफ्फरपुर, किशनगंज, पटना समेत राज्य के उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व और दक्षिण मध्य भागों में कई स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की भी संभावना है।
1: दिनांक 15 सितंबर को राज्य के उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: नालंदा की लखपति दीदी सुनीता देवी ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ संवाद किया है। इस दौरान उन्होंने अपनी आजीविका और उद्यमिता से जुड़ी विकास यात्रा को साझा किया। नालंदा जिले के बिहार शरीफ में सुनीता देवी जन औषधि केंद्र चला रही हैं। गौरतलब है कि जीविका से जुड़ने के बाद उन्होंने पहले बुक कीपर के रूप में कार्य किया और वर्ष 2018 में क्लस्टर फैसिलिटेटर के रूप में अपनी जिम्मेवारी निभाई। ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। रोहतास जिले में हवाई अड्डा निर्माण की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इसके लिए रोहतास कैमूर सीमा क्षेत्र में सबराबाद के पास भूमि चिन्ह

0: लड़कियां शामिल हैं। रेल पुलिस अधीक्षक हरिशंकर कुमार ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संदिग्धों ने असम के रास्ते भारत में प्रवेश किया। कई राष्ट्रीय जांच एजेंसियां संदिग्धों से पूछताछ कर रही हैं।
1: चार संदिग्ध लोगों को उसमें डिटेन किया गया, जिसमें एक पुरुष और तीन महिलाएं थी, जो बच्ची हैं, नाबालिग थी। पूछताछ के क्रम में पता चला कि ये लोग चारों लोग म्यांमार के हैं। इनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं था और इनके पास से एक मोबाइल, जनरल का टिकट जो अमख्या से लेकर और आनंद विहार तक का है, और भारतीय रुपया है 220 रुपया और बंगाली रुपया जो है टका 1090 रुपया बरामद हुआ है।
0: बांका जिले के लकड़ी टोला में अवैध बालू खनन के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची खनन विभाग की टीम पर बालू माफियाओं ने हमला कर दिया। उपद्रवियों ने बांका थाना के कई वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया, साथ ही खनन टीम के वाहनों और मौके पर मौजूद जेसीबी को भी नुकसान पहुंचाया। पुलिस अधीक्षक अमितेश कुमार ने बताया है कि इस मामले में 28 नामजद आरोपियों समेत कई के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जापान के आईची नागोया में 19 सितंबर से शुरू होने वाले एशियाई खेलों में भाग ले रहे भारतीय दल में राज्य के 11 खिलाड़ी शामिल होंगे। इनमें 6 दिव्यांग खिलाड़ी शामिल हैं। जमुई में आयोजित राज्य स्तरीय सब जूनियर आत्यापात्या चैंपियनशिप में बालिका वर्ग का खिताब पटना की टीम ने जीत लिया। बालक वर्ग में जमुई की टीम चैंपियन बनी है। मोतिहारी में कल से 33वीं राज्य सीनियर महिला बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी बिहार बॉल बैडमिंटन संघ के सचिव गौरीशंकर ने दी है। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के तहत अंतर महाविद्यालय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में किया जा रहा है। प्रतियोगिता का उद्घाटन राज्य के मंत्री श्रवण कुमार ने किया। पुरुष क्रिकेट में भारत आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा। रविवार को पहले मैच में 7 विकेट से शानदार जीत के बाद भारत 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है। श्रृंखला का तीसरा मैच गुरुवार को इसी मैदान पर खेला जाएगा। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, ईंधन की बढ़ी कीमतों ने महंगाई की आग भड़काई। अखबार लिखता है, अगस्त में खुदरा महंगाई दर उछलकर 4.82% पर पहुंची। दैनिक भास्कर ने यूसीसी से जुड़ी खबर को अपनी लीड बनाते हुए लिखा है, यूसीसी लागू करने की बात पर सहयोगी दलों के अलग अलग सुर। शाह का यूसीसी प्लान, जदयू को एतराज, चिराग बोले ड्राफ्ट देखेंगे। प्रभात खबर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखता है, एआई से मानवता को लाभ नहीं तो इसे आगे बढ़ाना बेकार। दैनिक जागरण की सुर्खी है, राज्य के विश्वविद्यालयों में स्नातक स्तर पर लागू होंगे विदेशी भाषा के पाठ्यक्रम। आज अखबार का शीर्षक है, उच्च शिक्षा में सम्राट सरकार ने रचा इतिहास। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने कहा, ₹2000 तक के यूपीआई भुगतान पर बैंक कोई शुल्क नहीं लेगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज बाढ़ पीड़ित परिवारों को 7,000 रुपए की सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित करेंगे। राज्य सरकार ने 6,800 एएसआई को दारोगा के पद पर प्रोन्नति दी। और प्रदेश के अधिकतर भागों में मानसून की सक्रियता फिर बढ़ी। मौसम विभाग ने आज मुजफ्फरपुर, किशनगंज और पटना समेत कई स्थानों पर बारिश की संभावना जताई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: सुनिए सुनिए सुनिए,
3: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया

0: रहा है श्री कृष्णा साड़ी।
1: सुनिए सुनिए सुनिए,
0: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
1: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
0: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
2: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
1: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
4: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
1: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
5: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
6: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
5: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
6: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
5: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
1: श्री भारती एकेडमी, जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
7: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
1: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
7: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर, ग्राम एक डेरवा, तिलंगही मैदान के पूरब, गोपालगंज।
1: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी, गोपालगंज में है।
7: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
8: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
9: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी। अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
8: आरआर मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व, भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
9: यहां आयुष्मान कार्ड से 5,00,000 रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
8: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
9: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
8: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
9: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, आरआर मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
8: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
10: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up, hello.
11: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं
12: नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ आप सबकी दोस्त मनोरमा और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, और समय हो गया हेलो माई चॉइस कार्यक्रम का। तो समय के साथ बिल्कुल हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
13: हेलो
14: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
13: और क्या हाल चाल है मैडम?
14: जी जी, सब बढ़िया है, अपना बताइए।
13: बढ़िया है, और बारिश हो रहा है गोपालगंज में?
14: नहीं, बारिश
13: आज की फरमाइश सारे लाल का फिल्म में का है। कोई
14: कौन सा
13: सारे लाल का वो कोई फिल्म में का गाना है, वो तो गा करके बताते क्या?
14: जी बिल्कुल।
13: हम धरती के राजा दो रानी नील गगन के, हम धरती के राजा दो रानी वाली गाना है।
14: और गाइए, आप तो बहुत अच्छा गा रहे हैं।
13: और याद नहीं खेलो मैडम?
14: चलिए कोनो बात नहीं है, और गाना बताइए। ओके ओके, सुनवाई के भी चाहता नहीं।
13: तो पहले आपको सुनवाना है ना, फिल्म में का गाना है उसका।
14: जी जी।
13: कोई फिल्म आया था, हम देखने के लिए गए थे श्याम हॉल में। तीन दिन हम लोग देखे थे लगातार।
14: चलिए फिर तो प्ले करते हैं गाना आपका।
13: जी ठीक है, ओके मैडम,
14: सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.5 जी। कैसे हैं आप?
1: ठीक बताइए
0: जी। मेरा भी बढ़िया। तो
1: क्रांति का कोई गाना बजा दीजिएगा, सब गाना अच्छा।
0: क्रांति में का कोई भी सॉन्ग?
1: हाँ, हमारा ठुमका बदल गए आपके जो इच्छा है, जो भी गाना अच्छा है
0: आप ही बता देते तो सही रहता।
1: यही जो बताए हमारा ठुमका बदल गया चाल,
0: चाहिए आप दो लाइन में गा के बताएंगे?
1: चलिए वही जो बताए वही।
0: जी जी वो तो ठीक है, आप दो लाइन में गा के बताते तो शायद सही रहता।
1: यहाँ पर दो तीन आदमी बैठे हैं हमको, चलो चलिए ठीक है दूसरी बार गाए।
0: चलिए ठीक है। और गाना सुनवाना भी चाहते हैं किसी को?
1: रजाक है, रफीक है, नूर मोहम्मद है, इम्तियाज है और आप है, आपका टीम है। उस दिन जो सोमवार को रिकॉर्डिंग किए थे वो टावर नहीं मिल रहा था, पता ना जी दोबारा लग नहीं रहा
0: जी,
1: याद है ना?
0: जो सोमवार को जो रिकॉर्डिंग हुआ था तो बच चुका है।
1: बच चुका है, मैं सोचा की रिकॉर्डिंग कुछ गर्ज फिल्म का इसे बताया था, हम सोचा की चलिए रिकॉर्ड गया तो रिकॉर्डिंग हुआ भी नहीं इसलिए।
0: जी तो आप गाना बताएंगे तो रिकॉर्ड हुआ होगा, थोड़ा वैसे बच गया होगा। चलिए फिर तो ये वाला गाना आप प्ले करते हैं।
1: ठीक है
0: जी, फिर सबके साथ रेडियो 90.4
1: नमस्ते
0: नमस्ते।

0: आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
1: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
2: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
3: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
2: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
3: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
2: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
3: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
2: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
4: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
5: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
6: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
5: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
6: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
7: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
6: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार्य एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
7: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने तड़कुल के पास गोपालगंज।
6: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
7: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
2: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
4: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2,00,000 रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4-5 किलोमीटर के अंदर।
2: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
4: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
2: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
8: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
9: हेलो मैडम, नमस्कार।
10: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिंग 90.5 FM में।
9: जी, उनको गाना सुनना है मैडम।
10: गाना सुनवाएंगे, नाम बता दीजिए अपना।
9: मेरा नाम है मन्नान, कपरपुरा से बोल रहा हूँ।
10: जी, और कैसे हैं आप?
9: पहले से उतना अच्छे नहीं है।
10: क्या हो गया है?
9: पहले से उतना अच्छा नहीं है इसलिए कि आजकल कॉल हम नहीं कर रहे हैं गाना के लिए।
10: अच्छा जी, ऐसा क्या?
9: आज क्या मन में आया है कि कॉल कर रही है?
10: तो कोई प्रॉब्लम हुआ जो कॉल नहीं कर रहे?
9: नहीं हुआ, नहीं है। आप लोग थोड़ा सा वो जो 1 बजे वाला 12 ग्यारह बजे वाला प्रोग्राम में आप लोग कॉल उठाते नहीं है, कोई प्रॉब्लम है?
10: अच्छा जी, तो क्या है ना कि अलाउ नहीं होगा, इसीलिए भारती जी कॉल नहीं उठाती होंगी।
9: हाँ वही। अच्छा भारती जी नहीं बोल रही, मनोरमा बोल रही है?
10: जी हाँ।
9: अच्छा हाँ, तो ये शिकायत तो था हम समझे कि भारती जी हैं, उन्हीं को शिकायत सुना रहे थे हम।
10: अच्छा जी, कोई बात
9: ना, तो हम नहीं समझते थे कि मनोरमा जी हैं, है ना
10: जी।
9: तो कोई बात नहीं है, अब वो रहती तो उनसे हम शिकायत करते और थोड़ा सा। हाँ, तो उसमें कोई नहीं है, तराज के नहीं है, है ना। और रही बात कि हमको ये गाना सुनना है मैडम, ये आई का बहुत गाना बना है, तो ये गाना है मार दिए जाए कि छोड़ दिए जाए, ए आई वाला गाना है ना मैडम, यही गाना सुनवा दीजिएगा ना मैडम। अच्छा आप कौन कौन से प्रोग्राम में आती है मैडम?
10: मैं तो ऑल प्रोग्राम चलाती हूँ, लेकिन अभी तो 12 बजे वाला शो नहीं चला रही हूँ, क्योंकि जो अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ उसको भी तो बनाना पड़ता
9: है। इसके बाद कोई प्रोग्राम में आप नहीं है?
10: नहीं, इससे पहले तो कोई प्रोग्राम नहीं है।
9: ओ, आपको यही प्रोग्राम दे दिया गया कि आप यही बनाओ और बजाओ है? तो मिलना चाहिए, और भी कोई प्रोग्राम तो मिलना चाहिए, जैसे उनको जो है भारती जी को मिला है तो एक दो प्रोग्राम तो करती हैं, आपको भी मिलना चाहिए, क्योंकि आपको भी कुछ दिन हो गया रेडियो स्टेशन में काम करते हुए। वैसे तो रेडियो इंजन तो बहुत ऊंचाई पर तो चला गया है, और आके जो जो आदमी आ रहे हैं तो उन लोगों को प्रोग्राम मिलना चाहिए, कोई कोई भी प्रोग्राम, जैसे मान लीजिए कि कोई डॉक्टर आता है उसे सवाल जवाब करना, कोई कोई बात पे जो है सवाल जवाब करना, या कोई आर्ट बनाना, है ना, तो ये सब होता है तो अच्छा लगता है थोड़ा सा। तो ज्यादा विशेष बात नहीं है मैडम, यही बात था कि हमको अभी आई वाला जो है गाना वो सुनवा दीजिएगा।
10: डेडिकेट भी है?
9: डेडिकेट तो अब क्या कहें, मनोरमा जी के खास ये गाना रहेगा मेरे तरफ से, डेडिकेट मार दिए जाए कि छोड़, और किसी को नहीं देंगे, आज मनोरमा जी को दे रहे हैं डेडिकेट ये गाना। आप गाना को फुल एंजॉय कराइए, सुनाइए गाना ताकि हम भी सुन ले, आज बज जाएगा मैडम?
10: जी जी, पूरा कोशिश रहेगा।
9: हाँ तो पूरा कोशिश करके आज बजाइएगा, 5 बजे एकदम रेडियो खोल के हम बैठे रहेंगे।
10: जी जी बिल्कुल, ले करते हैं गाना आपका, सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: हेलो
1: हेलो।
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिंग 90.5 FM।
1: नमस्ते। गाना सुनाना है?
0: गाना सुनाएंगे, नाम बता दीजिए अपना।
1: साहिल कुमार अहमदा।
0: साहिल कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: अहमदा।
0: अच्छा, साहिल जी क्या हो रहा था?
1: अभी कॉल कर रहे थे।
0: अच्छा, तो चलिए कॉल तो लग गया। क्या है
1: आपका फिल्म का? कोई भी गाना बजा दिए।
0: कोई भी? और सुनाना भी चाहती हूँ किसी को,
1: जितने भी रेडियो में।
0: ओके साहिल जी, तो फिर मैं गाना प्ले करती हूँ आपका।
1: थैंक यू मैम।
0: जी सुनते रहिए सबके साथ रेडियो।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
3: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
4: मैं बनूंगा।
3: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80029-94921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 AM-Z पर।
5: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
6: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
5: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
6: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
7: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
5: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
7: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
5: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
7: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
8: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029-94911। जी हाँ, 80029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
9: हेलो।
10: हेलो
9: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
10: गुड मॉर्निंग मैम।
9: गुड मॉर्निंग,
10: बात नहीं बोल रही क्या?
9: नहीं जी, मैं मनोरमा।
10: ओ मनोरमा मैम, थैंक यू मैम आपको गाना सुनाने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू मैम। आप हमारी बहू का बहुत अच्छा गाना सुनाई जन्मदिन पे, बहुत अच्छा लगा मैम। तो मैम अभी क्या हो रही है आप?
9: कुछ नहीं, बस आप लोगों से बातें हो रही हैं।
10: ओ नाश्ता तो हो गई?
9: जी जी, और आप किए?
10: बिल्कुल बिल्कुल मैम, बस नाश्ता तो करके अभी बैठे, बहुत कॉल लगा रहे थे, बिजी बिजी बता रहा था। हम तो सोचे कि आज लगेगा नहीं, कम से कम मैम को थैंक यू बोल के गाना बजाने के लिए। मैंने एक गाना सुना था आज।
9: जी बता दीजिए।
10: वो गाना है शोले फिल्म का, ये दोस्ती नहीं तोड़ेंगे।
9: क्या गाना आप मुझे गा के बता सकते हैं दो लाइन?
10: हम तो गाना गाते ही नहीं, आप बोल रहे थे।

0: छोड़ेंगे। नहीं नहीं गाना सुनना था मैम
1: जी, आप तो बहुत अच्छा गा रहे हैं।
0: कहाँ गाए मैम, बहुत अच्छा, बहुत गंदा गाना गा।
1: नहीं नहीं बहुत ही अच्छा गा रहे थे आप।
0: बस हम चाहते हैं कि बस आप लोग को इसी तरह से प्रेम मोहब्बत बना हुआ है, बस हम लोग को मनोरंजन करते रहे। मैम ये गाना कब तक बजेगा मैम?
1: ये गाना आपको शाम को चलेगा?
0: नहीं आप तो बोलते हैं शाम को और 3 दिन बाद दस टाइम।
1: आप क्या करिएगा, बहुत सारे कॉल आए रहते हैं तो आगे पीछे हो जाता है।
0: हम इंतजार करते रहते, अब मेरा गाना आएगा, अब मेरा गाना आएगा। जब नहीं गाना आता तब एकदम उदास हो जाता है। फिर सेकंड दिन इंतजार करते, अब आएगा अब आएगा, फिर भी नहीं आता। फिर थर्ड दिन आता है गाना, हमें बहुत खुशी होती है।
1: सुना दिया जाता है ये गाना आपका 2 दिन में सुना दिया जाता है, या तो आज नहीं तो कल।
0: तो आज तो फ्राइडे है मैम
1: जी,
0: तो मंडे को हो जाएगा ना, सैटरडे को। बहुत बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत खुशी मिलती है। बहुत ही बहुत खुश थी कि हमारे जन्मदिन पे आप गाना, बहुत नाइस सॉन्ग था मैम, बहुत नाइस सॉन्ग। हमने बोले थे कि आप अपना पसंद से एक गाना गाइए बजाइएगा, बहुत अच्छा लगा मैम। इसके लिए बहुत थैंक यू, आप स्वस्थ रहे मस्त रहे, इसी तरह हम लोग को एंजॉय करते रहे। थैंक यू मैम
1: जी, मोस्ट वेलकम। ऐसे नाम बता दीजिए अपना।
0: मेरा नाम है शंकर गुप्ता, मैं गया जी से बोल रहा हूँ, बोध गया से।
1: अच्छा
0: जी जी मैम, थैंक यू मैम।
1: गाना प्ले करते हैं।
0: थैंक यू मैम
1: जी, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंगिम 90.4 FM।
0: ठीक है मैम, थैंक यू।

0: हेलो,
1: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: नमस्कार मैम।
1: नमस्कार
0: मैम।
1: जी अनस मैम, नाम बता दिया अपन।
0: सुधीश कुशवाहा।
1: सुधीश
0: जी।
1: अच्छा जी, तो कैसे हैं आप?
0: मैम
1: तो नाश्ता वास्ता भेजा।
0: नाश्ता खराब कर हो गई। आप कौन?
1: हमारे भी हो गया।
0: आजकल प्रोग्राम लेके चलो
1: वो भी चलो बहुत जल्दी, दो तीन दिन में वो चालू हो जाए।
0: आजकल हमारा शनिवार
1: तो फिर आवाज की फरमाइश
0: सुना दी। हल्का जाना देखी साथ क्या निभाओगे?
1: कौन सा?
0: उनके पैर पर देखी साथ क्या निभाओगे?
1: तारीख जाना गा के बता सकते
0: नहीं ना जाए गाना याद रह जाओगे।
1: अच्छा अच्छा, चलो इतना बात नहीं चल रही। जाना के सुनाने के लिए चाहते नहीं तो चलिए फिर प्ले करते हैं गाना।
0: जी मैम।
1: जी सुनत रही सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
3: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
6: आज ही आएं गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
5: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
6: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
5: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
6: पता जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94-512-11-001।
7: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
8: Now pick it up, pick it up. Hello. Now pick your phone up. Hello. Pick it up, pick it up. Hello. Now pick your phone up.
9: दोस्तों ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
10: हेलो।
11: हाँ जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंग 95.4 FM।
10: नमस्कार मैम।
11: नमस्कार।
10: भारती मैम बोल रहे हैं?
11: नहीं
10: मनोज मैम बोल रहे हैं।
11: जी
10: कैसी है मैम?
11: जी मैं कुछ हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
10: जी मैम हम भी अच्छे हैं, और सब आगे लोग कैसे हैं?
11: जी सबको ही बढ़िया है।
10: जी मेरा नाम पप्पू कुमार है, पड़रौना बढ़रिया से बोल रहा हूँ। तो मैम गाना सुना दीजिए हमको।
11: बता दीजिए
10: तीज का गाना, कुछ अच्छे कलाकार का सुना दीजिए।
11: तीज
10: जी जी।
11: और जो गाना ये बताया वो डेडिकेट भी है।
10: अब रेडियो रिलीजन जितने भी श्रोता सुन रहे हैं सभी सुनेंगे, और मैम आज बज जाएगा?
11: आज नहीं तो कल बज ही जाएगा।
10: जी कैसे, आज हम जा रहे हैं गोपालगंज ही, तो सुन रहे थे कि वो वहीं से हम सुन ले आज।
11: बिल्कुल
10: ठीक है मैम, तो गाना सुनवा दीजिएगा और तीज के सभी भाई और बहनों को बधाई।
11: जी जी आपको भी।
10: जी मैम
11: जी, तो प्ले करते हैं रेडियो रिलीजन 90.4 FM।
10: थैंक यू।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंग 94.4 FM में। जी कैसे हैं आप?
0: तो
1: क्या हो रहा है, क्या करते हैं आप?
0: मैं तो स्टोरकीपर की नौकरी करता हूँ 12 बजे।
1: अच्छा जी, तो क्या है आपकी फरमाइश?
0: फरमाइश है गाना है ना, तुम याद आया करो, याद आने से पहले आ जाया करो।
1: जी
0: सुना,
1: गाना किसी को सुनाना भी चाहते हैं आप?
0: गाना अपनी वाइफ को, आपको, तमाम रेडियो सुनने वाले श्रोताओं को और रेडियो परिवार को।
1: ओके जी, तो फिर प्ले करते हैं आपका सुंदरी सबके साथ रेडियो 94.4 FM।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
2: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर एमडी सादाब के पास, जो है ईएनटी स्पेशलिस्ट।
3: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर एमडी सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ईएनटी केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर आरके मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
4: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
5: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
4: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से 2:00 PM।
5: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
4: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया, बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
5: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
4: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
6: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
7: हेलो
8: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4।
7: सलाम मैम।
8: वालेकुम अस्सलाम,
7: कैसी हैं मैम?
8: जी मैं ठीक हूँ, आप बताइए।
7: जी हम भी अच्छे हैं। मनोरमा मैम
8: जी,
7: हेलो माय चॉइस में आपका भी स्वागत है हमारे साथ।
8: जी जी जी।
7: और बताइए मैम, नाश्ता हो गया?
8: हाँ, नाश्ता तो हो गया। और आपका?
7: जी हमारा भी हो गया। चलिए तो नाम बता देते हैं, मेरा नाम सफरोज अली, गोपालगंज से बोल।
8: जी जी, गोपालगंज में कहाँ?
7: गोपालगंज में गाँव है आटिल टोला, वहीं से। अभी फिलहाल में गोपालगंज टाउन में ही है।
8: कहाँ, किस जगह?
7: फिलहाल में अभी चंद्र रोड में है।
8: अच्छा, तो वहीं
7: है? नहीं, घर तो हमारा आखिर टोला गांव में है।
8: तो फिर यहाँ पे
7: काम करते हैं मैम।
8: अच्छा जी,
7: शॉप है अपनी।
8: चलिए, बहुत अच्छी की बात है
7: जी। हम कहीं भी रहते हैं, रेडियो सुनते रहते हैं और जुड़ते रहते हैं।
8: जी जी, चलिए आपको दिल से धन्यवाद।
7: मैम एक बात बताते हैं आपको, मतलब रेडियो सिस्टम को इतना लगाव हो गया ना, इसके अलावा कुछ भी सुनने का हमको मन ही नहीं करता। हाँ मैम, आपको चले ना चले लेकिन सुनते रहते हैं।
8: तो भी बहुत जल्दी चलने
7: वाला है, नहीं चल रहा है तो मन नहीं लग रहा है मैम, कोशिश कीजिए चलाने का।
8: जी जी, बहुत जल्द चलेगा।
7: और ये तो चलता ही रहता है मैम। तो हमको आज एक भोजपुरी सॉन्ग सुनाइए, हिंदी तो हमेशा सुनते ही है।
8: बता रही
7: है। जी, गाने का नाम है याद है, गाने का नाम है याद और प्रमोद करेमी का आवाज है, यही सुनना है।
8: गाने के बोल,
7: गाने के बोल यही है याद, ऐसा ही कुछ नाम है गाने का।
8: क्या बोलेंगे कि नहीं बता सकते हैं?
7: ये वाला गाना तो हमको खुद याद नहीं, लेकिन कहीं पे सुने थे, बहुत अच्छा लगा हमको, इसलिए सोचे कि यही वाला सुन ले आज। याद ऐसा ही करके सर्च कीजिएगा आ जाएगा।
8: गाना आप डेडिकेट भी करना चाहते हैं?
7: डेडिकेट है सबसे पहले आपको भारती मैम को और सभी रेडियो दोस्तों को। कोई हमको तो डेडिकेट करता नहीं लेकिन हम सबको करते हैं। और चलते चलते तो ये एक बात बोलेंगे मैम, उस दिन मेरा फर्स्ट टाइम बजा दी इसके लिए हम इतना खुश है आपको मतलब बता नहीं सकते कितना खुश है, लेकिन बहुत खुश है। बुधवार को फर्स्ट टाइम बज गया मेरा। हाँ मैम फर्स्ट लगाए हैं, दो तीन मिनट पहले से लगा रहे थे।
8: चलिए प्ले करते हैं गाना।
7: जी मैम हमको रेडियो का रूल पता हो गया है इसलिए बहुत पुराने इसलिए कैसे कब कॉल करना है। चलिए मैम तो एडवांस में धन्यवाद।
8: तो प्ले करते हैं।
7: बाय।

0: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंची 90.4 FM में।
1: नमस्ते
0: नमस्ते जी। ठीक था, अपन बताए क्या तबियत? ठीक नहीं क्या जी?
1: ठीक हुआ,
0: बहुत आवाज स्लो आवा था। अच्छा हाँ हाँ, हो गई बार और भाई चलिए ठीक है। तो क्या बात की फरमाइश?
1: हिंदी सॉन्ग बजा दी कौन?
0: अच्छा, बहुत आवाज स्लो आवा था। अच्छा हेलो
1: बोली
0: कावल लो, कुछ बोल बता जी। आज खुश नजर नहीं किया तो कुछ तो बात बा। चले ठीक
2: सूते क्यों ना फोन लगे
0: तनिषा जागलो ओके मुई से।
2: नंदन क्या बोल रहे फूलवा धरा के हम चौकिया पर रख चल बनी है हम कहीं ना बती दी बाकी पति आवे लगे है।
0: चलिए रोगा लो अपना में झगड़ा कर ले बहन, हमरा से झगड़ा थोड़ी बा।
2: हाँ इधर बात सही बा।
0: चलिए कौन बात ना, लड़ाई ना कोई गला। और गाना जन बतनी है क्यों सुनाए की विचार तनी?
1: हाँ सबसे बोले रोगा की भारती दीदी के सोनी दीदी के गाना सुनता है लोग मेरे के और हम सुन
2: मेरे दी एक्सी सियाल बहन के साथ मिठाई लिया किया जन तो उठना खिल गया। हाँ
0: मिठाई आ गई शाम के।
2: हाँ
0: और अपन भैया के ना सुनाया
1: ना?
0: अच्छा चलिए ठीक बात, तो गाना प्ले करते नहीं जी? गाना प्ले करते नहीं, एंजॉय करी लो।
1: ठीक बात,
2: नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते।

0: अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना।
5: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
4: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में,
2: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
6: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
7: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
8: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
7: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
8: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
7: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
9: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
10: हेलो
11: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिंग 90.4 एफएम में।
10: नमस्ते जी।
11: नमस्ते, नमस्ते। ना झगड़ा मत करी लो, मान जान थोड़ा देर बाद। अभी तो अपना नाम बता दी।
10: कौन
11: सा
10: भोजपुरी सॉन्ग?
11: भोजपुरी में कौन सा?
10: भोजपुरी में भाई बजा दी, जय ना पूरे बुआ बोला जदुआ मारे बंगली।
11: अरे गा के बता सकते
10: हैं ना की
11: माँ समझ में ना आई गई, बता देती।
10: स्पेशल में कल्पना दीजिए, सोनी दीदी के, भारती दीदी के और पूरा रेडियो रेडियो के सुनने है। रौजा आजकल छुट्टी नहीं की, मतलब क्या बोले मेला घूमने का थी। हाँ ऐसे रोज रोज मेले का
11: एंजॉय। चलिए तो फिर और गाना प्ले करता नहीं।
10: ठीक बात, ठीक।
11: नमस्ते।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है YouTube 94 एफएम में।
1: और बताइए
0: जी, सब बढ़िया है। आप बताइए अपना, आप कैसे हैं?
1: प्रभु की कृपा चल रहा है। आपको प्रोग्राम सुनने मेरे को बहुत अच्छा लगता है।
0: अच्छा जी,
1: आपका क्या नाम हुआ मैडम?
0: जी मेरा नाम मनोरमा।
1: मनोरमा जी है
0: जी।
1: और कोई भारती दीदी है?
0: हाँ हाँ उतनी है।
1: वो भी आती है
0: जी।
1: अच्छा, तो ये बताइए कि मेरा ये फरमाशी गाना कब सुनाएगा? जैसे
0: आप
1: गाना मेरे को बाद मिल जाएगा फरमाशी जो बोलूंगा।
0: ये गाना आपका आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा, दोनों दिनों में।
1: हाँ
0: जी,
1: आज का आज का समय चला गया?
0: नहीं, आज भी बच सकता है। अगर बहुत सारे कॉल्स आएंगे तो कॉल आगे पीछे हो सकते हैं।
1: अच्छा, नहीं तो कल 9 बजे से?
0: नहीं, शाम को 5 से 7 के बीच।
1: शाम को 5 से 7 के बीच आज मिलता है?
0: आज भी चल सकता है।
1: अच्छा, आज भी चल सकता है, कोई गारंटी नहीं है?
0: नहीं,
1: ऐसा नियम हो ना कि जिस दिन हम फरमाइशी करते हैं उसी दिन शाम को गाना आ जाए तो अच्छी उतर जाए।
0: जी जी, वो तो वैसे ही होता है, लेकिन
1: जैसे जैसे हम आज अभी रिकॉर्डिंग करवाया, अभी फोन से बात किया और हमारा शाम को 5 बजे गाना मिल जाए मेरा पसंद का, तो आदमी एकदम मने उसे कोई ठिकाना नहीं कब मिलेगा, तो फिर आदमी विचलित हो जाएगा ना।
0: जी जी बिल्कुल, तो वैसे ही होता है, लेकिन
1: आप लोग का भाई गोपालगंज में रिमझिम स्टेशन 4 चांद लगा दिया है और आगे बढ़ेगा, ये तो बात मानना पड़ेगा भाई। शिवाज जिला बसौली से बोल रहे हैं
0: जी। तो क्या आप रेडियो रिंगी में पहली बार कॉल किए हैं?
1: नहीं, एक बार इसको पहले भी किया था, लेकिन मेरा फरमाइशी आया ही नहीं, कब आया पता ही नहीं चला।
0: अच्छा, तो सुने नहीं होंगे आप?
1: नहीं सुने नहीं, 2-3 दिन लगातार हम सुने, लेकिन वो क्या ना है प्रभु कृपा से मेरे को कब आया कब नहीं गया पता ही नहीं चला, इसीलिए तो मैं बोलता हूँ कि अगर डिटो रहेगा ना कि आज शाम को मेरा फरमाइशी पूरा हो जाएगा या कल शाम को पूरा हो जाएगा या सुबह पूरा हो जाएगा कल 9 बजे, तो मतलब शाम को ही पूरा होता है कि सुबह होता है?
0: जी, आपका ये कॉल जो रिकॉर्ड करा रहे हैं शाम को भी पूरा हो सकता है।
1: नहीं तो कल शाम को?
0: नहीं तो कल शाम तक फिक्स है।
1: अच्छा, कल शाम को फिक्स है। 5 से 7 का हम इंतजार करते हैं। और मेरा गाना का है यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा की गोरी मैं क्यों काला।
0: जी, वैसे आप अपना नाम नहीं बताए?
1: हाँ जी, मेरा नाम प्रभुनाथ सिंह है, आप पूछे नहीं मेरे को।
0: और कहाँ से हैं आप?
1: और मैं हूँ यहाँ चेलिया बसौली नवीन बाजार से।
0: ये कहाँ पड़ता है?
1: ये हरदिया से पश्चिम पूरब पड़ता है।
0: अच्छा जी,
1: हरदिया मोड़ से पूरब पड़ता है 6-7 किलोमीटर बसौली।
0: जी,
1: मैं वहीं से बोल रहा हूँ, और मेहरबानी करके अब मेरा गाना सुनाइए ताकि मेरे को खुशी होगा। बाकी का गाना आदमी नहीं लेता है, लेकिन आप लोगों से बातचीत करने में आनंद आता है, वो कुछ और है।
0: जी जी, तो मैं पूरा कोशिश करूंगी कि ये गाना आपका आज ही चले।
1: आज प्रयत्न कीजिए, आज शाम को 5 बजे चल जा रहे थे, कल तुम्हारे श्योर 100% मैं आज 5 बजे और कल 5 बजे में इंतजार करूंगा आपका। है
0: जी बिल्कुल,
1: चलिए ओके, थैंक यू।
0: और ये गाना किसी को सुनाना भी चाहते हैं?
1: हमारे दोस्त जो सुनेंगे सारा, तो मेरा पूरा रिंझिम का श्रोता है, सब मेरा दोस्त है, सब सुनेंगे, अकेला थोड़े सुनेंगे, आप भी सुनिएगा।
0: जी बिल्कुल, तो फिर प्ले गाना आपका।
1: हाँ जी, प्ले के लिए
0: रेडियो रिंझिम 90.4 FM में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
0: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने तड़कुल के पास गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
3: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
4: भरोसे वाले से लेंगे,
3: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
4: और कीमत भी।
3: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
5: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
6: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
1: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
2: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
7: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करें 85070-32042 पे।
8: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
9: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
8: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80029-94921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
8: ओनली ऑन रेडियो रमझे 90.4 अमजैट पर।
10: Now pick it up.
11: Hello.
10: Now pick your phone up.
11: Hello.
10: Pick it up.
11: Hello.
10: Now pick your phone up.
12: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029-94911। जी हाँ, 80029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
13: हेलो
14: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंजन 90.4 एफएम में।
13: जी नमस्कार।
14: नमस्कार,
13: क्या हाल खबर है जी?
14: जी बिल्कुल बढ़िया।
13: आवाज पहचानी आपने?
14: पहचाना सा तो लग रहा है।
13: बताइए।
14: सही में बताते हैं, आप ही बताते तो सही रहता।
13: पहचान भी गई है मनोरमा दिया करेंगे, आप ही बता दीजिए।
14: पहचान गया लेकिन कहीं कुछ और नाम रख दे आपको बुरा लगे।
13: कहा बुरा लगेगा, एक बार बताइए तो सही।
14: जी जी, तो मैं आपको बता दूँ की आप दिलीप जी बोल रहे हैं ना?
13: जी बोल रहे हैं। मैं तो 11 बजे 10 मिनट ट्राई करते 11 बजे 16 मिनट हो गया, उस समय से प्रतीक्षा कर रहा हूँ, लगा रहा हूँ लेकिन लग ही नहीं रहा है। इस तरह के सब 10 मिनट से लगता है ट्राई करने के लिए। और बताइए कैसी है?
14: मैं तो ठीक हूँ, आप अपना बताइए, आप कैसे हैं?
13: हम भी बढ़िया हैं, बस अभी गाड़ी पार्किंग से निकाले हैं, सोचे हैं कि पहले मनोरमा जी से बात कर ले उसके बाद निकले हैं। कहा है कि सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सभी आदमी को प्रतीक्षा रहता है आपसे बात करने के लिए। क्योंकि ऐसे तो बात हो नहीं सकती, कॉल के माध्यम से ही बात हो सकती है।
14: जी जी।
13: तो मौसम कैसा है अभी गोपालगंज पे? यहाँ तो गर्मी बहुत ज्यादा है।
14: इधर मौसम तो ठीक है, कभी धूप कभी छाँव हो रहा है।
13: तो बारिश होने की चांस है कि नहीं?
14: बारिश तो होगी ऐसा तो लग रहा है,
13: मौसम लग रहा है बारिश का। और भाषी जी का हाल चाल?
14: वो भी ठीक है,
13: चलिए बढ़िया ही होनी चाहिए। आप दोनों खुश और खुशहाल रहे हैं।
14: जी जी।
13: ऊपर वाले की दुआ होता है, सब ऊपर वाले कृपा होता है, लेकिन नीचे वाले का वही होता है कि मुंह से आवाज आता है कि हाँ आप लोग ठीक रहे, तो ऊपर वाले के ही कृपा से सब कुछ आवाज निकलती रहती है। नशापन सही से हुआ ना?
9: हाँ हाँ हो गया रहती है ना।
13: हाँ हम भी किए हुए हैं, अभी तो मैं सोच रहा हूँ कि आप बढ़िया से किए हैं कि नहीं। बारह साढ़े बारह बजे तक आपको जो है ना कॉल से बस आपको जवाब करना पड़ेगा, और पानी साथ में लेके बैठिएगा ठंडा बोतल, कहीं खराब ना हो
9: जी।
13: तो जाना है हमारी दुलारिया हो चले जाइया ना सेवा करके हम।
9: क्या बोलेंगे जाके बता सकते हैं?
13: इसका बोल है हमारी दुलारिया चले गई हम सेवा करके हमार। ओकरा बाद बात जेकर बानी ले गई है लास्ट में बटे, तो ये बहुत अच्छा गाना बटे ना देगा। सबसे पहले आपको और भारती जी हैं और सविता जी, बबीता जी, गुड़िया जी, नेहा जी, इनका भारती जी हैं, सगीर अंसारी, महबूब आलम, मुस्तफा आरम, सोनू भाई, आजाद भाई और अफसर भाई हैं, अहमद भाई हैं, और इसके बाद जो है सारी चीजें और सभी दोस्तों के गाना जो रिक्वेस्ट है तो सुना दीजिएगा। बाकी जो है और भी लाइन में लगे होंगे।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
0: मनोरमा मैम, प्रणाम।
1: प्रणाम।
0: एक पर्सन बानी, गणेश कुमार मिश्रा दिल्ली से।
1: जी जी भी बानी, अपन बताई।
0: पहचाना तनी?
1: हाँ हाँ पहचाना तनी।
0: पर्सन बानी, तबियत पानी
1: सब ठीक ठाक बा? हम ठीक बानी।
0: मौसम बदल था?
1: ठीक बानी
0: ठीक है बानी। काम पर बानी आज तनी जल्दी लग गई, 20:30 में लग गई।
1: हाँ वे कहे रही बड़ा जल्दी लग गई है।
0: नाश्ता कर के आदमी 9 बजे काम पर लगेला, नजदीके बा काम, नजदीके बा 2 मिनट लगेला आवे में। नाश्ता पानी कर के आदमी 9 बजे आई, ओकर बाद काम पर लगी। अभी एगो टेंशन रहे लगी फोन लग जाए, एक बाद में काम होत रही। नाश्ता पानी के लिए आज तो रौरे के सुनावे के बाद चुन के रख लेते एकदम रौड़े खाती। वही तो बताई।
1: हाँ हाँ बिल्कुल बताई।
0: रौड़ा रौड़े अपने से फरमाई?
1: ना ना राउर फरमाइश हम बजाय रौड़े बताई तो पहले।
0: अरे हमारे ये फरमाइश बा की सासुस के न खरा ससुरा में झेल के परी रोटिया के नहीं के परी।
1: अच्छा ये गाना?
0: हाँ ये गाना।
1: चलिए गाना तो ठीक,
0: खास करके रौरा के आरती जी के आज केहू को नहीं सुनाए के।
1: हाँ
0: आज केहू को नहीं सुनाए के, तुम्हें आदमी सुनाए के।
1: अच्छा अच्छा अभी ठीक बा
0: सुना दे। बड़ा की अच्छा
1: काम के
0: हमारा अभिनाश चली
1: कहे
0: चाहे हमारे लास्ट में चलो।
1: ना ना लास्ट में ना चली, ठीक बात तो चलिए प्ले कर देना और गाना।
0: ठीक है सर, प्ले करो। ठीक है।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395461 या 97070065775।
4: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99399-66999।
3: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
2: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
3: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
2: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
3: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
3: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
2: कॉल नाउ 9056-59536 या 9056-57902।
6: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
6: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
6: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
7: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
8: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM।
9: नमस्कार मैडम।
8: नमस्कार,
9: मैं रमार गुप्ता पहला खास से बोल रहा हूँ।
8: जी, कैसे हैं आप?
9: बढ़िया है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। मिजाज का मौसम हुआ है, मिजाज का बहुत बढ़िया मौसम हुआ है।
8: अच्छा,
9: जी सुना है,
8: बता दीजिए।
9: गुलाम अली का कोई बढ़िया सा गजल
8: आप बता देते तो सही रहता।
9: गुलाम अली का कोई गजल हो और सुनवाना चाहते हैं, सतीश साइकिल दुकान असंदापुर चौक और शंकर भाई श्री सिंह हरपुर।
8: अच्छा, चलिए तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
9: नमस्कार मैडम।
8: नमस्कार, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: और मैडम क्या हाल
0: जी? सब बढ़िया है, आप बताइए आप कैसे हैं?
1: बढ़िया है, मजे में है, काम कर रहे हैं।
0: अच्छा जी, वैसे क्या करते हैं?
1: सिलाई करता हूँ।
0: अच्छा जी जी, तो फिर क्या है आपकी फरमाइश?
1: आज फरमाइश हमको बोल राधा बोल का वही टाइटल सॉन्ग है, बोल राधा बोल तूने ये क्या किया।
0: जी जी,
1: ये गाना रेडियो रिमझिम सुनने वाले श्रोता है सबको सुनाना चाहता हूँ।
0: ओके जी, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका। जी, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: Now pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
2: तो श्रोताओ, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं। नंबर है 8029494911 पर कॉल करके। तो अब हमें दीजिए जाने की इजाजत और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।
3: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है। तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
6: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
7: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
8: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
7: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9847-34-34-68 पे।
9: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
10: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
9: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
10: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
9: और सबसे खास बात ये है, ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
10: तो फिर देर इस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
9: अभी कॉल करें 9289-22567 या 9774-86165
10: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
11: ठक ठक।
12: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
11: अच्छा, मिला ही नहीं।
12: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
7: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
12: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
7: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
13: Excuse me boss, you have a text message.

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। मैं सोनू SMS फरमाइश के साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे समय 9:29 हो रहे हमारे स्टूडियो घड़ी में और कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को एक छोटा सा मैसेज करना है। मैसेज में अपना नाम, गाने का नाम, कहां से मैसेज कर रहे हैं उस जगह का नाम बताना है, टाइप करना है और फिर सेंड करना है हमारे नंबर 7277-1665 पे। कुछ ही समय में आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे यदि आप सभी का मैसेज पहुंचेगा तो। तो यदि आप सुनना चाहते हैं तो अभी टेक्स्ट मैसेज करें 7277-1665 पे। यहाँ देखा जाए कुछ मैसेज हमारे पास पहुंचा हुआ है श्रोतागण की, तो मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे पहला मैसेज हमारे पास पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि हेलो सुनो भैया नमस्ते, MD 97 दरभंगा भजीतपुर से मुझे गाना सुना दीजिए, फिल्म तहलका का। गाने का बोल है दिल दीवाने का डोला दिलदार के लिए। काफ़ी प्यारा सॉन्ग, आपके गाने के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हेलो मुझे गाना सुनना है, सॉन्ग का बोल है शुक्रिया शुक्रिया दर्द जो तुमने दिया। और इस मैसेज को करती हैं सोनी सरावर नंबर 1 गोपालगंज से, तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। गाने के फरमाइश तो पूरा करने की कोशिश है। आगे मैसेज, गाना मेरे महबूब क्या मत होगी, फिल्म एक्श इन बॉम्बे, नेम सगीर अंसारी जी इस मैसेज को भेजे हुए हैं तेजपुरा शाम से और डेडिकेट करते हैं, स्पेशल में नाम एक ही दिए हैं दिलीप राम भाई जी को। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, सुनो भाई नमस्कार और सभी दोस्तों को नमस्कार, मुझे गाना सुनना है जिसका बोल याद तेरी मेरी प्यार की कहानियां है। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे और आप सभी से एक निवेदन करेंगे कि आप इतने सारे नाम देते हैं और आप जानते हैं कि बहुत कम समय का कार्यक्रम बना हुआ है, तो आपसे निवेदन पूर्वक कहना है कि जो इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं, जो इस कार्यक्रम को सुनते हैं, उन्हें श्रोतागण के नाम देंगे तो बेहतर रहेगा मेरे समझ के अनुसार। आगे आपकी मर्जी, आप पूरे दिन भर के कार्यक्रमों में जुड़े हुए श्रोतागण के नाम देते हैं तो आपसे यही मेरा निवेदन है कि फिलहाल जो कार्यक्रम सुन दें, जो इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं उन्हीं का नाम दें। फिलहाल आगे बढ़ेंगे, आगे जो मैसेज पहुंचे हुए मैसेज को शामिल करेंगे। आगे लिखा गया है कि हेलो जी नमस्ते, शंग तारों का महबूब अमर से, और इस मैसेज को करती हैं निशा शुक्लवा से, तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हाय मैं कमलेश कुमार विलेज सबिया फील्ड गोपालगंज से और मैं भी जुड़ चुका हूँ इस शो से, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज, हेलो सर हम सफरोज अली आकेल टोला से और आपका भी स्वागत है। सफरोज जी कहते हैं कि वेरी गुड इवनिंग, आप बने रहे हमारे साथ। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हेलो सर मैं सन्नी पटेल दलिया से और शंग अखिया लड़ल बजब से दिल में करार नहीं थी। ओह क्यों, क्या हो गया है, गाने के फरमाइश से तो पूरा करने की कोशिश है। और आप सभी से एक और सलाह सुझाव आप सभी के बीच साझा कर दें कि जब आप गाने सुनना चाहते हैं, जल्दी गाने सुनना चाहते हैं तो आप एक मैसेज किए हैं उसी मैसेज पे स्थिरता बनाए रखें। आपकी फरमाइश हम सीरियल बाय सीरियल जैसे मैसेज शामिल किए हैं वैसे आपकी मैसेज को हम शामिल करते हुए फिर गाने को प्ले करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो आप स्थिर रहें, इधर उधर नहीं करना है, गाने बिल्कुल प्ले होगी। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे और MD 97 जी के गाने के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इन्हीं के मैसेज हम पहले शामिल किए थे और इन्हीं के गाने के साथ इस कार्यक्रम की आगाज़ करते हैं, दिल दीवाने का डोला दिलदार के लिए।

काफ़ी प्यारा सॉन्ग रेडियो एमसी 94.4 FM पे सुन रहे हैं आप सभी, और काफ़ी लंबे गाने हैं तो सुन चुके हैं, कुछ ही कड़ी बचे हुए हैं तो रुकते हैं और आगे बढ़ते हैं और अगले गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं, क्योंकि कई श्रोतागण की फरमाइश हमारे पास पहुंची है और आगे गाने की फरमाइश किया गया है। गाने का बोल दिया गया है तारों को मोहब्बत अमर से, और इस मैसेज को करती हैं निशा शुक्लवा से, और कहती है कि आपकी माताजी का तबीयत कैसा है? तो सब कुछ ठीक ठाक है, नॉर्मल हो चुका है, और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि सर मैं अंकुश कुमार, मुझे सौतन मूवी का गाना सुनना है। बिल्कुल सुनाएंगे, फिलहाल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, बहुत बहुत शुक्रिया सुनो भैया आपका मुझे मेरा सॉन्ग सुनाने के लिए। MD 97 दरभंगा भाजीतपुर से बस यूँ ही सुनाते रहिए। बिल्कुल सुनाते रहेंगे, आप लोगों का साथ चाहिए, हम क्यों नहीं सुनाएंगे, आप ही लोग के लिए तो है हम सभी। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और अगले गाने की फरमाइश तो हम प्ले करने वाले, श्रोतागढ़ की मैसेज तो बता ही चुके हैं, तो गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं, एंजॉय करते हैं हम सभी निशा की फरमाइश के साथ।

0: सुनिए सुनिए सुनिए,
1: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
0: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
1: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
0: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
3: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
4: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
3: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
4: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
3: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
4: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
3: संपर्क करें 84710-3992 या 90765-6750।
2: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
3: हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
2: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
3: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
2: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
5: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
5: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
3: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
5: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करे।
3: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
5: संपर्क करे 9006978856 या 6203139564।
6: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
7: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
3: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
5: RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
3: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
3: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
5: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
3: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
5: कॉल करें 70705763100 या 70705042100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।

छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो रेमझिम 94.4 FM पे सोशल लाइफ में फरमाइश का। और यहाँ पे अभी मैसेज पहुँचा, सोनू बाबू हम भी जुड़ गए हैं भाई, कैसे हैं? तो मैं तो बढ़िया हूँ, अपना बताएं कि आप कैसे हैं। वीरेंद्र गुप्ता भैया के करियर रक्सौल नेपाल बॉर्डर से और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि थैंक्स सॉन्ग सुनाने के लिए, आपको भी धन्यवाद है रेडियो रेमझिम सुनने के लिए। अगले मैसेज और अगले गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं। और इनके तरफ से भी मैसेज पहुंचा हुआ कि मेरा सॉन्ग नहीं सुनाएंगे क्या, तो हम शुरू में ही बोल चुके हैं कि आप लोग स्थिर रहें, आपकी फरमाइश एक एक करके जैसे मैसेज हमने शामिल किए वैसे आपकी फरमाइश भी हम पूरी करेंगे एक दूसरे के बाद। तो फिलहाल आपकी भी फरमाइश हम प्ले करते हैं और इस मैसेज को करती हैं सोनी सरियावर नंबर 1 गोपालगंज से, गाने का बोल देती हैं शुक्रिया शुक्रिया दर्द जो तुमने दिया।

काफ़ी प्यारा सॉन्ग रेडियो रेमसीम 90.4 FM पे, और आप इंजॉय करें। यहाँ पे कई मैसेज पहुँचे हुए और कुछ श्रोतागण हैं जो कह रहे हैं कि सर मेरा सॉन्ग प्ले कर दीजिए, सनी पटेल जी, और एक और हमारे श्रोतागण हैं। तो आप सभी से कई बार हम अभी निवेदन कर चुके हैं कि आप एक ही मैसेज करके स्थिरता बनाए रखें, हम आपकी फरमाइश सीरियल बाय सीरियल प्ले करेंगे। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि थैंक यू दिल से मेरा सॉन्ग प्ले करने के लिए, शुक्रिया। चलिए, आपकी फरमाइश हम सभी ने सुना, अच्छा लगा, और आपको भी धन्यवाद है रेडियो रमजी में दर्द भरे गाने फरमाने के लिए। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि सर मेरा गाना बजा दीजिए। तो एक एक करके फरमाइश हम प्ले करेंगे, आप स्थिरता बनाए रखें। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा, लिखा गया है कि सोनू बाबू लगता है कि ये शुक्रिया अब थमने का नाम नहीं ले रहा है, अब आने वाले दिनों में देखिए कितने शुक्रिया चलेंगे। बिल्कुल, संख्या बढ़ती जाएगी क्योंकि दौर जो चल रहा है इसी का। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि विजय कुशवाहा सासा मोसा से राम लखन सॉन्ग सुना दीजिए। बिल्कुल, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, गाने के फरमाइश से तो पूरा करने की कोशिश है। आगे बढ़ते हैं और अगले गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं। अगली फरमाइश तेजपुर आसाम से सगीर जी करते हैं और डेडिकेट करते हैं दिलीप भाई जी को, और गाने का बोल देते हैं मेरे महबूब की आमद होगी।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
3: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
0: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
3: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
0: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में, और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
3: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत, यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
0: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
3: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665,
0: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
4: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
5: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
4: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
5: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
4: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर, गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
5: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
4: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
3: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-89793।
6: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई लाकी ना?
7: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
6: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
8: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
9: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
10: छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म, और ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो एमछिम 9.4 FM पे। और यहाँ पे आगे कई मैसेज पहुँचा, आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि प्लीज़ सर प्ले कर दीजिए, मैं सन्नी पटेल। तो आपको कैसे हम बताएं कि आपसे भी पहले हमारे सुविधागढ़ मैसेज करके बैठे हुए हैं अपने गाने के इंतज़ार में, तो उनकी मैसेज को हमें देखना है। अगर हम इधर उधर करते हैं तो भी कहेंगे कि हमारा नहीं सुनाए, उनका सुनाए। सो हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप स्थिर रहें, आपकी नंबर आएगी तो आपकी फरमाइश बिल्कुल पूरी की जाएगी। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और अगले गाने की फरमाइश हम दिलीप जी की करते हैं, और इनके तरफ से गाने का बोल दिया गया है, याद तेरी मेरी प्यार की कहानियाँ है, और इसमें कई इनाम दिए हुए, तो चलिए इकट्ठे हम बोलते हैं और डेडिकेट सभी को है। सुनते हैं इनके पसंद के गाने हम सभी रेडियो एमछिम 9.4 FM।

रेडियो एमसीएम 94 एफएम सुन रहे हैं आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस फरमाइश का। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, सोने भाई नमस्कार, और गाना सुनाने के लिए शुक्रिया आपको सोने जी। ओहो, आप हमेशा इधर उधर की बातें करते हैं दिलीप जी, आपसे हम कई बार बोल चुके हैं कि आप कार्यक्रम से संबंधित बातें करें, और जो पर्सनल बातें बात विचार करनी है वो उन सभी से बात कर लें जिनसे आप बातें करना चाहते हैं, जिनके बारे में जानना चाहते हैं। आगे में से पहुंचा हुआ है, और अगले गाने के फरमाइश हम प्ले करते हैं। यहाँ पे गाने के फरमाइश करते हैं सफरोज अली आखिल टोला से, और गाने का बोल देते हैं वेरी गुड वेरी बैड। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं आपके पसंद के गाने हम सभी रेडियो एम सी एम 94 एफ एम पे।

0: हमारा संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9528374088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है। तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 9955 97644।

हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे भारती, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। और समय हो गया है आप सबके मन पसंदीदा कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस का। तो यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9852 78 82 91। जी हाँ, 9852 78 82 91। और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72 77 16 65 96। जी हाँ, 7277 16 65 96। तो दोस्तों, चलिए बिना देरी किए कार्यक्रम की आज शुरुआत करेंगे। और आप सबके साथ आज एक प्यारे से गाने के साथ शो की शुरुआत करते हैं। और गाने की बोल है, पास वो आने लगे जरा जरा। तो चलिए गाना प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं सभी के साथ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।

तो अभी आप सुन रहे थे हमारी तरफ से एक प्यारा सा सॉन्ग और गाने की बोल थी पास वो आने लगे जरा जरा। और यहाँ हमारे पास काफ़ी सारे हमारे लिसनर जुड़ चुके हैं हमारे साथ और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि हाय मैम, हम गाना सुनना चाहते हैं। और रेहान खान मैसेज करने वाले हैं तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं हाय भारती दी, गुड आफ्टरनून, का हालवा कैसन बानी, और मेरा नाम गणेश कुमार पिपरा नारायण से, और इतना दिन से कहाँ भाग गए थे ज़रूर बताइए। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए आप कहाँ हैं। और जी मैं कहीं गई नहीं थी, मैं भी इधर ही थी, बस दूसरे कामों में लगी थी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है हेलो, मैं सरफरोज अली गोपालगंज से, गाना सुनना है और गाने की बोल पहुँची हुई है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है बिट्टू कुमार लखीसराय सूर्यगढ़ा से, और नमस्कार सोनी मैडम जी और नमस्कार भारती जी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे जो कि मैसेज पहुँचा हुआ है लिख रहे हैं कि हेलो हाय नमस्ते भारती दी, मैं श्याम सुंदर संग्रामपुर से, और मुझे भी गाना सुनना है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और आप सभी के गाने प्ले किए जाएंगे क्योंकि सभी के गाने एक हफ्तों से प्ले नहीं हुए हैं। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं हाय हेलो नमस्ते अजीत कुमार निषाद, मैं यूपी देवरिया भटनी से, और मेरा भी एक फरमाइश है हिंदी मूवी का। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपके भी गाने को प्ले किया जाएगा। और उससे पहले यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि वाओ शो चालू हो गया है बहुत अच्छा, और जी मैम नमस्ते गुड आफ्टरनून, मैम उत्तम सोनी हरपुर से, और मैं भी जुड़ गया हूँ जी मैम, मेरा भी हाजिर लगा दीजिएगा मैम, बहुत ही खूबसूरत ओपनिंग लाजवाब। तो बहुत बहुत स्वागत है आपको भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं हाय हेलो, मैं भी जुड़ गया हूँ बहुत दिन बाद, और मेरे भी हाजिर लगा दीजिएगा सुपर सॉन्ग पास आने लगे ज़रा ज़रा। और लिख रहे हैं कि मेरा भी सॉन्ग प्लीज़ सुना दीजिएगा। और गाने की बोल यहाँ पहुँची हुई है तो जी आपके भी गाने को प्ले किया जाएगा। और जितेंद्र कुमार बरौली से जुड़े हैं तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ इसी के साथ यहाँ हमारे पास गाने की फरमाइश रेहान खान जी की तरफ से पहुँची हुई है, और गाने की बोल है ओ साहिबा ओ साहिबा, और मूवी नेम है दिल है तुम्हारा, और काफ़ी खूबसूरत सा सॉन्ग है। तो चलिए बिना देरी के इनके गाने को प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656 या 9656 57902।
3: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
4: मैं बनूंगा।
3: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रमझेम 90.4 AMZ पर।
5: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रुमझिम 91.4 FM में, और सो है योर वॉइस योर चॉइस का। तो बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे, और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि थैंक्स मैम मेरा गाना प्ले करने के लिए। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है कि नमस्ते मैडम, हम भी जुड़ चुके हैं एजरा नवादा थाना चग्रामपुर से, सोना लाल जी और मेरी भी हाजिरी लगा दीजिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है उत्तम सोनी जी की तरफ से, लिख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग सुपर। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि नमस्ते मैम, संजय यादव दुबई से, और क्या हाल चाल है मैम, गाना सुनना है सुना दीजिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपके भी गाने को प्ले किया जाएगा। और मेरा हाल तो ठीक है, आप बताइए आप कैसे हैं। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि जी मैडम जी नमस्कार, भारती मैम जी, सोनी मैम जी और मिथिलेश चौहान बोलतानी हिजरा नवादा थाना संग्रामपुर, कल हम रुआ स्टूडियो में फ़ोन के लिए रहूँ रिंग भवे मैडम जी बात भवे। और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं मैसेज पढ़िएगा जरूर। नमस्ते नमस्कार भारती जी, हम राम कुमार राय भाई MP से, हमारे साथ शुभम भैया जी, और कार्यक्रम बंद हो गया था क्या, मैं बताइएगा जरूर, और गाना सुनना है, और गाने की बोल पहुँची हुई और काफ़ी खूबसूरत गाने की बोल है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और सो कुछ दिनों के लिए बंद था क्योंकि खुद हम ही छुट्टी पे थे। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं नमस्ते मैम, हमरो एगो फरमाइश बा गाना के, और गाने की बोल पहुंची हुई है और प्रकाश कुमार छपरा से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और आपके भी गाने को प्ले होगा किया जाएगा। और यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, हाय भारती जी नमस्कार, इरशाद मास्टर ग्राम धनाव से आपके कार्यक्रम से जुड़ गए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हम सरफरोज अली गोपालगंज से जुड़े हैं और गाने की फरमाइश पहुंची हुई है और गाने की बोल है मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, और काफ़ी खूबसूरत गाना है। तो चलिए बिना देरी किए इनके गाने को प्ले करेंगे और इंजॉय करेंगे रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

सोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।

0: अभी हम लोग सुन रहे थे बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग और गाने की बोल थी मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, और सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाज़ में ये प्यारा सा सॉन्ग था। और यहाँ मैसेज करने वाले थे सरफरोज अली, और इनकी तरफ से एक प्यारा सा वॉइस नोट पहुँच चुका है, तो चलिए सुनते हैं क्या है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मैम गाना बजाने के लिए, आपका इंतजार था बहुत ज़्यादा इस शो में, थैंक यू।
0: और काफ़ी खूबसूरत वॉइस के साथ मैसेज पहुंचा हुआ है, और यहाँ पे हमारे पास मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो मैम नमस्ते, मैं सीतापुर विलेज और यहाँ मैसेज डिलीट कर दिया गया है। और मैसेज करने वाले हैं सदाम जी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं नमस्ते मैडम जी, मुकेश खरवारा हिमाचल प्रदेश से, और लिख रहे हैं कि जब कोई ख्याल दिल से टकराता है, दिल ना चाह कर भी खामोश रह जाता है, कोई सब कुछ कह कर प्यार जताता है, कोई कुछ ना कह कर भी सब बोल जाता है, और काफ़ी खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे लिख रहे हैं कि मैडम जी गाना बजा दीजिएगा मेरा भी, और इनकी तरफ से भी गाने की फरमाइश पहुँची हुई है, तो जी आपके भी गाने की फरमाइश को पूरा किया जाएगा। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं हाय भारती दी, गुड आफ्टरनून, मैं करिश्मा कुमारी पिपरा नारायण से, और का हाल वादी, तो मेरा हाल तो ठीक है, आप बताइए आप कैसी हैं। और इनके तरफ से भी गाने की फरमाइश पहुँची हुई है, तो जी आपके भी गाने की फरमाइश पूरी की जाएगी, पर उससे पहले यहाँ गाने की फरमाइश पहुँची हुई है और कुछ मैसेज शामिल करते हुए गाने की भी फरमाइश को प्ले करेंगे। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है नमस्कार सलाम अलैकुम भारती मैम, भारती मैम है कि कौन मैम है, आप हमारा गाना वॉइस भेजे हैं सुनवा दीजिएगा, तो जी मैं भारती ही बोल रही हूँ, और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचे हमारे पास जो कि लिख रहा है मिथुन शर्मा बेंगलोर से जुड़े हैं और गाना सुनना चाहते हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, गाने को प्ले किया जाएगा। और उससे पहले यहाँ हमारे पास गाने की फरमाइश बिट्टू कुमार लखीसराय से जुड़े हुए हैं और गाने की फरमाइश पहुँची हुई है और इनके माध्यम से वॉइस मैसेज पहुंचा हुआ है, तो चलिए सुनते हैं क्या है इनकी गाने की फरमाइश।
2: नमस्कार मैम कैसी हैं आप, मेरा नाम बिट्टू कुमार जिला लखीसराय सुजगढ़ा से, एक गाना के लिए भेजे हैं मैडम जी, प्ले कर दीजिएगा, धन्यवाद।
0: और इनकी तरफ से गाने की लिंक पहुंची हुई है और गाने की बोल है तुम हमसे प्यार कर लो, और काफी खूबसूरत सा गाना है, तो चलिए गाना प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: ठक ठक।
1: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए।
2: अच्छा मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
3: सोहन मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
4: अरे टीना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
3: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
4: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
5: दादी आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है, उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
6: अरे बेटा घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
5: दादी किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
6: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
5: दादी अब डरने की जरूरत नहीं है, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
6: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
5: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
7: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198886973।
8: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM में और हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12:38 हो रहे हैं और शो चल रहा है योर वॉइस योर चॉइस का। तो यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98-52-78-82-91 और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72-77-16-65-96। तो चलिए बिना देरी किए आगे की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ हमारे पास काफ़ी सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं और जो कि लिख रहे हैं कि भारती जी नमस्कार, मैं भी जुड़ गया हूँ शो से और हमें पहचान रहे हैं कि नहीं ज़रूर बताइएगा। और थोड़ा तो कन्फ्यूज़न है पर आप ही बता दीजिए आप कौन हैं, इतने दिनों से थोड़ा नहीं आ रहे हैं तो कन्फ्यूज़न हो ही जाता है। लेकिन बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि गाने के बोल यहाँ पहुँचे हुए हैं और सुनील कुशवाहा मैयर MP से जुड़े हुए हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि भारती जी मेरा गाना है, मैं वेट कर रहा हूँ। तो जी आप भी वेट कर रहे हैं और हमारे काफ़ी सारे लिसनर अभी वेट कर रहे हैं अपने गाने की फरमाइश को सुनने के लिए। तो सभी के गाने को मैं एक एक करके प्ले करूँगी, घबराना नहीं है। और यहाँ पे जो कि मैसेज पहुँचा हुआ है, पहले से मैसेज पहुँचा हुआ है श्याम सुंदर जी की तरफ से जो कि संग्रामपुर से जुड़े हुए हैं और इनका गाने की फरमाइश वॉइस के माध्यम से पहुँची हुई है। तो चलिए सुनते हैं क्या है इनकी गाने की फरमाइश।
9: जाने दे मुझे जाना है, अरे वादा जो किया है वो निभाना है, अरे जाने दो जो जाना है। यही सॉन्ग अमिताभ बच्चन का।

0: तो अभी हम लोग सुन रहे थे काफी खूबसूरत सा सॉन्ग श्याम सुंदर जी की तरफ से, और गाने की बोल थी जाने दो मुझे जाने दो, और काफी खूबसूरत गाना था। और यहाँ पे उनकी तरफ से मैसेज पहुंच गया है जो कि लिख रहे हैं कि वॉइस के माध्यम से मैसेज पहुंचा हुआ है, तो सुनते हैं क्या है इनकी वॉइस।
1: थैंक यू भारती दीदी गाना बजाने के लिए, धन्यवाद, आपका बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे, अब शो में आ ही नहीं रही है, गाना बजाई इसके लिए बहुत धन्यवाद। एक खास आपके लिए गाना डेडिकेट था भारती दीदी, बताइए कि गाना कैसा लगा आपको सुनकर।
0: तो गाना तो आपका काफ़ी बढ़िया था और मुझे बहुत ही पसंद आया आपकी गाना। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि नमस्ते मैडम जी, हम भी जुड़ गए हैं और इजरा नवादा संग्रामपुर से सोनालाल जी जुड़े हैं और लिख रहे हैं थैंक यू गाना बजाने के लिए श्याम सुंदर जी को सोनालाल जी की तरफ से। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो मैम, गुड आफ्टरनून, मैं विनोद कुमार चौहान विलेज कोइनी साखे बाजार से, और हमें भी गाना सुनना है मैम, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो भारती मैम, मैं और रेडियो रिमझिम के सभी कार्यक्रम कार्यकर्ताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और आज हमारी फरमाइश का गाना भी ज़रूर बजा दीजिएगा। दिलीप शर्मा पटरा टोला से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ सभी के गाने आज फरमाइश प्ले किए जा रहे हैं और आपके भी गाने को प्ले किया जाएगा, पर थोड़ा सा वक्त लगेगा। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि लिख रही हैं कि करिश्मा जी 12 बजे का मैसेज किए हुए हैं, वॉइस के माध्यम से गाना पहुंचा हुआ है। तो जी आपके गाने की फरमाइश पहुंची हुई है और आपके गाने को प्ले किया जाएगा, और गाने की भी बोल भी पहुंची हुई है और वॉइस के माध्यम से भी पहुंची हुई, तो चलिए सुनते हैं क्या है इनकी वॉइस।
2: गुड आफ्टरनून भारती दीदी, इतना दिन से कहाँ थे, मेरे को गाना सुना दीजिए इन कमल सिंह के आवाज़ में, कोई प्यार ना दोबारा, यही सॉन्ग बजा दीजिए।
0: और काफ़ी खूबसूरत गाने की फरमाइश पहुँची हुई है, तो इनके गाने को प्ले करेंगे।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम एक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल की सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
6: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
5: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
6: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
5: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
6: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
5: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
7: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198886973।

हेलो नमस्ते नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, और मैं हूं आप सबकी दोस्त मनोरमा, और आप सुन रहे हैं योर वॉइस योर चॉइस। तो हमारे पास यहाँ बहुत सारे मैसेज पहुंचे हुए हैं, तो यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है। निषाद जी की तरफ से, और इन्होंने मैसेज किया, हाय हेलो नमस्ते अजीत कुमार निषाद, मैं देवरिया से, और इनको गाना सुनना राजा मूवी से कोई भी गाना। तो चलिए, तो आपके लिए प्यारा सा राजा मूवी का सॉन्ग प्ले करते हैं। अखिया मिलाओ कभी किया

0: के लिए शानदार ऑफर।
1: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर से सस्ता कहीं नहीं।
0: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
2: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
0: और सबसे खास बात ये है, ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
2: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
0: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8661
2: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
3: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
0: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2,00,000 रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
2: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
0: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
2: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
4: प्रसाद क्लिनिक।
5: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
4: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज,
5: बाकी दिन जादवपुर बाजार।

ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 91.4 एफएम। तो चलिए, यहाँ पे बहुत सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं जो कि लिख रही हैं करिश्मा जी, थैंक यू मैम सॉन्ग प्ले करने के लिए। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, नमस्कार प्रणाम बा मनोरमा मैडम, हम भी शो से जुड़ गए बानी, हमार भी हाजिर लगा दी जी। तो बहुत बहुत स्वागत बा राउर भी। और मैसेज करे वाला बानी सन्यासी रंजन जी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचल बा जो कि लिख रहे हैं शमशाद अली उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से, पहले तो बताइए इतने दिनों से क्यों प्रोग्राम बंद था, मेरे गाने की फरमाइश है

0: जी तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, नमस्ते भारती जी, हमको ये बताइए आज प्रोग्राम कितने दिन बाद में आपने चलाया है, क्या वजह था प्रोग्राम को आप लोग बंद कर देते हैं, और सब सुनाइए क्या हाल है। जी तो भारती जी भी ठीक हैं, और मेरे गाने की फरमाइश है जो कि लिंक के माध्यम से भेज रहा हूँ, और मैसेज करने वाले हैं निजामुद्दीन सऊदी अरब से। और इन्होंने वॉइस के माध्यम से भेजे हुए हैं, तो चलिए सुनते हैं इनकी वॉइस।
1: नमस्ते भारती जी, मैं ये गाना के लिंक भेजा हूँ, प्लीज ये गाना बजाइए और पूरे रिमझिम को सुनने वाले लोग को और सोनी जी को और मनोरमा जी इस सबको ये गाना हमारे तरफ से, और प्ले करिए गाने को।

0: अभी हम लोग बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग सुन रहे थे निजामुद्दीन जी की तरफ से, और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ जो कि लिख रहे हैं मनोरमा जी नमस्ते, हम भी आपके शो में जुड़ गए, धनेश कुमार मिश्रा दिल्ली से जी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इन्होंने बहुत ही खूबसूरत सा लाइन लिखा है जो कि इन्होंने लिख रहे हैं, बेवफाई उसकी दिल से मिटा के आया हूँ, बेवफाई उसकी दिल से मिटा के आया हूँ, खत भी उसके पानी में बहा के आया हूँ, कोई पढ़ ना ले उस बेवफा की यादों को, कोई पढ़ ना ले उसके, कोई पढ़ ना ले उस बेवफा की यादों को, इसलिए पानी में भी आग लगा कर आया हूँ। बहुत ही खूबसूरत सा लाइन है। और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ जो कि लिख रहा है मनोरमा में मेरा भी गाना बजा दीजिए, जो कि लिंक के माध्यम से है। तो और यहाँ पे अगला मैसेज है जो कि लिख रहे हैं, हेलो मैम गुड आफ्टरनून, मैं विनोद कुमार चौहान विलेज, कोई नहीं साखी बाजार से, हमको भी गाना सुनना है मैम। गाना का बोल है, हम तुमको निगाहों में इस तरह छुपा लेंगे, मौका मिलेगा तो बजा दीजिएगा मैम। तो बिल्कुल। और यहाँ पर मैसेज पहुँचा है जो कि लिख रहे हैं, हाय भारती जी नमस्कार, इरशाद मास्टर धनाव से आपके कार्यक्रम से जुड़ गया हूँ। तो जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इन्होंने वॉइस के माध्यम से फरमाइश किए हैं, तो चलिए सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हाय भारती जी नमस्कार, इरशाद मास्टर ग्राम धनाव थाना नासरीगंज जिला रोहतास बिहार से, कई दिनों के बाद आप शो में आई हैं, और कहिएगा क्या हाल चाल है आपका, कोई दिक्कत था, तबीयत खराब था, और गाना सुना दीजिएगा।

दिल चुरा लिया मैंने इकरार करके, इकरार करके। और सुनने वाले जितने रेडियो रंजन सुनने वाले हैं सभी को सुनवाना चाहता हूँ। और हम लोग धनाव से रोशन टेलर में सुनेंगे आपके कार्यक्रम। और मैडम जी, आप जब शो नहीं चलाना चाहती हैं तो सब मोबाइल पर मैसेज छोड़ दीजिए, शो चलेगा या नहीं चलेगा मैसेज छोड़ दीजिए उधर से। जैसे आशिकाना रेडियो पर आता है, हर टाइम का मैसेज आ जाता है 2 घंटा 1 घंटा पहले कि ये कार्यक्रम होगा, ये कार्यक्रम होगा। ऐसी आप लोग भी मैसेज छोड़ दीजिए, शो चलेगा नहीं चलेगा, जो भी शो आने वाला है। और मैडम ठीक है, चलिए वॉइस भेज रहा हूँ, बजा दीजिएगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद।

तो मैं आपको बता दूं कि अचानक से परिस्थितियाँ आ जाने की वजह से शो बंद था, लेकिन अब इसके बाद से नहीं होगा। तो चलिए एंजॉय करिए अपने गाने को, प्ले करते हैं।

0: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
1: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
3: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
3: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554 97644।

सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और मैं हूँ आप सबकी दोस्त मनोरमा, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ जो कि दिख रहे हैं सुनील कुशवाहा मैहर MP से, और इन्होंने मैसेज किया है बहुत ही अच्छा गाना चल रहा है रेडियो रिमझिम पे, और गाना दिल लगा लिया। और यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं संजय यादव जी दुबई से, और लिख रहे हैं नाइस सॉन्ग मैम। और यहाँ पे एक और मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं उत्तम सोनी जी, वाव सुपर, बहुत ही अच्छा गाना चल रहा है।

0: और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है इरशाद मास्टर धनाव जी की तरफ से और इनके तरफ से फीडबैक पहुँचा हुआ है, तो चलिए सुनते हैं।
1: मनोरमा जी और भारती जी, गाना सुनवाने के लिए बहुत बहुत आप लोगों के तहे दिल से शुक्रिया। और शो को रेगुलर चलाया करें आप लोग, हम लोग सुनने वाले हैं, पुराने लिसनर हैं हम लोग, सुनने वाले रेडियो रिमझिम का। ओके मैडम, धन्यवाद।

तो ओके, आपने सही कहा। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा है शमशाद अली जी की तरफ से, और इन्होंने मैसेज किया कि फिल्म का नाम है पड़ोसन, गाने के बोले एक चतुर नार बड़ी होशियार करके सिंगार। और इन्होंने मैसेज किया है जो कि लिख रहे हैं, अच्छा एक बात बताइए, जिस आदमी के गाने की फरमाइश पहले होती है उसे तो सुनते नहीं हैं, उसके बाद वाले जो मैसेज आते हैं उसके गाने की फरमाइश पूरी कर देते हैं। नहीं तो मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है, आपसे पहले भी बहुत सारे मैसेज किए होते हैं इसकी वजह से। तो उन्हीं के गाने प्ले किए थे लो, अब आपकी बारी है, तो चलिए आपके गाने की भी फरमाइश को पूरी करते हैं और एंजॉय कीजिए अपने खूबसूरत से गाने को।

और शमशाद जी की तरफ से मैसेज आया जो कि लिख रहे हैं थैंक यू। तो मैं बता दूं कि गाना एकदम आपके जैसा ही था, एकदम फनी, बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ जो कि लिख रही हैं, नमस्कार प्रणाम, मैं मनोरमा मैडम जी। और यहाँ पे मैसेज किया सन्यासी रंजन जी, और इन्होंने मैसेज किया है मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि लोग पे मैसेज किया सन्यासी रंजन जी और इन्होंने मैसेज किया है मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि लोग सिर की कसम क्यों खाते हैं जब शरीर में नाक, कान, किडनी, फेफड़े, मुंह इत्यादि बहुत महत्वपूर्ण अंग है। तो मैं आपको बता दूँ कि बात तो सही है आपकी,

और जो कि लिख रहे हैं, मैम बहुत देर से मैसेज किया हूँ। तो चलिए आपका गाना डायरेक्ट प्ले करते हैं और सुनिए अपने गाने को। गाने के बोल हैं राम जाने, तो बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग है। तो चलिए प्ले करते हैं और एंजॉय कीजिए अपने गाने को।

और सुनील कुशवाहा जी की तरफ से मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, दिल से धन्यवाद गाना बजाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जी मैम, थोड़ा आप भी गुनगुनाइए साथ में गाने के साथ, दिल से धन्यवाद गाना बजाने के लिए।

और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है, नमस्कार सलाम वालेकुम मनोरमा जी, हम भी कुवैत से। जौहर आलम वॉइस भेजा हूँ। भारती मैम के पास आप गाना, आप मेरा फरमाइश बजाने का कोशिश कीजिए। और इन्होंने मैसेज किया है कि ना बाजी का वॉइस भेजा हूँ, ज़रूर बजेगा। तो चलिए आपकी वॉइस को सुनते हैं।

0: तो मैं आपको बता दूं कि आपकी गाने की फरमाइश होगी, लेकिन एक गाने के बाद। और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, मेरा भी सॉन्ग है, प्लीज़ सुना दीजिए। और गाने के बोले मुस्कुरा दिले बाड़ी, सॉन्ग राकेश तिवारी का है, प्लीज़ मैं वेट कर रहा हूँ, जितेंद्र कुमार बरौली से। तो चलिए आपके गाने को प्ले करते हैं और इंजॉय कीजिए अपने गाने को।
1: प्यार तो सभे करेला,
2: अच्छा?
1: लेकिन प्यार केहू केहू के सक्सेस होला।
2: केकर सक्सेस भई बा?
1: एक गीत के माध्यम से एगो भाव बा। एक गीत के लेखक बानी प्रमादणी श्री मनोज भावुक जी, और संगीत दे रहल बानी आन पार्टी मुन्ना मिश्रा जी, MM स्टूडियो।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
4: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
4: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9478434068 पे।
6: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
7: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
8: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9493045651 या 9797056।

ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं जो कि लिख रहे हैं, अपने हाथों से बिगड़ी तकदीर बनाकर बैठे थे हम, खुद को राजा और उसको हीर बनाकर बैठे थे। हकीकत में तो वह शख्स हमको मिला नहीं, हम दीवार पर उसकी तस्वीर बनाकर बैठे थे। भारती जी नमस्कार, कैसी हैं आप और इतने दिन से कहाँ थीं? रोहित देहरादून से और गाना सुनना चाहते हैं जो कि लिंक के माध्यम से भेजे हुए हैं, और तो चलिए आपके गाने को प्ले करते हैं। और गाने के बोल हैं, दिल दीवाना ढूंढता है, बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग है, तो चलिए एंजॉय करते हैं गाने को।

0: और यहाँ पे मैसेज पहुँच चुका है जो कि लिख रहे हैं, थैंक यू सो मच मनोरमा जी आपका गाना प्ले करने के लिए शुक्रिया। और गाना कैसा लगा बताइए ज़रूर। तो गाना बहुत ही खूबसूरत था। और इन्होंने मैसेज किया रोहित कुमार देहरादून से। और यहाँ पे अगला मैसेज है जो कि लिख रहे हैं नाइस सॉन्ग कुमार सोनू का। और मनोरमा मैम का हाल बा? तो बिल्कुल बढ़िया बा, अपन बताएं रहुआ कैसन बानी। और मैसेज करे अला बानी सरफरोज अली गोपालगंज से। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा है जो कि लिख रहे हैं क्या सुपर सॉन्ग बा मनोरमा जी, 1000 लाइक बा हमारा तरफ से जी। तो बहुत ही बढ़िया बा, ऐसे ही सपोर्ट बने रहे लो हाँ, ताकि हम उस शो में बराबर हुआ सबके साथ जुड़े रहें और शो करत रहें लोग सबके सुनात रहें और सबके फरमाइश के। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ जो कि लिख रही हैं मैं हाजरा सूरत से। और इन्होंने बहुत ही खूबसूरत सा लाइन भेजा हुआ है जो कि लिख रही हैं आँखों ने तुम्हें देखा था और दिल ने तुम्हें पसंद किया था, आँखों ने तुम्हें देखा था और दिल ने तुम्हें पसंद किया था, अब तुम ही बताओ मेरी जान आँखें निकाल दो या दिल। ओहो तो बहुत ही प्यारा सा लाइन है। और इनके तरफ से वॉइस मैसेज है जो कि, तो चलिए सुनते हैं इनकी वॉइस मैसेज को।
1: हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम मैम, मैं हाजरा सूरत से और मुझे भी एक सॉन्ग सुनना है। सॉन्ग का नेम है मारदा पजेता की गर्दा उड़ा दे हब, और सुनवाना चाहती हूँ अपने हस्बैंड जी को और आपको और कुछ रेडियो दोस्त हैं, हीना जी, सफाक जी, सलेहा जी, शाहजहाँ जी, ज्योति परवीन, रुखसाना रफ्तारी जी, सविता जी, इरफान जी, गुलाम जी, गुलाम हुसैन, वीरेंद्र गुप्ता, साहिल राजा, समीर भाई और जितने लोग मुझे जानने पहचानने वाले हैं।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
2: जी हाँ कमलश्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
2: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमलश्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
3: जी हाँ कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
4: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ
5: भरोसे वाले से लेंगे,
4: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
5: और कीमत भी।
4: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
6: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
7: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
1: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
2: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
8: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करें 85070-32042 पे।

ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और मैं हूँ आप सबकी दोस्त मनोरमा, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 91.4 FM। और यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है हजरा जी की तरफ से, और इनका मैसेज है, इनका फीडबैक पहुंचा हुआ है, तो

थैंक यू मैम गाना बजाने के लिए, दिल से शुक्रिया। और मैं अपना गाना सुन रही हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं हजरा सूरत से, थैंक यू मैम।

और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि दिख रहे हैं। गुड आफ्टरनून, मैं धर्मेंद्र कुशवाहा देवरिया उत्तर प्रदेश से जुड़ल बानी। और गाने के बोल है महुआ नियन मधमात, खेसारी लाल की आवाज में। तो बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग है, तो चलिए प्ले करते हैं इस गाने को, इंजॉय के।

तो अभी हम लोग गाना सुन रहे थे, बहुत ही खूबसूरत था खेसारी लाल जी की आवाज़ में, और गाने की बोल थी महुआ नियर मत मातल। और यहाँ पे मैसेज पहुँच चुका है धर्मेंद्र कुशवाहा जी की तरफ से, जो कि लिख रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद बा गाना प्ले किए इसके लिए। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि मैं सभी के मैसेज शामिल करूँगी लेकिन ब्रेक और दोपहर न्यूज़ के बाद। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं सूरज ढला शाम छाई अब सुरों का खुमार होगा, रेडियो बादल की धुन पर दिल बेकरार होगा, और मनोरमा मैम जरा जल्दी से बजा दीजिए मेरे पसंदीदा गाना, हमें तो बस अपनी प्यारी सी आवाज़ और गाने का इंतज़ार होगा। और काफ़ी खूबसूरत मैसेज के साथ जुड़े हुए हैं, और तो चलिए बिना देरी के इनके गाने को प्ले करते हैं। और मैसेज करने वाले हैं दिलीप शर्मा पठरा टोला से जुड़े हैं, तो इंजॉय कीजिए सभी इस गाने को।

0: दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने यमुना नदी के पुनरुद्धार के लिए किशाऊ बहुद्देशीय बांध परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, भारत सतत विकास के अंतर्गत चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच की बैठक गांधीनगर में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंजीनियरों को राष्ट्र निर्माण का कर्मयोगी बताया। अमरीकी अदालत ने विदेशी छात्रों और पत्रकारों के लिए ट्रंप प्रशासन के नए वीजा नियमों पर रोक लगा दी है। मौसम विभाग ने आज पंजाब, दिल्ली, कच्छ, तमिलनाडु, असम और मेघालय में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज शाम दिल्ली में अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। श्री सिंह ने नई दिल्ली में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन उद्योग सहभागिता सम्मेलन विमर्श 2026 को संबोधित करते हुए ये बात कही।
1: अभी पिछले कुछ वर्षों में हमने डिफेंस सेक्टर में जो रिफॉर्म्स देखे हैं, मैं कह सकता हूं कि वह अनप्रेसिडेंटेड है। हमारे प्रधानमंत्री के विजन और लीडरशिप में हमने कई गेम चेंजिंग फैसले लिए हैं, चाहे वो पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट हो, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव हो, आईडेक्स हो, अदिति हो, या फिर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट का 25% प्राइवेट सेक्टर के लिए एलोकेशन का फैसला हो।
0: श्री सिंह ने DRDO तथा उद्योग के बीच साझेदारी भारत को रक्षा विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
1: TDF के माध्यम से स्टार्टअप्स को ग्रांट्स दिए जा रहे हैं और अनेक टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन स्टेज तक पहुंच चुकी हैं। आईडेक्स ने भी डिफेंस इनोवेशन के लिए एक नया इकोसिस्टम भी तैयार किया है, जहां स्टार्टअप्स हमारी वास्तविक ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स के आधार पर सॉल्यूशंस विकसित कर रहे हैं। अब DRDO और इंडस्ट्री की पार्टनरशिप केवल प्रोडक्शन तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। रिसर्च, डिजाइन, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन और मैन्युफैक्चरिंग की पूरी वैल्यू चेन में साझेदारी हमें बढ़ानी हो।
0: उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन ने कहा है कि संघर्षों और विरोधाभासों से जूझ रही दुनिया में नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता उल्लेखनीय है। भारतीय विश्व मामलों की परिषद ICWA के रजत जयंती समारोह में उन्होंने सर्वसम्मति से अपनाई गई नई दिल्ली घोषणा को बड़ी उपलब्धि बताया। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत वैश्विक चुनौतियों पर अपने दृष्टिकोण को अधिक आत्मविश्वास के साथ व्यक्त कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश के हित तेजी से दुनिया भर से जुड़ रहे हैं।
2: इंडिया टुडे, भारत का संबंध आज कहीं अधिक व्यापक देशों और क्षेत्रों से है। हमारी जिम्मेदारियां और दुनिया की भारत से अपेक्षाएं दोनों बड़ी हैं। भारत वैश्विक चुनौतियों पर अपने दृष्टिकोण को अधिक आत्मविश्वास के साथ व्यक्त कर रहा है। भारत की वैश्विक भूमिका बढ़ने के साथ अंतर्राष्ट्रीय मामलों में हमारी बौद्धिक भागीदारी को भी उसी गति से आगे बढ़ना होगा।
3: आवर इंटेलेक्चुअल एंगेजमेंट विद इंटरनेशनल अफेयर्स मस्ट कीप पेस।
0: उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने आज यमुना नदी के पुनरुद्धार के लिए किशाऊ बहुद्देशीय बांध परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, केंद्रीय गृह सचिव, केंद्रीय जल संसाधन सचिव और संबंधित राज्यों के मुख्य सचिव भी उपस्थित थे। इससे पहले इसी वर्ष जून में गृहमंत्री अमित शाह ने इस संबंध में इन प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी। बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि किशाऊ बहुद्देशीय बांध परियोजना की 90% लागत केंद्र सरकार द्वारा जबकि शेष 10% लागत 6 भागीदार राज्यों द्वारा वहन की जाएगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in पर भी उपलब्ध है।
4: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRNews हिंदी और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सतत विकास ढांचे में चक्रीय अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों को समाहित करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया है। गुजरात में गांधीनगर के महात्मा मंदिर में आयोजित विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच WCEF 2026 के 10वें संस्करण के उद्घाटन में श्री यादव ने कहा कि विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व, EPR विनियमों और मिशन लाइफ जैसी पहलें चक्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण कदम है। है।
5: अंडर द ईपीआर मैकेनिज्म,
6: ईपीआर व्यवस्था के अंतर्गत ईपीआर प्रमाण पत्रों का हस्तांतरण पुनर्चक्रणकर्ताओं को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करता है, जिससे क्षमता विस्तार, तकनीकी उन्नति और पुनर्चक्रण गतिविधियों में वृद्धि को बढ़ावा मिलता है। ये सभी मिलकर संपूर्ण पुनर्चक्रण मूल्य श्रृंखला में रोजगार सृजन और आजीविका में योगदान करते हैं। विभिन्न ईपीआर ढांचों के अंतर्गत 83,000 से अधिक उत्पादक और 4,802 पुनर्चक्रणकर्ता पंजीकृत हैं।
0: गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसका संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। ये सम्मेलन भारत में पहली बार आयोजित हो रहा है। 65 से अधिक देशों के 2,000 से अधिक हितधारक इसमें भाग ले रहे हैं। इसका विषय है चक्रीय अर्थव्यवस्था, जन और समृद्धि के लिए परिवर्तन। एक रिपोर्ट।
7: गांधीनगर में आयोजित विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व यानी कि ईपीआर विनिमयों और मिशन लाइफ जैसे पहलों को भारत की चक्रीय अर्थव्यवस्था यात्रा के लिए महत्वपूर्ण बताया। ब्रिक्स नई दिल्ली घोषणा पत्र, भारत यूरोपीय संघ सहकार में चक्रियता के बढ़ते महत्व का उल्लेख करते हुए केंद्रीय मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि चक्रियता की शुरुआत अपने घर से होनी चाहिए। समारोह को संबोधित करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि विकास, पारिस्थिति, समृद्धि और स्थिरता को एक साथ आगे बढ़ना होगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, फिनिश इनोवेशन फंड सिट्रा और गुजरात सरकार के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस दो दिवसीय मंच में AI के अनुप्रयोग, हरित ऊर्जा, टिकाऊ वित्त सुशासन और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र जैसे विषयों पर 4 पूर्ण सत्र और 16 विषयगत सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार से कहा कि नए सदस्यों की नियुक्ति होने तक अर्ध न्यायिक निकायों के सेवानिवृत्त होने वाले पीठासीन अधिकारियों और सदस्यों का कार्यकाल करीब एक महीने तक बढ़ाने पर विचार किया जाना चाहिए, जिससे कामकाज प्रभावित न हो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही दिशा सालियान की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। दिशा सालियान की 8 जून 2020 को एक इमारत की 12वीं मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई थी। ये प्राथमिकी बम्बई उच्च न्यायालय के आदेश के बाद दर्ज की गई है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा उपचुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने रेजीनगर सीट से शाखाराव सरकार को उम्मीदवार बनाया है, जबकि नंदीग्राम विधानसभा सीट से हसीरानी रथ पार्टी की उम्मीदवार होंगी। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के रात्रि भोज में कांग्रेस शासित 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की अनुपस्थिति की आलोचना की। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा नेता और सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि राजनीतिक और वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब भारत और राष्ट्रहित की बात आती है तो किसी भी प्रकार के मतभेद की कोई भी जगह नहीं होनी चाहिए। आज राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस हर साल 15 सितंबर को भारत के महानतम इंजीनियरों में से एक मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। एक रिपोर्ट।
8: इंजीनियर्स भारत के विकास की सबसे बड़ी ताकतों में से एक हैं। वे देश के जरूरी बुनियादी ढांचे को तैयार करने के साथ साथ नई तकनीकों और ज्ञान के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। एम विश्वेश्वरैया इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने नई तकनीकों, दूरदर्शी योजना और व्यवहारिक समाधानों के जरिए देश के बुनियादी ढांचे के विकास में बड़ा योगदान दिया। आज जब भारत तेजी से तकनीकी विकास और बदलाव के एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है, तब इंजीनियर्स की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। ऋषु के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंजीनियरों को राष्ट्र निर्माण का कर्मयोगी बताया। प्रधानमंत्री ने डॉ एम विश्वेश्वरैया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि एम विश्वेश्वरैया एक इंजीनियरिंग प्रतिभा थे, जिनकी राष्ट्र निर्माण की दूरदृष्टि नागरिकों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी।
9: महान इंजीनियर्स की हमारी विरासत में एक ऐसा रत्न भी हमें मिला, जिसके कार्य आज भी लोगों को अचंभित कर रहे हैं, और वे थे भारत रत्न डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया। उन्हीं की याद में 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हमारे देश के इंजीनियर पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। मैं इस अवसर पर सभी इंजीनियरों को उनकी निर्माण शक्ति को आदर पूर्वक नमन करता हूँ।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने भी एम विश्वेश्वरैया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: अमेरिका की एक संघीय अदालत ने ट्रंप प्रशासन द्वारा विदेशी छात्रों और पत्रकारों के रहने की अवधि पर लगाई गई सख्त सीमाओं के नियम पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि इस नीति को लागू करने से अमेरिका की अर्थव्यवस्था और उच्च शिक्षा प्रणाली को भारी नुकसान हो सकता है। ट्रंप प्रशासन ने इस साल जुलाई में इस नियम को अंतिम रूप दिया था। भारत का राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन आज अपना 67वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस लोक सेवा प्रसारक की शुरुआत 1959 में ऑल इंडिया रेडियो के अंतर्गत एक प्रायोगिक टेलीविजन सेवा के तौर पर हुई थी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दूरदर्शन अपनी कई बेहतरीन सेवाओं जैसे सैटेलाइट और डायरेक्ट टू होम सर्विस के जरिए 100% आबादी तक पहुंचने वाला माध्यम है।
10: 15 सितंबर 1959 को दूरदर्शन की स्थापना के साथ भारत में टेलीविजन प्रसारण की शुरुआत हुई। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसी दिन दूरदर्शन के पहले प्रसारण का उद्घाटन किया था। वर्ष 1982 में दिल्ली एशिया खेलों के दौरान रंगीन टेलीविजन की शुरुआत ने दूरदर्शन के प्रसारण और दर्शकों की संख्या को नई ऊंचाई दी। वर्तमान में दूरदर्शन के 35 सैटेलाइट चैनल और 66 स्टूडियो केंद्र हैं। ये 24 से अधिक भाषाओं और विभिन्न बोलियों में कार्यक्रम प्रसारित करता है। दूरदर्शन ने रामायण, महाभारत, हम लोग, बुनियाद, चाणक्य, मालगुडी डेज, शक्तिमान, चित्रहार, फौजी सर्कस और उड़ान जैसे कई लोकप्रिय और यादगार धारावाहिक भी प्रसारित किए। आरजू के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मौसम विभाग ने आज हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, दिल्ली, कच्छ, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पुदुच्चेरी, केरलम, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार के बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत और बचाव कार्य जारी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता जारी की। एक रिपोर्ट।
11: राज्य के 15 जिलों के 88 प्रखंडों में करीब 49 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्रीय दल के बिहार दौरे को लेकर उनकी गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत हुई है।
12: आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक टीम बनाने का निर्देश दिया है। गृह मंत्री जी का फोन आया था कि हम लोग एक केंद्रीय टीम केंद्रीय मंत्री के स्तर पर बिहार शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में आएगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ, शुभकामना देता हूँ।
11: आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
0: भारत और अफगानिस्तान के बीच 2020 क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। पहले मैच में रविवार को भारत ने 7 विकेट से जीत हासिल की थी। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। तीसरा मैच बृहस्पतिवार को दिल्ली में ही होगा। घरेलू शेयर बाजार दोपहर के सत्र में 0.5% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 337 अंक गिरकर 74,445 पर आ गया, जबकि निफ्टी 130 अंक गिरकर 23,268 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने यमुना नदी के पुनरुद्धार के लिए किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, भारत सतत विकास के अंतर्गत चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच की बैठक गांधीनगर में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंजीनियरों को राष्ट्र निर्माण का कर्मयोगी बताया। अमेरिकी अदालत ने विदेशी छात्रों और पत्रकारों के लिए ट्रंप प्रशासन के नए वीजा नियमों पर रोक लगा दी है। मौसम विभाग ने आज पंजाब, दिल्ली, कच्छ, तमिलनाडु, असम और मेघालय में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज शाम दिल्ली में अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।
7: दोपहर न्यूज के बाद स्वागत है आप सभी का रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं आगे का प्रसारण।
13: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
14: तो फिर देर क्यों, चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
13: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
15: यहां सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
13: संपर्क करें 9939365923। दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
16: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
13: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
16: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
13: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
16: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
13: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
15: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
13: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
15: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
13: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
15: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
13: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
17: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करे 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: बनिए अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98 523 52 599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 39 51 51 पे।
2: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
0: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
2: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
0: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
2: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
0: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
2: अभी कॉल करें 92899 22567 या 97714 8661
0: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स NH 27 चैन पट्टी गोपालगंज।

0: छोटे से ब्रेक और दोपहर न्यूज के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में। यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98 52 78 82 91। जी हाँ, 9852 78 82 91। और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72 77 16 65 96। जी हाँ, 7277 16 65 96। तो चलिए बिना देरी किए कार्यक्रम को आगे की तरफ ले चलते हैं। और यहाँ हमारे पास काफ़ी सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं जो कि लिख रहे हैं कि ग्राम बिरई न्यायपारा जिला बालोद छत्तीसगढ़ से बसंत कुमार ठाकुर पप्पू ठाकुर, 2 सप्ताह बाद मनोरमा जी आपसे मुलाकात हो रहा है और रिमझिम परिवार को हमारे ओर से तीज त्यौहार एवं गणेश चतुर्दशी की पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो मैम, राधे राधे। जब भी लिखब कहानी आपन, ओकरा के आपन परछाई लिखब, आपन हर जख्म के हर दर्द के ओकरा के ही दवाई लिखब, और जब पूछी जमाना मिले ला मोहब्बत सच्चा वाला कहाँ, तो पहला शब्द खाली माई लिखब। और काफ़ी खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं जो कि लिख रहे हैं, नाम तो याद ही होगा मैम जी वैसे कहाँ थी, तो मैं तो यहीं पे थी लेकिन कुछ कामों में व्यस्त थी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और मैसेज करने वाले हैं पाजी यूपी 54 से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है, मैडम जी नमस्कार, हम लोग भी आपके कार्यक्रम से जुड़ गए हैं और आपके कार्यक्रम को सुन रहे हैं, कार्यक्रम अच्छा चल रहा है। और का हो उत्तम भाई, का हाल चाल बाहो। और लिख रहा है उमा शंकर सिंह, अवंतिका सिंह और अर्चित सिंह रुद्रपुर देवभूमि उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका भी। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास शमशाद अली उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से जुड़े हैं। और यहाँ मैसेज पहुँचे हुए हैं हमारे पास जो कि लिख रहे हैं दिनेश कुमार मिश्रा, और लिख रहे हैं कि औरत कभी कमजोर नहीं होती, उसको एक काम बोलो तो वो 2 काम करती है, जैसे कि उसे दोबारा चाय बनाने को बोलो, पहले वो मुंह बनाएगी फिर चाय बनाएगी। और काफ़ी मज़ेदार लाइन के साथ जुड़े हुए हैं। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है कि भारती जी नमस्कार और सभी को नमस्कार, लिख रहा है कि नमस्कार, हमरा पे केहू ना ताके ला, खाली हम ही देखी ला नहीं जुड़ गए बाकी हम दिलीप राम। और लिख रहे हैं भारती जी नमस्कार, सभी दोस्तों को नमस्कार, मुझे गाना सुनना है जिसका लिंक भेज रहा हूँ, सुना दीजिएगा। और आपको सोनू भाई और मनोरमा जी, सोनी जी, अफसर भाई, सरजा जी, सगुफ्ता जी और ब्यूटी परवीन जी, शाहजहाँ जी, रुखसार जी, राजकुमार पांडे जी, कमरान भाई, सबिता जी, बबीता जी, गुड़िया जी, गजाला जी, अख्तरी जी, अहमद भाई, खुशबू जी, सागिर अंसारी, आज़ाद भाई, सन्यासी भाई, समीर भाई, मुकेश भाई, गट्टा भाई, रोशनी जी, गुड़िया जी, वीरेंद्र भैया जी और गुलाम हुसैन जी को, सभी सखी सहेली को दिलीप राम जी की तरफ से, और मनोरमा जी नमस्कार और ध्यान दीजिए। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपके तरफ भी ध्यान गया है। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, हेलो नमस्ते मैम, मैं राहुल कुमार जिला सीतापुर से हूँ और सॉन्ग सुनना चाहता हूँ। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, गाना प्ले होगा। और उससे पहले यहाँ गाने की जो कि फरमाइश हमारे पास पहुँची हुई है, लिख रहे हैं कि नमस्ते, सलाम अलैकुम भारती मैम, मेरे वॉइस के माध्यम से फरमाइश पहुंचा हुआ है। तो चलिए आपके वॉइस को सुनते हैं और क्या है आपकी फरमाइश ये भी जानते हैं।
1: नमस्कार, सलाम अलैकुम भारती मैम, आप कौन समय में बोल रही है, प्रोग्राम चला रहे हो, हमको पता नहीं है, आप मैसेज करिएगा। हम कुवैत से जहूर आलम वॉइस कर रहा हूँ मैसेज, हमको गाना सुनना है, तुझे प्यार से देखने वाला एक दिल ही तो है, ये गाना सुनवा दीजिएगा। और हमारे दोस्त सुनने वाले हैं सभी, और रिंजिंग परिवार के जितने भी लिस्टर हैं सबको सुनवाना चाहता हूँ ये गाना। प्लीज़ एकदम सुना दीजिएगा।

तो अभी हम लोग सुन रहे थे काफ़ी खूबसूरत सा सॉन्ग, और यहाँ पे जो कि काफ़ी सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं जो कि लिख रहे हैं कि हेलो हाय नमस्ते मैम, मुझे गाना सुनना है और हम शिवानी कुमारी थामे से गाना सुनना है, सुनवा दीजिएगा। और गाना सुनाना चाहती हूँ बुआ बड़ी रिंकी कुमारी ममता कुमारी और सबके साथ, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि सुपर सॉन्ग मैम, और मैसेज करने वाले हैं संजय यादव जी दुबई से। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं परवीन जी जिला सिवान से जुड़े हुए हैं और लिख रहे हैं मुझे भी गाना सुनना है, और काफ़ी खूबसूरत गाने की फरमाइश पहुँची हुई है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है कि मैडम जी गाना बजा दीजिए मेरा भी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और लिख रहा है कि सपनों की दुनिया में हम होते चले गए, मदहोश न थे पर मदहोश होते चले गए, ना जाने क्या बात थी उस चेहरे में, ना चाहते हुए भी उसके होते चले गए। और काफ़ी खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं मुकेश खरवारा से, तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि सन्यासी रंजन जी लिख रहे हैं कि लड़की बोली ए जी जवन पंडित जी हमनी के शादी करेले नो उमर गईलन, लड़का बोला ठीक भाई मर गईलन, तो गाय गाय कह के लील गाय तरा दिल। और काफ़ी मज़ेदार लाइन के साथ जुड़े हैं सन्यासी रंजन जी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है कि जी भारती मैम नमस्कार, मिथिलेश चौहान जी तनी हमार गाना भी प्ले कर दी। तो जी बिल्कुल, आप सभी के गाने की प्ले करने की पूरी कोशिश है, और थोड़ा हमारी मनोरमा जी सीख रही हैं तो आप लोग भी सपोर्ट कीजिए ताकि वो भी अच्छे से चला सके। और इसमें थोड़ी बहुत गाने इधर उधर हो जा रहे हैं तो कोई दिक्कत हो रही है थोड़ी बहुत, तो इससे थोड़ा मैनेज करें। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो मैम गुड आफ्टरनून, मैं विनोद कुमार चौहान विलेज कवई साखे बाजार से, और लिख रहे हैं कि हमें भी गाना सुनना है, और गाने की बोल है हम तुमको निगाहों में इस तरह छुपा लेंगे। और काफ़ी खूबसूरत गाने की फरमाइश पहुँची हुई है, तो चलिए बिना देरी किए आपके गाने को प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
5: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
5: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
5: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
6: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM में, और हमारे स्टूडियो की घड़ी में 3:07 हो रहे हैं और शो चल रहा है योर वॉइस योर।

0: वॉइस का, तो यहाँ हमारे पास काफी सारे मैसेज पहुंचे हुए हैं जो कि लिख रहे हैं कि नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम भारती मैम, हम दिलीप कुमार ठाकुर मिर्जापुर से और तुमहली पंजाब से, आज मेरा भी फरमाइश है, लिंक भेज दिया हूँ, डेडिकेट ऑल फ्रेंड्स और मेरा गाना बजा दीजिएगा मनोरमा मैम। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपका भी गाना प्ले होगा। पर यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है कि हेलो मैम, मैं बबलू यादव बंका बिहार से और मुझे भी गाना सुनना है और गाना सुनना चाहते हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि पहले भारती मैम नमस्कार प्रणाम, और मेरा नाम अखिलेश मेहताब है और मैं हिजरा नवादा पूर्वी चंपारण संग्रामपुर से। भारती मैम, आप शो छोड़कर न जाने कहाँ चले गए थे और हमें तो ऐसा लगा था कि अब आपसे कभी बात नहीं होगी मैसेज के जरिए, लेकिन आज मेरा एक फरमाइश है भारती जी, बस सके तो बजा दीजिएगा और अपने को कोई भी पूर्वी बजा दीजिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपके भी गाने की फरमाइश को पूरा किया जाएगा। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहा है कि हेलो मैम, मुझे भी गाना सुनना है और मेरा नाम मुकेश है और मैं अयोध्या से हूँ और गाने का लिंक भेज दिया हूँ। और मैम, कई दिनों से शो बंद चल रहा था, क्या गाने के बोल हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और काफ़ी खूबसूरत गाने की फरमाइश पहुँची हुई है। तो जी, काफ़ी एक हफ्ते से शो बंद था, और यहाँ पे जो कि हमारे पास गाने की फरमाइश पहुँची हुई है, मिथुन शर्मा बेंगलोर से जुड़े हुए हैं और गाना सुनना चाहते हैं, और इनकी तरफ से वॉइस के माध्यम से फरमाइश पहुंची हुई है। तो चलिए सुनते हैं क्या है इनकी फरमाइश और क्या है इनकी वॉइस।
1: नमस्ते, मैं मिथुन शर्मा बेंगलोर से जुड़े हैं, गाना सुनना चाहते हैं, गाना चांद तारे फूल शबनम तुमसे अच्छा कौन है।
0: और काफ़ी खूबसूरत गाने की फरमाइश है, तो चलिए बिना देरी किए इनके गाने को प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं रेडियो 90.4।

अभी हम लोग सुन रहे थे काफ़ी खूबसूरत सा सॉन्ग और काफ़ी बढ़िया गाना था। और यहाँ पे मैसेज पहुँच गया है जो कि लिख रहा है मिथुन शर्मा बेंगलोर से कि गाना सुनाने के लिए शुक्रिया आपका। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि

लिख रहे हैं कि गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, आई होप एवरी वन इज रियली गुड, ऑल्सो ऑल सॉन्ग इज रियली गुड, थैंक फॉर गुड चॉइस एंड वेलकम बैक अगैन आरजे भारती जी इन दिस प्रोग्राम। और मैसेज करने वाले हैं सोनू, सऊदी अरब से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि शाहिद मैसेज करने वाले हैं और लिख रहे हैं मेरा सॉन्ग, तो बहुत बहुत स्वागत। मैसेज करने वाले हैं और लिख रहे हैं मेरा सॉन्ग, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपका भी सॉन्ग प्ले होगा। पर यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है सन्यासी रंजन जी की तरफ से, जो कि लिख रहे हैं मम्मी की बीपी लो हो रहा था, मैंने दूसरे कास्ट की लड़की भगा लाया, मैं दूसरे कास्ट की लड़की भगा लाया, तब जाके बीपी हाई हुआ, माँ की ममता के लिए कुछ भी कर दूंगा। और क्या बात है, और काफ़ी खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हैं और काफ़ी मज़ेदार भी है। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है कि एक बजे से पहले दो मैसेज भेजे थे लेकिन अभी तक दोनों में से शामिल नहीं किया गया, बात क्या बात है मनोरमा जी। मैं न्यायपारा विरई जिला बालोद छत्तीसगढ़ से बसंत कुमार ठाकुर, तो जी अभी कुछ ब्रेक के बाद आपके मैसेज को मैंने शामिल किया था और थोड़ा बहुत तो दिक्कत हो रहा है, अभी नहीं है तो एक एक करके सभी के मैसेज शामिल। और पूरी कोशिश है कि अच्छे से प्रोग्राम को चलाया जाए। और यहाँ पे जो कि मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास, लिख रहे हैं कि हेलो भारती जी, प्रेम मदेसिया पडरौना कुशीनगर उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं, लिख रहे हैं भारती जी वेरी गुड आफ्टरनून जी, कैसी हैं और आप कितना इतना दिन प्रोग्राम बंद क्यों था, और हमारा भी हाजिर लगा लीजिए, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और

प्रोग्राम कुछ दिनों से बंद था, अब तो शुरू हो गया है, अब डेली ही चलेगा, ऐसा बंद नहीं होगा। और यहाँ पे जो कि हमारे पास गाने की फरमाइश पहुँची हुई है, लिख रहे हैं कि राम कुमार राम बाय एमपी से जुड़े हुए हैं और गाना सुनना चाहते हैं, और गाने की बोल यहाँ पहुँची हुई है, और गाने की बोल है जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात ज़रूरी है सनम, और काफ़ी खूबसूरत सा गाना है। तो चलिए बिना देरी किए इनके गाने को प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल।
1: है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9056-59536 या 9056-57902। क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन।
0: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
1: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
0: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
1: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं, नंबर है 9857788291 या 9852384088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।

ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और मैं हूं आप सबकी दोस्त मनोरमा, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और यहाँ हमारे पास बहुत सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं जो कि लिख रहे हैं,

और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है दिलीप जी की तरफ से लिंक के माध्यम से, सॉन्ग है तो चलिए प्ले करते हैं इनके सॉन्ग को। और बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग है जो कि सॉन्ग नेम है जान हमके भुला गई ली, तो चलिए प्ले करते हैं और इन्जॉय कीजिए अपने गाने को।

अभी हम लोग बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग सुन रहे थे और यहाँ पे अगला मैसेज पहुँचा हुआ है सन्यासी रंजन जी की तरफ से, और इन्होंने मैसेज किया है, प्यार में धोखा और भोजन में दाल भात चोखा, दोनों हम गरीब लड़की के लिए बना है। अच्छा जी, और यहाँ पे एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि दिख रहा है, हमारा भी सॉन्ग है बजा दीजिएगा, और इन्होंने भी बहुत ही खूबसूरत लाइन लिखा है जो कि लिख रहे हैं, ना कोई एक्स है ना कोई नेक्स्ट है, ना कोई एक्स है ना कोई नेक्स्ट है, जिंदगी जीता हूँ शान से क्योंकि मेरे लिए तो मेरे दोस्त ही बेस्ट है जी। तो बहुत ही खूबसूरत लाइन है। और लिखने वाले हैं ओम साइन टेलर राघव जी। एक और मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, धूप कितनी भी तेज हो हौसला कम नहीं होता, मुश्किल से लड़ने वाला कभी बेदम नहीं होता, छांव की तलाश में सफर रुकना सही नहीं, छांव की तलाश में सफर रुकना सही नहीं, क्योंकि धूप में चलने वाला ही मंजिल तक पहुंचता है। और मैसेज करने वाला है करण मुर्मू तिलगाना से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पर मैसेज पहुँचा जो कि धनेश कुमार जी की तरफ से।

लिंक के माध्यम से सॉन्ग भेजा हुआ है, पूर्वी है, तो चलिए प्ले करते हैं। और इनके साथ कोई और पूर्वी गाने के फरमाइश किए थे, वो भी सुन लेंगे इन्हीं के साथ। तो चलिए प्ले करते हैं और इंजॉय करते हैं।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
5: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
6: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
7: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
8: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
9: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
8: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
6: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।

आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और मैं हूं आप सबकी दोस्त मनोरमा, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और यहां पे मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, मैसेज पहुंचा हुआ है करण जी की तरफ से, और इन्होंने लिख रहे हैं कि गाना सुनना, और गाने के बोल है लैला लैला चिल्लाऊंगा। तो चलिए आपके गाने को प्ले करते हैं, और ये गाना सुनवाना चाहते हैं रिंकू चौधरी और अभिषेक कुमार को।

जो कि लिंक के माध्यम से है। तो चलिए और जाने के बोल हैं दिल में तुझको बैठा के, तो बहुत ही अच्छा सा सॉन्ग है। तो चलिए गाने को प्ले करते हैं और इंजॉय कीजिए आप अपने गाने को।

0: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
1: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
0: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
1: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
0: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
1: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388894 या 9198886973। त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
0: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
2: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
0: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
2: और सबसे खास बात ये है, ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
0: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
2: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8661
0: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: थोड़े से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM में और आप सुन रहे हैं योर वॉइस योर चॉइस का शो। तो बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू, माय नेम इज शाहजहां विलेज मोबल ब्रिजा से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि नमस्कार जी, आप सभी रेडियो रिमझिम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आरजे भारती जी और उनके साथ में इस प्रोग्राम को सहयोग दे रही आरजे मनोरमा जी, आपका इस प्रोग्राम में स्वागत है, स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रोग्राम को बहुत अच्छे से चलाएंगी और बेस्ट ऑफ लक इन फ्यूचर। और मैसेज करने वाले हैं सोनू सऊदी अरब से जुड़े हुए हैं और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि पंचर बनवाते समय अगर जेब में पैसे ना हो तो पानी की बुलबुले भी दिल की धड़कन बढ़ा देती हैं। और मैसेज करने वाले हैं सन्यासी रंजन जी और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि हाय, गुड इवनिंग मैम, देख। और यहाँ पे गाने की फरमाइश पहुँची हुई है और काफ़ी खूबसूरत गाना है और लिख रहे हैं कि प्रशांत फ्रॉम बोकारो से जुड़े हुए हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है कि बहुत बहुत शुक्रिया आपको, मैं रेडियो का आवाज़ थोड़ा सही कीजिए तो मुझे बताइए अभी रेडियो की आवाज़ कैसी आ रही है। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है कि ऐसे दोस्त ना कभी दूर जाना, ना कभी हम दूर जाएंगे, अपने अपने हिस्से की दोस्ती खूब से निभाएंगे। और यहाँ लिख रहे हैं कि जिन फूलों को सवारा था हमने अपनी मोहब्बत से, हुए खुशबू के काबिल तो बस गैरों के लिए महके। और काफ़ी खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं राघव जी और लिख रहे हैं आई भुजा खाने, तो जी आप खाइए भुजा, कोई बात नहीं, हम भी कभी खा लेंगे। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहा है कि हेलो मैम, आई एम आफ्ताब आलम फ्रॉम सन के खास से, और सॉन्ग सुना दीजिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है कि मेरे गाने को प्ले कर दीजिए, और लिख रहा है बबलू यादव बंका बिहार से जुड़े हैं और गाना सुनना चाहते हैं, और गाने की बोल है पगली दिखावे अगरबत्ती। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, और आज के गाने जिन जिनके प्ले नहीं हुए हैं कल उन सभी के गाने को प्ले किया जाएगा, और जिनके नहीं बजा पाए इसके लिए मुझे तो खेद है ही। और यहाँ पे कोई बात नहीं, आप सबके गाने को कल प्ले करेंगे। तो अगर आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9852782191, और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 7277166। तो आज के लिए बस इतना ही, और दीजिए मुझे जाने की इजाज़त, और इस खूबसूरत से गाने को प्ले करते हुए आज विदा लूँगी आप सभी से, और गाने की बोल है पगली दिखावे अगरबत्ती। तो चलिए गाना प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं आप सभी के साथ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
5: कारवां मोबाइल,

0: प्यार तो नसीबे से मिलेला।
1: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
2: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
1: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
2: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
1: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी।

0: उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री ओपीडी, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करे।
0: पता: कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल गोपालगंज।
1: संपर्क करे 9006978856 या 6203139564।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
0: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
3: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
0: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
3: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
0: पता: शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
3: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
0: संपर्क करें 84710392 या 9765

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आएं गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395461 या 97076575।
2: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
3: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
2: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
3: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
2: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
4: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
2: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
3: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है, चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
2: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से 2:00 PM।
3: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
5: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: ठक ठक।
1: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
3: सोहन मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
4: अरे टीना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
3: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
4: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
5: अरे वाह इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
6: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
5: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।

0: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
1: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
0: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
1: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
0: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
1: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
3: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9522384088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करे।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
1: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656 या 9656 57902।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
4: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94 3945651 या 97 0975।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
0: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: दादी आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है, उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
3: अरे बेटा घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
2: दादी किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
3: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
2: दादी अब डरने की जरूरत नहीं है, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
3: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
2: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
1: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
4: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें बातें सब कुछ बदल गया है।
0: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
0: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से 2:00 तक।
1: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
5: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ, कमल श्री। याद रखिए, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
6: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
8: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
7: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
8: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399।

0: Now pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
2: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो हेलो हेलो हेलो
3: हेलो हेलो। नमस्ते नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ आप सबकी दोस्त मनोरमा और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM और समय हो गया हेलो माई चॉइस कार्यक्रम का। तो समय के साथ बिल्कुल

0: हम ठीक है। कभी धूप हो रहा है, कभी छांव।
1: बारिश नहीं हो रही है ना?
0: नहीं, बारिश तो नहीं हो रही है। और
1: हम
0: आपकी
1: लोग
0: तरफ?
1: परेशान है, अभी तक डेली बारिश होती है मैम हम लोग की तरफ, अभी आठ
0: अच्छा,
1: दस दिन से।
0: मुझे
1: और
0: लगता है कि धूप बहुत कम ही निकलता होगा उधर।
1: हाँ, कभी कभार निकलती है, कभी दिन में बारिश होती है, कभी रात में, कभी शाम को।
0: जी, वैसे कहाँ से बोल रहे हैं?
1: इधर जिला झारखंड से।
0: अच्छा, तो फिर क्या है आपकी फरमाइश?
1: आज की फरमाइश है भोजपुरी फिल्म है मैम, दिनेश लाल निहरुआ का,
0: जी
1: पटना से पाकिस्तान, फिल्म का नाम है। गीत के बोल रहे हैं, तोहरे में बसे राजा हमरे परनवा, रात दिन रहे हमरे तोहरे ध्यानवा। गीत के बोल इस प्रकार है।
0: जी जी, आप ये गा के मुझे बता सकते हैं?
1: नहीं मैम, भोजपुरी उतना अच्छी तरह से आती नहीं है, उच्चारण नहीं हो पाती है ठीक से, लेकिन बहुत अच्छी लगती है हमको भोजपुरी बोली, भोजपुरी गाना। हम कोशिश कर रहे हैं सीखने की।
0: जी जी, आप भोजपुरी में बोल रहे हैं तो बहुत अच्छा ही लग रहा है, इसलिए बोले।
1: पता नहीं हम सोचते हैं कि मिस्टेक कर रहे हैं क्या,
0: नहीं नहीं
1: गलतियां हो रही हैं। हम कोशिश में लगे हैं कि भोजपुरी भाषा हम बोल रहे हैं, थोड़ा अपना प्रोग्राम सुनते हैं आपका जब समय मिल जाता है तो।
0: जी जी, और जो गाना आपने बताया बहुत अच्छा ही बताया, लेकिन एक बार गा के बताते दो लाइन तो बहुत ही अच्छा होता।
1: उतना अच्छा स्वर भी नहीं है, फिर हम कोशिश करेंगे, थोड़ा हम प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर दूसरा और फरमाइश करेंगे ना, तो गा के सुनाएंगे भोजपुरी गाना।
0: जी जी बिल्कुल, तो फिर ये वाला सॉन्ग आपका प्ले करते हैं।
1: जी जी, प्ले कीजिए मैम।
0: जी, और डेडिकेट भी है।
1: जी, सबसे पहले मैं आपको, सोनू सर को, भारती मैम को, मनोरमा मैम को, और रेडियो के जितने लिसनर हैं सबों को, और हमारे कुछ दोस्त हैं, मदन कोल हैं, राजकुमारी हैं, विष्णु कोल हैं, भोलानाथ कोल हैं, राजीव रोशन हैं, रोहित कुमार सिंह हैं, विष्णु प्रसाद यादव हैं, सृष्टिधर प्रसाद यादव हैं, इन सबको डेडिकेट करना चाहता हूँ।
0: ओके जी, तो मैं आपका गाना प्ले करती हूँ।
1: जी मैम। जी
0: जी, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।
1: थैंक यू मैम।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में। वालेकुम अस्सलाम। जी समीर जी, कैसे हैं आप? जी मैं भी ठीक हूँ। जी जी सब बढ़िया। बता दीजिए।
0: हवाओं में बहेंगे, घटाओं में रहेंगे, दीवानी तू मेरी।
1: तो समीर जी, क्या ये गाना आप मुझे गा के बता सकते हैं?
0: कोशिश करते हैं।
2: हवाओं में बहेंगे, घटाओं में रहेंगे।

0: जी जी आप तो बहुत ही अच्छा गाते हैं।
1: जी शुक्रिया, एक कोशिश रहता है।
0: नहीं नहीं बहुत अच्छा गाते हैं आप
1: जी।
0: और ये गाना आप ट्वीट करना चाहते हैं?
1: सभी के साथ, सभी के साथ, सभी लिस्टनर के साथ।
0: ओके जी, तो फिर समीर जी मैं आपका गाना प्ले करती हूँ।
1: जी जी
0: जी, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9522874088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
2: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2,00,000 रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
1: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
2: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
1: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करे।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करे 9006978856 या 6203139564।
4: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
2: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
1: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
2: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
1: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
2: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
1: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
2: संपर्क करें 8470103992 या 9765665750।
5: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
7: जी मैम, कैसे हैं आप?
6: जी मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
7: मैं भी बिल्कुल अच्छा हूँ मैम।
6: ओके, वैसे कहाँ से बोल रहे हैं आप?
7: मैं तो गोपालगंज से बोल रहा हूँ, साधु चौक मटिया।
6: अच्छा जी, और आपका नाम?
7: राहुल भारती।
6: तो क्या है आज की आपकी फरमाइश?
7: पवन सिंह की आवाज में भक्ति सॉन्ग सुना दीजिएगा।
6: भक्ति सॉन्ग कोई भी?
7: हाँ, दुर्गा पूजा वाला।
6: ओके राहुल जी, और ये गाना आप किसी को डेडिकेट भी करना चाहते हैं?
7: हाँ, सभी सुनने वाले सभी दोस्तों को और आपको और आपकी पूरी टीम को।
6: ओके राहुल जी, वैसे क्या करते हैं आप?
7: मैं तो मोबाइल क्रैन चलाता हूँ, ऑपरेटर हूँ।
6: अच्छा जी,
7: अभी घर पे आया हूँ छुट्टी में, दशहरा बाद जाएंगे फिर मेला घूमकर।
6: जी जी, वैसे कहाँ रहते हैं?
7: केरला में।
6: केरला, अच्छा, चलिए बढ़िया। तो फिर प्ले करती हूँ गाना आपका।
7: जी मैम, थैंक यू। मैम आपका नाम क्या है?
6: जी मेरा नाम मनोरमा।
7: तो आप न्यू आई हैं क्या?
6: जी हाँ।
7: जी जी, आवाज से लग रहा था न्यू है आप, इसीलिए नाम पूछा।
6: अच्छा जी,
7: क्योंकि आपका आवाज सुना नहीं हूँ।
6: अच्छा जी, तो क्या आप पहली बार कॉल किए हैं?
7: पहली बार नहीं, जब से रेडियो आप खुला है ना आपका 2009, तब से मैं जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन थोड़ा पहले रेगुलर करता था, लेकिन आप बिजी रहते हैं आदमी ना, इसीलिए थोड़ा समय नहीं मिलता है ना।
6: जी जी, वही तो बोली कि आपसे पहली बार बात हो रही हूँ।
7: नहीं नहीं, मैं बहुत पुराना दिसरा हूँ, बहुत पुराना हूँ, अभी कोई नहीं था तब मैं उस समय सुनता था करता था।
6: अच्छा।
7: समय के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है मैम। चले मैम, ठीक है, अच्छे से रहिएगा आप लोग।
6: ओके जी, फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
7: जी मैम, थैंक यू।
6: जी

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में। कहाँ से? कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ जी,
0: राजस्थान जीवारी से।
1: अच्छा जी, तो क्या है फरमाइश आपकी?
0: चार्जर को कहीं लगा
1: दिल है की चार्जर कहीं लगा दिल
0: लगाना
1: जी जी
0: शाम को चलेगा चले।
1: हाँ जी, चलिए तो प्ले करते हैं गाना आपका।
0: थैंक यू,
1: वेलकम।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
1: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
0: आज ही आएं गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
5: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
6: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
7: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
6: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94-704-34-468 पे।
1: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
0: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है, चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
1: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10 बजे से 2 बजे तक।
0: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94-512-11-001।
8: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
9: हेलो
10: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
9: सलाम अलैकुम मैम।
10: वालेकुम सलाम।
9: हमको तो लगा कि आज आपसे बात नहीं हो पाएगा, कितना परेशान कि बाप रे, उसी वक्त लगा रही हूँ, 11:30 से फोन लगा रही हूँ। कहिएगा, 1 घंटा तक फोन किए हैं
10: जी।
9: तब बोलिए, खाना खा लिए?
10: जी खाना तो हो गया, और आप खाई है?
9: खा लिए। हमको गाना सुनना है।
10: बता दीजिए।
9: केसर बन जाऊंगी, गुलाब बन जाऊंगी, तेरे हर सवाल के जवाब बन जाऊंगी, केसर बन जाऊंगी, गुलाब बन जाऊंगी, वही वाला।
10: सर ये गाना आप किसी को डेडिकेट करना चाहती हैं?
9: रेडियो रंजन सुनने वाले सभी श्रोता और आपको भी।
10: ओके जी, वैसे आप अपना नाम नहीं बताएं?
9: साहिबा खातिम बोल रही हूँ, सासामसा से।
10: चलिए तस्वीर प्ले करते हैं गाना आपका।
9: ठीक है, थैंक यू मैम।
10: वेलकम।

0: हेलो
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रूम 90.4 FM में।
1: आप कैसी हैं मैम?
0: जी मैं तो बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं?
1: ठीक है।
0: तो क्या कर रही हैं?
1: अच्छे हैं, सही टाइम लगा रहे थे आपके पास।
0: अच्छा जी,
1: खाना पीना हो गया मैम?
0: हाँ जी खाना तो हो गया, और आप खाई हैं?
1: नहीं, हम आज तीज वर्तना है।
0: अच्छा हाँ जी,
1: तो उपवास है लोग।
0: जी जी,
1: आप सब बोलिए।
0: जी सब बढ़िया।
1: ये ठीक है मैम, गाना सुनना है।
0: बता दीजिए।
1: अनुदूत नहीं है, गाती है कि एक छोटी सी लड़की पार्वती सी वो शंकर की पूजा करती थी।
0: जी जी,
1: वही सुनना है मैम।
0: माना भी जाती है
1: मैम आपको, भारती मैम को, सभी जितना सुनते हैं श्रोताओं सभी को सुनाना चाहती हूँ।
0: ओके जी, तो फिर चलिए प्ले करते हैं गाना आपका।
1: आप नाम नहीं पूछेंगी?
0: बता दीजिए।
1: हाँ सुनीता देव बोल रहे हैं हाजीपुर।
0: चलिए प्ले करते हैं गाना आपका।
1: जी।

0: रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
5: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
4: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में दो नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
6: ठक ठक।
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
2: जी हाँ, कमलश्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98-523-52-599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99-39-39-51-51 पे।
9: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up.
10: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
11: हेलो
10: हेलो,
11: सलाम अलैकुम मैडम।
10: वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
11: मैडम, गाना सुनने के बाद
10: बता दी,
11: रवान फिल्म के गाना सुनने के बाद लैला को भूल जाएंगे, मजनू को भूल जाएंगे। हेलो
10: जी, एक बार और बता दी,
11: रवान फिल्म के गाना सुनने के बाद लैला को भूल जाएंगे, मजनू को भूल जाएंगे।
10: जी जी, का रहुआ हमके दुल्हन गा के बता सकत नहीं? चलिए चलिए, कोनो बात नहीं के पैसा बता दी।
11: हमार नाम मौलवी है, बोलते नहीं
10: जी। तो कैसे रहुआ, ठीक ठाक बानी नो?
11: हाँ जी, ठीक बानी। आंजे भुजे के दुकान बा मिश्रा मोड़ पर, और ये लगा के सुने नी जननी, आज 10 लोग सुने ला तो हंसे ला, कहला ले कहा से नंबर मिल गेलो, तो बानी नंबर ले लिन दो, रघुल बतिया न लो, कहे नी तो हंसे नी लो, सुने नी लो गाना। आ पूरा गाना सुना है, 7 मिनट के गाना भजन नी, आधा पर सर सुना देता नी कोनो कोनो में।
10: तो अब का कर जाओ, बात हो तो ढेर, मतलब ढेर मिनट तक हो जाला गाना भी बजाया, मैनेज करे के पड़ेगा।
6: मैडम।
11: क्या नाम हो रहा था
6: जी? हमारा नाम मनोरमा।
11: अच्छा चल, बाप रे, पहले बार से बात होता है?
6: हाँ जी, वैसे तो कुछ नहीं आ रहा नाम।
11: भारती मैडम बतिया रही हूँ, सोनी जी रही तो सपने हो गए बनी वहाँ के आवाज सुन ले कितना दिन भाई। सुने नहीं रेडियो रही नाम आवेला बाकी से बात ना भर लाज ले।
6: आज बात हो गई?
11: हाँ हाँ, दिन खुश हो गए बाकी। गाना बजा दे, आज बजा की का
6: गाना रहा तो काले बाजी का है, पिछला कॉल बाकी बात तो आज बाजी।
11: अच्छा ठीक बा, बजा दे
6: जी। तो चलिए प्ले करते नहीं, सुनत रही सबके साथ रेडियो इंजिन 90.4 FM।
11: सलाम
6: वालेकुम।

0: हेलो
1: नमस्ते जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंजर 90.4 एफएम में।
0: गाना सुनना है?
1: गाना सुनाएंगे। आप अपना नाम बता दीजिए पहले।
0: गोपालगंज
1: से। कहाँ? तो क्या हाल चाल है आपका?
0: ठीक है।
1: क्या हो रहा था अभी?
0: अभी तो है पुणे में काम हो रहा है।
1: अभी आप पुणे में हैं? क्या करते हैं वैसे आप?
0: गाड़ी चला रहे हैं। गाड़ी चलाते
1: हैं, ये अच्छी बात है। वैसे क्या है आज की फरमाइश?
0: गाना है ना टापू टुपुर दृष्टि पड़ता है। गाना
1: कौन सा?
0: टापू टुपुर दृष्टि पड़े।
1: क्या आप मुझे गा के बताएंगे?
0: हेलो
1: जी। हाँ,
0: नदिया के पार का गाना नहीं जो समय है?
1: हाँ हाँ।
0: तो आइए।
1: अरे गाना आप किसी को सुनाना भी चाहते हैं?
0: जितना सब लोग पे।
1: ओके जी, तो चलिए फिर प्ले करते हैं गाना आपका। जी सुनते रहिए सबके साथ रेडियो। नमस्कार।

0: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
1: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
0: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
1: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिस कर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
0: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
1: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिस कर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388894470 या 9198886973।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
2: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
2: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
2: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
4: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
5: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
6: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
2: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9439456 51 या 9770706575।
7: Now pick it up, pick it up.
8: Hello.
7: Now pick your phone up.
8: Hello.
7: Pick it up, pick it up.
8: Hello.
7: Now pick your phone up.
9: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029294911। जी हाँ, 8029294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
10: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंग 90.4 FM में। नमस्कार जी, सब ठीक है, आप
11: बताएं।
10: गाना दो लाइन बता देती, सही रही
11: गाना,
10: क्योंकि सुनवाई के भी चाहते हैं।

0: हेलो नमस्ते मैडम।
1: नमस्ते जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंजी 90.4 एफएम में।
0: महाराष्ट्र रेंजी कुमार मारी जा रहा हूँ। महाराष्ट्र बड़ा रेंजी कुमार मारी
1: जी।
0: हाँ, गाना सुनने का
1: बता दीजिए।
0: आपका जो फिल्म है आजकल जी, मतलब गोरी हकरारिया गाना सुन रहा है।
1: कौन सा?
0: गोरी हकरारिया, हरे हरी कुड़िया,
1: गोरी कलैया।
0: हाँ, गोरी कलैया आजकल जो मतलब
1: जी। और गाना सुनवाना भी चाहते हैं
0: आप? पहले आपको सुनाएंगे, दोस्त मित्र को सुनाएंगे।
1: ओके, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
0: हाँ, दोस्त मित्र का ऐसा। ओके मैडम, नमस्ते।
1: नमस्ते, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंग 90.4 एफएम।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 500 99 554 97 644।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
5: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
4: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
6: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
4: संपर्क करें 9939365923।
1: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
5: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
6: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
4: RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
6: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
6: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
6: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
4: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
7: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
4: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
6: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
4: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
6: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
8: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
9: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंग जी 90.4 FM में। नमस्ते जी, नेहा जी कैसी हैं?
10: अच्छा,
9: जी जी मैं तो ठीक हूँ, और नाश्ता पानी हो गया।
10: और
9: चलिए बढ़िया। तो क्या है आज की फरमाइश?
10: फरमाइश पहले मत कर लगाना
9: कोई बात नहीं की। अरे वो सोच के बता दू दो मिनट में।
10: मैडम जी बहुत अच्छा
9: क्या बोल रही है एक बार और बताइए। तो
10: बोल रही हूँ आपका आवाज बहुत अच्छा आता है। दिव्या मैडम जब आती है कॉल है
9: जी
10: ऐसा ही आपका आवाज आता है इसीलिए बहुत कर बोलते
9: हैं। चलिए वैसे आप भी बहुत अच्छा बात करती हैं।
10: मेरा आवाज बहुत अच्छा नहीं आता है।
9: नहीं नहीं आपका भी आवाज अच्छा। तो फिर गाना याद आया आपको?
10: गाना याद सुना दीजिए। साई वाले साई साई का नाम साई
9: ओ साहिबा। अच्छा और गाना किसी को सुनाना भी चाहती हैं आप?
10: गाना भाषी मैडम को जितना
9: ओके नेहा जी। तो फिर गाना प्ले करते हैं आपका? नमस्ते। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंग 90.4 FM।

0: हेलो अस्सलाम वालेकुम मैम।
1: वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंकिन 90.4 एफएम पर।
0: मैं सिकंदर बोल रहा हूँ मैम, स्कूटर।
1: कैसे हैं आप?
0: अच्छे हैं मैम, आप कैसे?
1: जी मैं भी बढ़िया हूँ।
0: बोलते हैं मैम की गाना सुने के बाद
1: बता दी,
0: जब मियाँ बीवी में तकरार होता है, मियाँ बाहर होता है, बीवी अंदर सोती है, ये गाना सुन।
1: क्या आप गा के मुझे बता सकते हैं दो लाइन?
0: नहीं आता है मैम।
1: चलिए कोई बात नहीं, तो सुनाना भी चाहते हैं।
0: सबसे पहले आपको मैं जितने रेडियो रिंकिन सुने सभी सुन, और कमरान भाई उनको सुनाना चाहते हैं।
1: जी जी, ले करते हैं गाना आपका।
0: अच्छा, कब बजेगा मैम?
1: आज नहीं तो कल बज ही जाएगा।
0: ठीक है
1: जी, तो प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंकिन 90.4 FM।
0: अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।

0: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
1: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
2: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
4: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
4: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
6: ठक ठक।
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
4: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
4: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
9: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
10: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
9: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
10: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
11: Now pick your phone up.
12: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
13: हेलो
14: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
13: नमस्कार मैम, कैसे हैं?
14: नमस्कार, मैं ठीक हूँ, आप बताइए।
13: हम भी ठीक है, आप लोग दुआ से।
14: जी, वैसे कहाँ से बोल रहे हैं आप?
13: हम बोल रहे हैं ओम साइकिल बंजारी रोड ट्यूशन के सामने, गोपालगंज से राघव जी।
14: चलिए, तो कैसे हैं आप?
13: बहुत बढ़िया है, आप लोग सुनाइए, आप लोग कैसे हैं?
14: जी, हम लोग भी बढ़िया है।
13: चलिए, बढ़िया के काम है
14: जी। वो नाश्ता हो गया आपका?
13: जी जी, नाश्ता हो गया है, अभी दुकान पे मैं हूँ। आपका नाश्ता हुआ है?
14: हाँ हाँ, हो गया। तो फिर क्या है
13: आपका नाम मैम?
14: जी, मेरा नाम मनोरमा।
13: मनोरमा, अच्छा, आज दूसरी बार बात हो रही है।
14: जी जी,
13: आज सॉन्ग चला दीजिएगा, नफरत की दुनिया छोड़ छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार।
14: क्या आप दो लाइन गा के मुझे बता सकते हैं?
13: मैम, गाना तो मैं नहीं गाता हूँ, मैं सिलाई करता हूँ।
14: चलिए कोई बात नहीं,
13: कहिएगा तो थोड़ा बहुत गुनगुना देंगे।
14: जी जी, बिल्कुल।

0: बस इतना ही
1: जी। इतना अच्छा तो गा रहे हैं आप।
0: कहाँ इतना गा रहे हैं आप लोग, आप लोग सब सुर चलाते हैं तो आप लोग का अच्छा आवाज आता है।
1: नहीं नहीं आप भी बहुत अच्छा गा रहे हैं, इसीलिए तो बोले आपसे कि गा के बताते तो सही रहता।
0: उतना हम लोग का टैलेंट नहीं है गाना गाने में।
1: नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं, आप बहुत अच्छा गा रहे हैं। और जो गाना बताया वो गाना डेडिकेट भी करना चाहते हैं?
0: पहले तो आपको और जितना रेडियो और इंजन जो सुन रहे हैं सभी लोगों के साथ में सुनना चाहता हूँ। और आइए आपके लिए चाय स्पेशल आया है पीने के लिए।
1: जी जी बिल्कुल आ रहे हैं, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
0: थैंक यू मैम।
1: जी सुनते रहिए सबके साथ रेडियो और इंजन 90.4 FM।
0: थैंक यू।

0: हेलो,
1: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंचिंग नाइन।
0: सलाम अलैकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: मैं अहमद अली, करियावाद नंबर एक से। कैसे हैं मैम?
1: मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप बताइए।
0: हम तो अच्छे हैं। भारती मैम बोल रहे हैं?
1: नहीं।
0: मनोरमा मैम?
1: जी।
0: योर वॉइस योर चॉइस क्यों नहीं हो रहा है मैम? नहीं है क्या भारती मैम?
1: नहीं, कुछ प्रॉब्लम हो गया इसकी वजह से नहीं चल रहा है, दो दिन बाद चलेंगे।
0: अच्छा चलिए कोई बात नहीं। आप कैसी हैं?
1: मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप ठीक ठाक है ना?
0: हाँ हम लोग तो अच्छा ही है। चल नहीं रहा है इसीलिए दिल नहीं लग रहा है, खाली गाना दे रहा है।
1: चलिए सो भी बहुत जल्द चलेगा।
0: हाँ ये सो चलता है।
1: जी जी।
0: आज हमको सॉन्ग सुना दीजिए दीदार मुझे से। दिन ब दिन मोहब्बत बढ़ती जाएगी। गा के क्या बताए मैम, मेरे सनम बस यूं ही है ना, मोहब्बत बढ़ती जाएगी है ना, दिन ब दिन मोहब्बत बढ़ती जाएगी।
1: जी जी। ये गाना आप किसी को सुनाना भी चाहते हैं?
0: सबसे पहले तो आपको
1: जी।
0: और अख्तरी को और भारती मैम को, दिलीप भाई को, कमरान भाई को, राघव जी को, समीर भाई को और जो भी रेडियो रिंगल जहाँ से सुन रहे हैं सबको, असलम भाई है, फिरोज भाई है, सभी के साथ। थैंक यू मैम गाना सुनाने के लिए।
1: जी वेलकम, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: बैठ जा।
1: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
2: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
1: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
3: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
4: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
3: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9939365923।
5: प्रसाद क्लिनिक,
6: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
5: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
6: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
7: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
8: हेलो। हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगजिंग 90.4 FM में।
9: जी अस्सलाम वालेकुम।
8: वालेकुम अस्सलाम
9: जी, मैं हर्षा बात कर रही हूँ सूरत से।
8: जी कैसी हैं आप?
9: अच्छी हूँ, अपना बताइए।
8: जी मैं भी बढ़िया हूँ।
9: तो सुना है
8: जी,
9: कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना, मुझे पुराना वाला सॉन्ग है ना, वही वाला।
8: आप दो लाइन गा के सुनाएंगे मुझे?
9: ये गाना है ना जो कि कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना।
8: जी जी
9: वही गाना। दूसरा गाना गा के सुना सकते हैं?
8: ओके, तो सुना।

0: जी, आपको बहुत अच्छा गा रही है जी। थैंक यू मैम। और सुनवाना चाहती हूँ आपको, अपने हस्बैंड जी को और ऑल फ्रेंड्स जितने सुनने रहे हैं उन सभी को।
1: ओके जी, तो फिर प्ले करती हूँ गाना आपका।
0: जी मैम
1: जी, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
0: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते।
0: जी
1: जी, क्या हाल चाल बा?
0: हाल चाल तो नहीं चल रहा
1: जी। आवाज में कट गया होता?
0: हाँ, रुको के कट जाता है, भाग जाता था। और वो
1: तो नहीं
0: जाना सुना दी,
1: बता दी।
0: तुम्हारा काम है, तुम्हारा नाम है?
1: एक बार और बता दी।
0: मेरे अंदर तुम्हारा काम है, नाम है
1: जी जी। और ये गाना सुनवाए के बिचार होता नहीं? तो फिर प्ले करते हैं जरूर गाना।
0: नमस्ते।
1: नमस्ते। सुनत रही सबके साथ रेडियो रिंग 90.4 एफएम।

0: Now pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
2: श्रोताओ, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं। नंबर है 8009994911 पर कॉल करके। तो अब हमें दीजिए जाने की इजाजत और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।
3: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है। तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
4: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
5: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2,00,000 रूपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
4: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
5: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
4: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
6: एपिसोड नंबर 51, 51।

माया नगरी के राजा शीलनिधि के वैभव तथा ऐश्वर्य की तुलना में इंद्रपुरी भी हेय थी। राजा ने जब अपनी कन्या के स्वयंवर का आयोजन किया तो सैकड़ों रूपवान राजे महाराजे उसका वरण करने के लिए वहां उपस्थित हुए। घुमंतु नारद जी भी वहां पहुंचे। राजा शीलनिधि ने उनका उचित आदर सत्कार करके उनसे अपनी कन्या का भविष्य बताने की प्रार्थना की। विश्व मोहिनी का रूप देखकर देवर्षि अपना वैराग्य भूल गए। कन्या के लक्षण ऐसे जिन्होंने देवर्षि के मन में उसे प्राप्त करने की अदम्य लालसा जगा दी, लेकिन उसके लिए वैसे ही रूप की आवश्यकता थी। हरि को अपना सबसे बड़ा शुभेच्छु जान नारद जी ने उनसे अपने लिए उन्हीं का अपना अनुपम रूप मांगा। भगवान ने कहा, हे योगी मुनि, रोग से व्याकुल रोगी यदि कुभत्य मांगे तो वैद्य उसे वो नहीं देता। मैंने भी आपका हित करने की ठान ली है, अतः आपका अकल्याण नहीं होने दूंगा।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
5: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
5: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
5: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 8470309092 या 9765665750।
6: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
7: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
6: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
7: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
6: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 9955497644।
8: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
9: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
8: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
9: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
8: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
10: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
11: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
10: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
11: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर, ग्राम एक डेरवा, तिलंगही मैदान के पूरब, गोपालगंज।
10: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5, हनुमानगढ़ी, गोपालगंज में है।
11: जानकारी है तो कॉल करे 6052162112 पे।
12: एपिसोड नंबर 52।

माया नगरी के राजा शीलनिधि की कन्या अनिंद्य सुंदरी विश्वमोहिनी के रूप पर आसक्त होकर देवर्षि नारद के मन में उसे प्राप्त करने का घोर मोह उत्पन्न हो गया था। अपनी कार्य सिद्धि के लिए उन्होंने श्रीहरि का अनुपम रूप मांगा और जो रूप प्राप्त हुआ उसे लेकर बड़े अभिमान और विश्वास के साथ स्वयंवर में जा विराजे। वहां शिवजी के दो मनमौजी गण भी थे जिन्हें सब भेद मालूम था। ब्राह्मण का रूप धारण करके वे दोनों भी नारद जी की पंक्ति में बैठ गए। मुनिवर को अपने कल्पित रूप पर जितना गर्व हो रहा था शिवजी के गण उतना ही प्रसन्न होकर हंस रहे थे। देवर्षि नारद का बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर राजकुमारी विश्वमोहिनी के अतिरिक्त और किसी ने नहीं देखा। भय के साथ उसे क्रोध भी हो आया। हाथों में जयमाल लिए उधर से दृष्टि फेर कर वो सभा में घूमने लगी। नारद जी की ओर फिर उसने भूल कर भी नहीं देखा। ये सारी माया रचाने वाले भगवान भी राजा के वेश में वहां उपस्थित थे। विश्वमोहिनी ने जाकर जयमाल उनके गले में डाल दी। नारद जी की घोर निराशा और पराजय देखकर शिव जी के गणों ने कहा, जाकर दर्पण में अपना रूप तो देखिए। मुनि ने जल में झांककर जो अपना बंदर सा रूप देखा तो उनके क्रोध की सीमा न रही और उपहास करने वाले शिवजी के गणों को उन्होंने शाप दिया, तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने मेरी हंसी उड़ाई, उसका फल भोगो। फिर किसी मुनि की हंसी न उड़ाना।

0: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
1: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
0: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
1: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
0: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
1: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
0: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
1: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
2: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
3: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
0: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
1: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
0: यहां आयुष्मान कार्ड से 5,00,000 रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
1: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
0: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
0: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
1: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
4: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
1: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
0: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
1: सिर्फ 1-2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से 2:00 PM तक।
0: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
5: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
6: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास जो है ENT स्पेशलिस्ट।
7: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में,

0: में कुल 17 प्रस्तावों पर लगी मुहर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बाढ़ पीड़ित परिवारों को DBT के माध्यम से 579,23,00,000 रुपए की आर्थिक सहायता भेजी। समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर जदयू ने कहा, ड्राफ्ट के अध्ययन के बाद करेंगे अंतिम फैसला। और आज अभियंता दिवस है, भारत रत्न डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। अब समाचार विस्तार से। राज्य कैबिनेट ने बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य के लिए 1,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने इसकी जानकारी दी।
1: जल संसाधन विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत राज्य योजना मद में बाढ़ एवं सिंचाई प्रक्षेप हेतु बिहार आकस्मिकता निधि से विभिन्न विपत्र कोड अंतर्गत कुल 1,000 करोड़ रुपए के अग्रिम की स्वीकृति दी गई।
0: श्री चौधरी ने बताया कि कैबिनेट ने गया जिले के विष्णुपद मंदिर परिक्षेत्र को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित करने के लिए 2,520 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है।
1: पर्यटन विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें गया जिला में अवस्थित विष्णुपद मंदिर परिक्षेत्र का काशी विश्वनाथ कॉरिडोर वाराणसी के तर्ज पर समग्र विकास हेतु 2,520 करोड़ रुपए एवं सोन फल्गु नदी जोड़ योजना का निर्माण कार्य 996,05,00,000 रुपए कुल 3,516,05,00,000 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
0: अपर मुख्य सचिव ने बताया कि कैबिनेट ने एक अन्य फैसले में मखाना विकास योजना के लिए 89 करोड़ से अधिक की राशि स्वीकृत की है।
1: वित्तीय वर्ष 26-27 में केंद्रीय क्षेत्र की मखाना विकास योजना के लिए 89,79,68,400 रुपए की स्वीकृति दी गई।
0: कैबिनेट की बैठक में कुल 17 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज लोक सेवक आवास स्थित संकल्प सभागार से बाढ़ पीड़ित परिवारों को 579,23,00,000 रुपए की आर्थिक सहायता की राशि प्रदान की। श्री चौधरी ने प्रत्येक प्रभावित परिवार को 7,000 रुपए उनके बैंक खाते में DBT के माध्यम से अंतरित की। गौरतलब है कि प्रदेश के 15 जिलों के 88 प्रखंडों में 50,00,000 से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत पहुंचाना है।
2: इस वर्ष बाढ़ से लगभग 15 जिले में के 88 प्रखंडों में लगभग 50,00,000 लोग इससे प्रभावित हुए। लगभग 55,000 हेक्टेयर जमीन से अधिक कृषि भूमि भी इससे प्रभावित हुई है। बिहार सरकार के तरफ से और भारत सरकार के द्वारा NDRF और SDRF के माध्यम से लगभग 21 टीमें हमारे बचाव कार्य में लगाई गई और पूरे प्रदेश में 1200 से अधिक सामुदायिक रसोई भी चलाने का काम बिहार की सरकार के माध्यम से किया गया और आगे भी ये जारी है।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राहत और बचाव कार्य के साथ पुनर्प्राप्ति और पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया। श्री चौधरी ने बिल्ड बैक बेटर देन बिफोर यानी पहले से बेहतर पुनर्निर्माण की थीम पर अधिकारियों को सभी कार्यों को 1 महीने के अंदर पूरा करने को कहा।
2: अब बिल्ड बैक बेटर देन बिफोर करने की जो कल्पना है, इसको सभी डिपार्टमेंट लग जाए और 15 तारीख आज है, इसके बाद 1 महीने के अंदर ये प्रयास कीजिए कि दुर्गा पूजा के पहले हम रिस्टोर का भी काम कर ले, कृषि इनपुट देना है कि भी पूरी समीक्षा कर ले। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो गरीब लोग हैं उनका अध्ययन करना जरूरी है कि उनको पशु की क्षति हुई है, उनके घर क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनके खेतों की जो परेशानी है उसको तमाम चीजों को अध्ययन करके हम बिहार के तमाम लोग जो आपदा पीड़ित हुए हैं उनको तुरंत रिलीफ देने का काम बिहार की सरकार के माध्यम से किया जाएगा।
0: प्रदेश में नदियों के जलस्तर में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। गंगा, पुनपुन और बागमती सहित कई प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। गंगा नदी पटना के गांधी घाट और हथीदह, भागलपुर तथा कहलगांव में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पटना के श्रीपालपुर में पुनपुन नदी और सीवान के दरौली में घाघरा नदी का जलस्तर भी खतरे के निशान से ऊपर दर्ज किया गया है। गंडक नदी गोपालगंज के डुमरिया घाट, कोसी नदी खगड़िया के बलतारा और कटिहार के कुर्सेला, बागमती नदी मुजफ्फरपुर के बेनीबाद तथा बूढ़ी गंडक नदी खगड़िया में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में एक केंद्रीय दल कल बिहार में बाढ़ की स्थिति का सर्वेक्षण करने आएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने केंद्रीय कृषि मंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर अधिकारियों को बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया। इधर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने केंद्रीय दल के दौरे पर प्रतिक्रिया देते हुए टीम से बाढ़ में हुए नुकसान की निष्पक्षता से आकलन करने की मांग की।
3: जब लगातार जो है हमने चिट्ठी लिखा, मांगे की, लेकिन वो मांगों में से कितना मांग को पूरा कर रहे हो? केवल टीम आए तो फॉर्मेलिटी ना करे।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विगत दिनों समान नागरिक संहिता भाजपा शासित राज्यों में 2029 तक लागू करने की बात कही थी। श्री शाह के बयान के बाद राज्य में राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। एनडीए के सहयोगी दलों में शामिल लोजपा आर और रालोमो ने यूसीसी के ड्राफ्ट का अध्ययन के बाद प्रतिक्रिया देने की बात कही है। हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा के संरक्षक केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने यूसीसी का समर्थन किया है। आज पटना में उप मुख्यमंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता विजय कुमार चौधरी ने समान नागरिक संहिता को लेकर कहा कि ड्राफ्ट का अध्ययन करने के बाद ही जदयू अपना अंतिम रुख स्पष्ट करेगा।
4: पहले तो यूसीसी बिल आएगा, किस रूप में है, पहले तो उसके प्रावधानों का अध्ययन होगा। और दूसरी बात है कि हमारे कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बता दिया है कि प्रावधानों को देखने के बाद उसके संबंध में सीधे गृह मंत्री जी से चर्चा होगी, श्री अमित शाह जी से। उसके बाद हम लोग की पार्टी बैठेगी, पार्टी में फिर विमर्श होगा, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा।
0: शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। आज अभियंता दिवस है। यह दिन महान अभियंता भारत रत्न स्वर्गीय डॉक्टर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने इंजीनियरों को राष्ट्र निर्माण का कर्मयोगी बताया।
1: महान इंजीनियर्स की हमारी विरासत में एक ऐसा रत्न भी हमें मिला जिसके कार्य आज भी लोगों को अचंभित कर रहे हैं, और वे थे भारत रत्न डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया। उन्हीं की याद में 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हमारे देश के इंजीनियर पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं।
2: मैं इस अवसर पर सभी इंजीनियरों को उनकी निर्माण शक्ति को आदर पूर्वक नमन करता हूं।
0: इधर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना के विश्वेश्वरैया भवन में आयोजित राजकीय समारोह में डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने अभियंता दिवस के अवसर पर सभी अभियंताओं को राष्ट्र निर्माण में उनके निरंतर योगदान के लिए शुभकामनाएं दी हैं। भारत का राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन आज अपना 67वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस लोक सेवा प्रसारक की शुरुआत 1959 में ऑल इंडिया रेडियो के अंतर्गत एक प्रायोगिक टेलीविजन सेवा के रूप में हुई थी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दूरदर्शन अपनी कई बेहतरीन सेवाओं जैसे सैटेलाइट और डायरेक्ट टू होम सर्विस के जरिए 100% आबादी तक पहुँचने वाला माध्यम है।
3: 15 सितंबर 1959 को दूरदर्शन की स्थापना के साथ भारत में टेलीविजन प्रसारण की शुरुआत हुई। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसी दिन दूरदर्शन के पहले प्रसारण का उद्घाटन किया था। वर्ष 1982 में दिल्ली एशिया खेलों के दौरान रंगीन टेलीविजन की शुरुआत ने दूरदर्शन के प्रसारण और दर्शकों की संख्या को नई ऊंचाई दी। वर्तमान में दूरदर्शन के 35 सैटेलाइट चैनल और 66 स्टूडियो केंद्र हैं। ये 24 से अधिक भाषाओं और विभिन्न बोलियों में कार्यक्रम प्रसारित करता है। दूरदर्शन ने रामायण, भारत, हम लोग, बुनियाद, चाणक्य, मालगुडी डेज, शक्तिमान, चित्रहार, फौजी सर्कस और उड़ान जैसे कई लोकप्रिय और यादगार धारावाहिक भी प्रसारित किए। आरजू के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर बिहार में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन मंत्री नंद किशोर राम ने लोगों से 17 सितंबर को शाम 6 बजे से 7 बजे के बीच आशीर्वाद का दीप जलाने की अपील की है। श्री राम ने आज पटना स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सेवा संकल्प अभियान के तहत 19 सितंबर को राष्ट्रीय इनोवेशन चैलेंज शुरू किया जाएगा। इसके तहत जिला स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बीपीएससी 70वीं परीक्षा में कथित गड़बड़ी की जांच और दारोगा के पदों की भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर अभ्यर्थियों ने आज पटना में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ने की कोशिश की। मौके पर तैनात पुलिस और दंगा नियंत्रण बल ने बैरिकेडिंग लगाकर छात्रों को आगे बढ़ने से रोका। इस दौरान अभ्यर्थियों और पुलिस के बीच नोकझोंक और धक्का मुक्की भी हुई। प्रदेश के अधिकतर भागों में मॉनसून की सक्रियता फिर से बढ़ी है। मौसम विभाग ने आज राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम भागों में मेघगर्जन, वज्रपात के साथ बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान भभुआ, पश्चिम चंपारण और किशनगंज में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अररिया जिले की आरएस थाना क्षेत्र पुलिस ने छापेमारी कर एक देसी पिस्तौल और 2 कारतूस के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। भागलपुर जिले के बबरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत कुतुबगंज मोहिद्दीन नगर निवासी भाजपा के मंडल अध्यक्ष उमा भूषण उर्फ पप्पू तांती हत्याकांड मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सुपौल जिले के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत बैरिया मंच वार्ड संख्या 11 में पुलिस ने छापेमारी कर 1000 से अधिक प्रतिबंधित नशीला इंजेक्शन बरामद किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य मंत्री परिषद की बैठक में बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य के लिए 1,000 करोड़ रुपए की मिली स्वीकृति। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कुल 17 प्रस्तावों पर लगी मुहर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बाढ़ पीड़ित परिवारों को DBT के माध्यम से 579,23,00,000 रुपए की आर्थिक सहायता भेजी। समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर जदयू ने कहा, ड्राफ्ट के अध्ययन के बाद करेंगे अंतिम फैसला। और आज अभियंता दिवस है, भारत रत्न डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।

0: चा।
1: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन।
2: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
1: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
2: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
1: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए। अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया। बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
2: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
1: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
3: सुनिए सुनिए सुनिए,
4: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
3: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
4: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
3: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
5: नन्ना मुन्ना लाही देश का सिपाही हूँ।
6: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
5: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
6: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
5: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
3: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
7: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
3: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
7: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
3: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
7: जानकारी है तो कॉल करें 6052 62112 पे।
8: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
7: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
8: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
7: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
3: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी।
7: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
3: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
7: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
3: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
9: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
10: आओ सुने हम सब मिलकर स्वच्छ जल गांव की कहानी, जो बुन रही है विकसित भारत की नई निशानी।
11: मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन द्वारा संचालित, कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित
12: कार्यक्रम स्वच्छ सुजल गांव की कहानी, रेडियो की जुबानी।

0: अरे पता नहीं स्वक्षिका कहाँ रह गई, इतना लेट तो वो कभी नहीं होती थी। लगता है मुझे अकेले ही कार्यक्रम करना पड़ेगा।
1: रुको रुको सुजल, आ गई मैं।
0: अरे आ गई तुम, मुझे लगा कहीं पानी भरने तो नहीं चली गई।
1: पानी भरने? नहीं नहीं सुजल, कुएं हैंडपंप पर जाना हुआ बीता हुआ कल, अब तो है हमारे घरों में नल से जल।
0: हाँ सही कह रही हो तुम, पहले और अब में बहुत फर्क आ गया है।
1: मुझे आज भी याद है कि कैसे मेरे गांव में महिलाएं बच्चियां और लोग सुबह से पानी के इंतजाम में लगे रहते थे ताकि बाकी का काम समय पर पूरे हो सके।
0: सही कह रही हो, कितनी बार तो उन्हें दिन में 2-4 चक्कर लगाने पड़ते थे ताकि पानी कम ना पड़ जाए।
1: और बच्चियों की पढ़ाई भी छूट जाती थी, यही नहीं गंदे पानी के सेवन से बीमार होना तो आम बात हो गई थी।
0: पानी रे पानी तेरा रंग कैसा,
1: सोचूं मैं सोचूं तेरा ढंग कैसा।
0: वाह स्वच्छिका, ये तो नया गाना बन गया।
1: सुजल महाशय, गाने का समय खत्म, कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाए।
0: अरे हाँ हाँ बिल्कुल, आप सभी को सुजल कुमार का
1: और स्वक्षिका का नमस्कार।
0: पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संचालित और कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित कार्यक्रम प्रस्तुत है
1: स्वच्छ सुजल गांव की कहानी, रेडियो की जुबानी। स्वच्छ

0: सुजित, जल जीवन मिशन ने समय बदल दिया है। जल जीवन मिशन, जिसकी शुरुआत 2019 में हुई थी, इसके तहत हर घर जल कार्यक्रम ने देश के करोड़ों ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाना शुरू कर दिया है।
1: हाँ, अब महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चियों को पानी ढोने के लिए घर से बाहर नहीं जाना पड़ता।
0: लेकिन यह आसान नहीं था। कई लोग सोचते हैं कि जल जीवन मिशन बस पाइप बिछाने का काम है, जबकि सच्चाई यह है कि यह हर परिवार के लिए रोज साफ, सुरक्षित और पर्याप्त पानी पहुंचाने का संकल्प है।
1: जो पानी आज नल में दिख रहा है वह अपने आप नहीं आया, इसके पीछे पूरे देश की मेहनत और लोगों की भागीदारी है। अब जल जीवन मिशन 2.0 के तहत इसे 2028 तक बढ़ाया गया है, ताकि हर घर तक पानी पहुंचे और हर गांव में जल योजनाओं का बेहतर संचालन, रखरखाव और सतत सेवाएं सुनिश्चित की जा सके। राहें खुद ब खुद बनेंगी, तुम बस कदम बढ़ाते चलो, होगा हर काम आसान, तुम मन में अलख जगाते चलो।
0: सही कहा, होगा आसान हर वो काम जो अब तक तुमको भारी था। जीत उसी की होती है जिसकी पूरी तैयारी थी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर देश ने हर मुश्किल में काम किया, कहीं रेगिस्तान की गर्मी में, कहीं पहाड़ों पर। आज हर घर और हर बस्ती तक नल से जल पहुंचने का काम चल रहा है।
1: अरे क्या हुआ,
0: ये सब सुनकर किसी के भी आंखों में आंसू आ जाए। ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, देश की लाखों महिलाओं और बच्चियों के सिर से आज पानी ढोने का बोझ उतर गया है। अच्छा, नल से जल मिलने के बाद हमारे गांव में और क्या बदलाव आया?
1: पहले पानी पी लूं, फिर बताता हूं। देखो, सिर्फ पानी ही नहीं आया, गांव के लोग भी इस योजना से जुड़े हैं। ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के माध्यम से लोग मिलकर इसे संभाल रहे हैं और हमारी माताएं बहनें इसमें आगे बढ़कर जिम्मेदारी निभा रही हैं।
0: ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति, ये क्या होता है, जरा अच्छे से समझाओ ना।
1: ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति यानी पानी समिति के लोग, जिनका गठन हर गांव में होता है और इस समिति में आधी महिलाओं का होना जरूरी होता है।
0: पर इनका कार्य क्या होता है?
1: चलो यह भी बता देता हूँ। ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति यानी पानी समिति का काम है कि ये सुनिश्चित करना कि गांव में पानी की सप्लाई ठीक से चलती रहे।

0: और पंचायत प्रतिनिधि पानी समिति के साथ मिलकर योजना का रखरखाव करते हैं ताकि लोगों का भरोसा बना रहे।
1: अरे वाह, अब समुदाय की भूमिका भी बता दो सुजल कुमार।
0: स्वच्छता समुदाय का सबसे अहम कड़ी है। उसके साथ के बिना किसी भी योजना का रखरखाव और उसकी सततता कायम रखना बहुत मुश्किल है। इस योजना के लिए समुदाय और हर व्यक्ति का कर्तव्य है पानी समिति एवं पंचायत के साथ मिलकर कार्य करना, समय पर जल सेवा शुल्क देना, पानी बर्बाद ना करना, पानी के स्रोत की रक्षा करना एवं इसे बनाए रखने के लिए जल के पुनः भरण यानी रिचार्ज पर कार्य करना, शिकायत छिपाना नहीं तुरंत बताना और सरकार के साथ मिलकर समाधान भी ढूंढना।
1: जब हर व्यक्ति कहे यह योजना मेरी है तभी योजना टिकाऊ होती है।
0: और इसीलिए अब योजनाओं की जानकारी जैसे पानी की आपूर्ति, गुणवत्ता और रखरखाव को सार्वजनिक करने पर भी जोर दिया जा रहा है ताकि हर व्यक्ति जानकारी के आधार पर अपनी भूमिका निभा सके।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है, पर योजना में कुछ खराबी भी आती होंगी, उन्हें कैसे ठीक करते हैं?
0: ऐसी स्थिति में ग्रामीण अपने गाँव के सरपंच या पानी समिति के सदस्यों को बता सकते हैं। इसे चलाने के लिए एक ऑपरेटर भी होता है जिसे हम नल जल मित्र कहते हैं। वो भी छोटी मोटी समस्या का समाधान कर देता है। बड़ी समस्या के लिए जिले स्तर पर DTU से संपर्क कर उनसे मदद ली जा सकती है।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है।
0: इस मिशन ने अब तक क्या क्या प्रगति की है और JJM 2.0 में क्या खास है हमें बताएंगे श्री कमल किशोर सो, जो जल जीवन मिशन के मिशन निदेशक है। चलिए उनको सुनते हैं।
2: स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी, स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी।
3: नमस्कार साथियों, मैं कमल किशोर सोन, अपर सचिव एवं मिशन निदेशक राष्ट्रीय जल जीवन मिशन, रेडियो कार्यक्रम स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी के माध्यम से आप सभी से जुड़कर मुझे बहुत खुशी हो रही है। चूंकि आज का यह एपिसोड जल जीवन मिशन पर केंद्रित है, इसलिए मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूं। साथियों, जल जीवन मिशन का मुख्य उद्देश्य यही रहा है कि भारत के हर ग्रामीण क्षेत्र में हर घर तक और गांव के आंगनवाड़ी व स्कूल जैसे संस्थानों तक पाइपलाइन के माध्यम से नल से साफ और सुरक्षित पीने का पानी पहुंचे। पिछले कुछ वर्षों में हम इस दिशा में तेजी से आगे बढ़े हैं। आज मिशन उस चरण में पहुंच चुका है जहां कई गांवों और पंचायतों में योजनाएं पूरी हो चुकी हैं और अब उनका संचालन और रखरखाव सबसे महत्वपूर्ण विषय बन गया है। इसी क्रम में मैं आप सभी को यह भी बताना चाहूंगा कि जल जीवन मिशन का दूसरा चरण लागू हो चुका है जिसके अंतर्गत मिशन को 2028 तक बढ़ाया गया है। इस नए चरण में जल जीवन मिशन अब नए सुधारों के साथ संचालित हो रहा है। अब हमारा ध्यान सिर्फ हर घर तक नल से जल पहुंचाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि यह सेवा नियमित, सुरक्षित और लंबे समय तक सतत रूप से बनी रहे। इसके लिए गांव के लोगों की भूमिका को और मजबूत किया जा रहा है। जल सेवा आकलन के माध्यम से गाँव के लोग खुद अपनी योजना की समीक्षा करते हैं एवं पानी की उपलब्धता, गुणवत्ता और सेवा की स्थिति को समझते हैं। इसके बाद जिला स्तर की तकनीकी टीम यानी DTU डिस्ट्रिक्ट टेक्निकल यूनिट की मदद से सेवा में सुधार की योजना तैयार करती है। DTU पंचायतों को रखरखाव एवं मरम्मत के कार्यों में भी मदद करता है। साथ ही जल जीवन मिशन के तहत जन भागीदारी को बढ़ावा देने हेतु संवाद कार्यक्रम के माध्यम से दो स्तरों पर सीख और अनुभव साझा किए जा रहे हैं। सुजल ग्राम पेयजल संवाद में ग्राम और ग्राम पंचायत अपनी अच्छी पहल और उपलब्धियां राष्ट्रीय स्तर तक साझा करते हैं जिससे उन्हें पहचान मिलती है, उनके कार्यों को सराहा जाता है और देश के दूसरे गांव भी उनसे सीखते हैं। वहीं DC और DM पेयजल संवाद एक ऐसा मंच है जहां जिला प्रशासन अपने जिले के सफल उदाहरण और अनुभव साझा करता है जिससे पेयजल से जुड़े प्रभावी समाधान और श्रेष्ठ कार्य पूरे जिले के साथ साथ अन्य क्षेत्रों तक भी पहुंचते हैं। वहीं DC DM पेयजल संवाद में जिला प्रशासन अपने जिले के सफल उदाहरण और अनुभव साझा करते हैं जिससे पेयजल संबंधित जरूरी समाधान और बेहतर कार्यों को पूरे जिले और अन्य स्थानों तक पहुँचाते हैं। दोस्तों, जल जीवन मिशन केवल पाइप और टंकी लगाने की योजना नहीं है, बल्कि यह जन भागीदारी पर आधारित एक जन

आंदोलन है। जब गांव खुद अपनी जल व्यवस्था को समझकर संभालता है तभी यह लंबे समय तक टिकाऊ रहती है। इसलिए जल स्रोतों की सुरक्षा, गुणवत्ता बनाए रखना और समुदाय की भागीदारी इस मिशन के प्रमुख आधार हैं, ताकि पानी आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित बना रहे।

0: स्वच्छिका, जैसा मिशन निदेशक श्री कमल किशोर सोन ने बताया, जल जीवन मिशन 2.0 में कई सुधार लाए गए हैं, जिनसे पानी की सेवा को नियमित, टिकाऊ और बेहतर तरीके से चलाया जा सके। सोचो, अभी तो देश के 15 करोड़ से ज्यादा घरों में नल से जल आ रहा है। जब देश के सारे घरों में नल से जल आने लगेगा, वो भी नियमित सतत, तो लोगों की जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी ना।
1: हाँ, लेकिन जो जल नल से आएगा, उसको स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी हम सब गांव वालों को ही तो निभानी होगी, ताकि कोई बीमार ना पड़े। कौन है सा? सुजल, तुमने सुना?
0: ये वही है दूसिका, तुम्हारी बातें सुनकर हंस रही है।
1: मैंने कोई मजाक की बात कही है क्या?
0: अभी अभी तुमने क्या कहा?
1: क्या कहा?
0: यही कि जल को स्वच्छ रखने के लिए जिम्मेदारी लोगों की भी होगी।
1: तुम बार बार हंस क्यों रही हो?
2: तुम्हारे भोलेपन पर हंस रही हूँ। अगर तुम लोगों को साफ पानी की परख होती, उसका महत्व पता होता, तो मैं कब की यहाँ से दूर जा चुकी होती। तुम लोग सोचते हो कि बस पानी आएगा तो सब ठीक, अगर पानी गंदा हो जाए तो बीमारी, अस्पताल, सब मेरी वजह से होगा। मैं दूषिका, पानी प्रदूषण की रानी।
0: ओ, पानी प्रदूषण की रानी, अब तुम्हारा दौर खत्म।
1: इस बार हम तेरी एक नहीं चलने देंगे।
0: हमने ठान लिया है कि लोगों को साफ पानी का महत्व भी बताएंगे।
2: तो क्या अब तक लोगों के घर में पानी नहीं आता था? ऐसा क्या बदलाव आ गया है?
0: हाँ हाँ, बिल्कुल आता था, लेकिन जल जीवन मिशन में यह सुनिश्चित किया जाता है कि हर पेयजल स्कीम में स्रोत से आने वाले पानी को शुद्ध करने के लिए डिसइंफेक्शन यूनिट और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की व्यवस्था हो। क्लोरिनेशन, फिल्टरिंग और अन्य ट्रीटमेंट प्रक्रियाओं के माध्यम से साफ और सुरक्षित पानी की आपूर्ति हो सके।
2: पर पानी बाद में भी तो गंदा हो सकता है, इसे लोगों को पता कैसे चलेगा?
0: तुम्हें पता नहीं है, जल जीवन मिशन में पानी की गुणवत्ता की जांच बहुत जरूरी हिस्सा है। तुम्हें पता है, इसके लिए हर गांव में 5 महिलाओं एवं दीदियों को फील्ड टेस्टिंग किट FTK से पानी की गुणवत्ता की जांच करना सिखाया जाता है। जरूरत पड़ने पर सैंपल या नमूना को लैब में भी भेजकर सत्यापित किया जाता है। JGM के नए चरण में ऐसे महिला दीदी समूह को अब सुजलाम शक्ति का नाम दिया गया है।
2: स्वच्छिका मैडम और सुजल भाई साहब, लोग तुमसे ज्यादा मेरी बात मानते हैं। तुम लोग तो उन्हें कठिन कठिन टास्क देते हो, ये धो, वो साफ करो, ऐसा करो, वैसा रखो। मैं उन्हें कहती हूँ, छोड़ो, हटाओ, फेंको, रहने दो, कोई चिंता मत करो।
1: लेकिन अब सब हमारी बात सुनेंगे। हम लोगों को बता रहे हैं कि अपनी छोटी छोटी आदतों से हम पानी के स्रोत को साफ रख सकते हैं,
0: क्योंकि शुद्ध पेयजल हमें बीमारियों से बचाता है, बच्चों को स्वस्थ और मजबूत बनाता है और घर का खर्च भी कम करता है। जब परिवार स्वस्थ रहता है तो दवा और इलाज पर होने वाला खर्च बचता है, जिससे पैसे बच्चों की पढ़ाई, पोषण और घर की जरूरतों पर खर्च किए जा सकते हैं। इसीलिए दूषिका महोदया, अब अपना बोरिया बिस्तर समेटो।
2: ओह, ये जल जीवन मिशन तो सबको जागरूक बना रहा है। कोई बात नहीं, अभी जा रही हूँ, लेकिन फिर आऊंगी। जिस गांव के लोग कमजोर पड़ेंगे, वहाँ फिर पहुँच जाऊंगी मैं, देखना, वो मुझे जरूर मौका देंगे।
0: जाओ जाओ, अब कोई तुम्हारी जगह नहीं।
3: चलो चलो, सुने हम रेडियो की सुबानी, सच सुजल गांव की एक अनोखी कहानी।
4: हम पानी बना नहीं सकते, सिर्फ बचा सकते हैं। इसलिए हमारे पास एक ही रास्ता है, पानी चाहिए तो उसे बचाइए। लीकेज रोकें, पानी बचाएं। क्या आप जानते हैं, मामूली लीकेज से ही हर महीने 1,000 लीटर पानी बर्बाद हो जाता है। यदि एक नल से हर मिनट 45 बूंद पानी टपकता है, तो 3 घंटे में 1 लीटर से ज्यादा पानी बह जाता है। पानी की हर बूंद मायने रखती है। जल बचाएं, भविष्य बनाएं।
5: स्वच्छ सुजल, यही है भारत का नारा न्यारा।
6: स्वच्छ सुजल गांव की कहानी, रेडियो की जुबानी।
1: सुजल, क्या सचमुच लोग हमसे ज्यादा दूषिका की बात मानते हैं?
0: नहीं स्वच्छिका, थोड़ी सी लापरवाही और आलस के कारण हम अपने पानी के स्रोतों को गंदा कर लेते हैं और दूषिका की जीत हो जाती है।
1: अच्छा, तुमने बताया था कि जल जीवन मिशन में निर्माण के समय मुख्यतः सरकार और विभाग काम करते हैं समुदाय के साथ मिलकर, लेकिन निर्माण पूरा होने के बाद ये योजना चलाने की जिम्मेदारी गांव के लोग कैसे संभालेंगे? योजना समुदाय व पंचायत को कैसे और कब दी जाएगी?
0: ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। निर्माण पूरा होने के बाद कुछ दिन स्कीम को जांचने के लिए ट्रायल रन किया जाता ताकि उसमें कोई कमी ना रह जाए, इसे कमीशनिंग कहते हैं। सब कुछ सही पाने के बाद गांव स्तर की योजना को पंचायत एवं समुदाय को सौंप दी जाती है और यह करने के लिए सरकार समुदाय के साथ मिलकर इस अवसर को जल अर्पण दिवस के रूप में मनाती है। यह ट्रायल रन कम से कम 15 दिनों का होना जरूरी है।
1: जल अर्पण दिवस बड़ा प्यारा नाम है, इसका मतलब क्या है?
0: ये जानकारी हमें जल जीवन मिशन के मिशन निदेशक श्री कमल किशोर सोन दे रहे हैं।
3: स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी, स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी।
7: मैं कमल किशोर सोन, अपर सचिव एवं मिशन निदेशक राष्ट्रीय जल जीवन मिशन। चलिए आज के इस रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको बताता हूं कि जल अर्पण दिवस क्या है। 73वें संविधान संशोधन और जन भागीदारी की भावना के अनुरूप जल जीवन मिशन में जब कोई जल आपूर्ति योजना पूरी होती है तो उसे संचालन और रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत और समुदाय को सौंपा जाता है। इसी जिम्मेदारी को उत्सव के रूप में स्वीकार करने के लिए जल अर्पण दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, जल अर्पण दिवस उस गाँव के लिए एक ऐतिहासिक दिन होता है जब सरकार और विभाग जल जीवन मिशन के अंतर्गत बनी ग्रामीण पाइप जल आपूर्ति योजनाओं को औपचारिक रूप से ग्राम पंचायत एवं ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति और समुदाय को सौंपते हैं। इस दिन गांव का समुदाय अपनी जल व्यवस्था को गर्व, जिम्मेदारी और अपनापन के साथ स्वीकार करता है और उसे संभालने व सुरक्षित रखने का सामूहिक संकल्प लेता है।
3: स्वच्छ सुच

0: जल अर्पण दिवस क्या अब समझ में आ गया? ये जानकारी जल जीवन मिशन के मिशन निदेशक श्री कमल किशोर सोन ने दी थी।
1: हाँ बिल्कुल, इस दिन का संदेश ये है कि अब पानी सिर्फ सरकार की योजना नहीं, ये पूरे गांव की जिम्मेदारी है। सब मिलकर इसकी देखभाल करेंगे आज, कल और आने वाले वर्षों तक। लेकिन ये बताओ, ये कैसे जांचेंगे कि योजना अब हैंडओवर के लिए तैयार है? क्या क्या करना होगा?
0: योजना को गांव को सौंपने से पहले यह देखा जाता है कि पानी समिति बनी है या नहीं, क्या योजना को कुछ दिन चलाकर जांचा गया है, पानी सही है या नहीं इसकी जांच हो चुकी है। नल जल मित्र और समिति को काम की जानकारी दी गई है, पूरे सिस्टम की जमीनी जांच हो गई है और सब जानकारी गांव में खुले में लगाई गई है। जल चौपाल करके गांव वालों को जोड़ा गया है और जल स्रोत की सफाई भी हो चुकी है। जब यह सब पूरा होता है तभी योजना गांव को सौंपी जाती है।
1: अरे वाह, ये तो बताओ इसे कैसे मनाएंगे?
0: इसे एक सामूहिक उत्सव के रूप में मनाया जाना चाहिए। इसे हम अपने अस्थाई लोक परंपरा के हिसाब से मना सकते हैं। सोर्स टू टेप, समुदाय के साथ मिलकर ट्रांसेक्ट वॉक यानी जल परिक्रमा की जाए, गांव के स्कीम का नक्शा और जल गुणवत्ता रिपोर्ट सार्वजनिक स्थल पर प्रदर्शित की जाए और जल योजना संरचनाओं पर हम पवित्र धागा बांधकर, जल बंधन धागा बांधकर सुरक्षा का संकल्प, हम अपनी योजना एवं जल स्रोत की रक्षा करेंगे, साथ में जल संरक्षण की आदतों को अपनाएंगे एवं उपाय भी करेंगे। इसी दिन योजना से जुड़ी सारी दस्तावेज पंचायत को हैंडओवर की जाती है। ये ध्यान रहे इसे अपने स्थानीय संस्कृति के अनुसार मनाया जाए। इस दिन हर गांव को अपने माननीय सांसद एवं स्थानीय मंत्री, अन्य जन प्रतिनिधियों एवं प्रवासी ग्रामीणों को जरूर बुलाना चाहिए। इसके अलावा अभी जल जीवन मिशन के अंतर्गत हम जल उत्सव भी मना रहे हैं।
1: जल उत्सव? ये जल उत्सव आखिर है क्या?
0: बहुत अच्छा सवाल पूछा तुमने। सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत जल उत्सव को 3 स्तर पर मनाने का निर्णय लिया है ताकि हर व्यक्ति इससे जुड़ सके।
1: 3 स्तर? जरा आसान भाषा में समझाओ ना।
0: हाँ बिल्कुल। सबसे पहला है राष्ट्रीय स्तर का जल महोत्सव। यह हर साल 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से 22 मार्च विश्व जल दिवस तक मनाया जाता है।
1: अच्छा, यानी पूरे देश में एक साथ पानी को लेकर जागरूकता और भागीदारी का माहौल बने।
0: बिल्कुल सही। इससे देश भर में कार्यक्रम, संवाद, सम्मान समारोह और जन भागीदारी के आयोजन होते हैं ताकि पानी को लेकर सामूहिक जन जागरूकता का माहौल बने।
1: और दूसरा स्तर कौन सा है?
0: दूसरा है राज्य स्तर का राज्य जल उत्सव या नदी उत्सव। इसमें हर राज्य अपनी नदियों, जल परंपराओं और स्थानीय संस्कृति के अनुसार कार्यक्रम आयोजित करता है।
1: मतलब हर राज्य अपने हिसाब से अपनी पहचान के साथ जल उत्सव मनाता है।
0: हाँ, जैसे कहीं नदी के किनारे कार्यक्रम, कहीं जल संरक्षण अभियान, तो कहीं स्थानीय त्योहारों के साथ इसे जोड़ा जाता है।
1: और तीसरा स्तर?
0: तीसरा और सबसे अहम है गांव एवं पंचायत स्तर का लोक जल उत्सव।
1: ये तो सबसे जरूरी है क्योंकि असली काम तो गांव में ही होता है।
0: सही कहा। ऐसे जल उत्सव में जल चौपाल भी होती है। गांव के लोग मिलकर अपनी जल योजना की समीक्षा करते हैं और यदि कोई कमी हो तो उसे ठीक कर अपनी सेवा को और बेहतर बनाते हैं। पानी के स्रोत की सफाई की जाती है और सब मिलकर संकल्प लेते हैं कि योजना को टिकाऊ बनाएंगे।
1: मतलब देश से लेकर गांव तक हर स्तर पर पानी को एक उत्सव, एक जिम्मेदारी और एक जन भागीदारी के रूप में जोड़ा गया है।
0: बिल्कुल, जन उत्सव का मतलब है सिर्फ कार्यक्रम नहीं बल्कि यह है जन भागीदारी से जल की जिम्मेदारी।
1: बिल्कुल, और हमने इसके लिए जल अर्पण दिवस के दौरान सम्मिलित गोरखपुर के माननीय सांसद श्री रवि किशन जी और राजगढ़ के सांसद श्री रोडमल नगर जी से बात की। आइए जाने क्या कहते हैं वे इनके बारे में।
2: स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी। स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी।
3: धन्यवाद प्रधानमंत्री मोदी जी, धन्यवाद जल शक्ति मंत्रालय सीआर पाटिल साहब, धन्यवाद पूज्य योगी महाराज। ये कैसी सोच जो मैं इसकी कल्पना कर सकता हूँ बिकॉज मैं विलेज से बिलोंग करता हूँ। पानी जो आने वाले समय पे प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा है कि कम होता जाएगा, खत्म होता जाएगा धरती पर, अब उसको बचाना, उसको संजो करके रखना और वहां पर पानी की व्यवस्था, हर घर में नल से जल देने की व्यवस्था, ये बहुत बड़ी सोच थी। ये इम्पॉसिबल जैसा था, इम्पॉसिबल जैसा, लेकिन मैंने इसको पॉसिबल होते हुए अपने 6 संसदीय क्षेत्र में देखा। 2.25 लाख लीटर की टंकी लगी, ऑटो मशीन पर पानी हर घर में आ रहा है, कितनी खुशी थी। ये खुशी का कोई मापदंड नहीं।
4: जल जीवन मिशन का जो काम है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है, हर घर नल से जल, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बहुत सराहना करता हूं, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और राजगढ़ जिले में भी 1331 के लगभग गांव ये जल जीवन मिशन के अंतर्गत उन्होंने लिए हैं। ये ठीक है कुछ व्यवधान रहे, उसकी वजह से कुछ लेट लतीफ हुई है, लेकिन बहुत ही प्रशंसनीय है। कुंडीबे गांव में तो 24x7 24 घंटे नल से जल प्रदाय हो रहा है, और वहां की जो पद्धति को हमने देखा और वहां से जो हमने सीख ली वो भी बड़ी अनुकरणीय है। सामान्यतः लोग क्या करते हैं कि नल की टोटी निकाल देते हैं तो पानी व्यर्थ में बहता रहता है, लेकिन कुंडीबे ग्राम पंचायत के लोगों की मैं सराहना करना चाहता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। हर नल में उन्होंने टोटी लगा रखी है, और मैं एक दिन गांव में गया, मैंने टोटी चालू कर दी और लोगों की तरफ देखा तो लोग हंसने लगे। मैंने कहा बस मैं यही चाहता था कि टोटी बंद रहनी चाहिए, और ये आप अपनी तरफ से हमारे साथ में खड़े हैं, ये बड़ा ही अच्छा एक वातावरण था, बड़ा अच्छा क्षण था। और अच्छा है जल जीवन मिशन के माध्यम से जैसा कुंडीबे हुआ है, जैसे अन्य गांव भी हो, और जल्दी से जल्दी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है हर घर नल से जल, इसको देने में हम सफल होंगे। जल जीवन मिशन का काम है गांव तक पानी पहुंचाना, लेकिन गांव का वितरण करना है तो ग्राम पंचायत का ही काम है, इसके लिए जन संगठनों को आगे आना पड़ेगा। देखिए जो काम करता है वहां गलतियां होती है, चूक भी होती है, कमियां भी रहती है, लेकिन बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा संकल्प है माननीय प्रधानमंत्री जी का, और हम सब आपके साथ हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी, स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी।
1: गोरखपुर के माननीय सांसद और राजगढ़ के सांसद से बात अभी हमने अपने श्रोताओं को सुनवाई, ये तो बहुत अच्छी बात बताई सुजल। ऐसा लगता है कि जल अर्पण दिवस एवं जल उत्सव संस्कृति और जिम्मेदारी का संगम है। इसके अलावा आओ अब ये जानते हैं कि जल जीवन मिशन में कौन कौन सी डिजिटल प्रणालियाँ विकसित की गई हैं।
2: स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी, स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी।
5: पंचायत, ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति और समुदाय अपनी पेयजल व्यवस्था को बेहतर ढंग से समझ सकें एवं चला सकें, इसके लिए भारत सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण डिजिटल प्रणालियां विकसित की है। उसमें सबसे प्रमुख है पंचायत डैशबोर्ड। पेयजल सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए पंचायत डैशबोर्ड बनाया गया है। इसके माध्यम से सरपंच और मुखिया जी योजनाओं की प्रगति, बनी हुई जल संरचनाएँ, पानी की गुणवत्ता और प्रशिक्षण गतिविधियों की जानकारी देख सकते हैं और अपनी राय व सुझाव भी दे सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण डिजिटल पहल है सुजलाम डाटाबेस। इसके माध्यम से हर पाइप पेयजल योजना की जानकारी स्रोत से लेकर नल तक एक ही मंच पर उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अंतर्गत प्रत्येक जलापूर्ति योजना और प्रत्येक गाँव को एक विशिष्ट पहचान यानी सुजल गाँव ID प्रदान की जा रही है, जिससे योजना की निगरानी, प्रबंधन और सेवा वितरण को और अधिक पारदर्शी एवं प्रभावी बनाया जा सके। इसके माध्यम से आप अपने गांव की पेयजल योजना की जानकारी जल स्रोत से लेकर नल तक योजना के सभी घटकों को देख पाएंगे। योजना से जुड़ी अन्य आवश्यक जानकारियां भी इसमें उपलब्ध होंगी। तीसरा महत्वपूर्ण पहल है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, जिसे हम निर्णय सहयोग प्रणाली कहते हैं, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं कि पानी रहेगा तभी हम उसका उपयोग कर पाएंगे। हर योजना का भविष्य उसके जल स्रोत की सुरक्षा पर निर्भर करता है। यह प्रणाली हमारे परंपरागत स्थानीय ज्ञान, जो सदियों से जल के साथ हमारे अनुभव से विकसित हुआ है को आधुनिक विज्ञान और तकनीक के साथ जोड़ती है। इस समन्वय से हमें बेहतर निर्णय लेने में सहायता मिलती है, जिससे हम अपने जल स्रोतों को रिचार्ज कर सकते हैं और उन्हें सुरक्षित रख सकते हैं, ताकि आज नल तक पहुंचने वाला पानी कल और आने वाली पीढ़ियों तक भी बना रहे।
2: स्वच्छ सुजल गांव की कहानी, रेडियो की जुबानी। स्वच्छ सुजल गांव की कहानी, रेडियो की जुबानी।
0: तैयारी पक्की, जिम्मेदारी सबकी।
6: पानी बचाएंगे, योजना चलाएंगे, गांव का जल भविष्य बनाएंगे।
7: मैं आज समझ गई, सबसे ताकतवर गांव वो है जो पानी की रक्षा करता है। अब मेरा क्या होगा?

0: जुबानी।
1: मैं कमल किशोर सोन, अपर सचिव एवं मिशन निदेशक राष्ट्रीय जल जीवन मिशन। साथियों, ग्राम पंचायतों को 16वें वित्त आयोग के तहत मिलने वाले टाइड ग्रांट जल एवं स्वच्छता के कार्यों के लिए निर्धारित है। इस राशि का उपयोग गांव की पेयजल योजनाओं की देखभाल, मरम्मति, जल गुणवत्ता जांच, जल संरक्षण और लोक जल उत्सव, जन जागरूकता कार्यक्रम जैसे गतिविधियों में किया जा सकता है। इससे पेयजल योजनाएं लंबे समय तक सुचारू रूप से चलती रहेंगी और ग्राम पंचायत के सहयोग से लोगों को बेहतर पेयजल सेवा मिलती रहेगी। जैसा कि आप सब जानते हैं, पाइप जल आपूर्ति योजना से मिलने वाला साफ और सुरक्षित पीने का पानी केवल सुविधा नहीं है, बल्कि यह बेहतर स्वास्थ्य की बुनियाद है। इससे डायरिया, पीलिया और अन्य जल जनित बीमारियों में कमी आती है, बच्चों और गर्भवती माताओं का स्वास्थ्य सुधरता है और परिवारों का इलाज पर होने वाला खर्च भी घटता है। स्वस्थ परिवार मतलब कामकाज में कमी नहीं, आमदनी में नुकसान नहीं। इसलिए पाइप नल योजना के माध्यम से मिलने वाला साफ पानी गांव की तरक्की की पहली सीढ़ी है। दोस्तों, चूंकि मानसून अपने चरम पर है और जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि वर्षा जल का एक एक बूंद हमें बचाना चाहिए, मेरा सबसे आग्रह है कि पानी का समझदारी से उपयोग करें और बर्बादी से बचें। साथ ही जल संचय, जन भागीदारी, कैच द रेन अभियान के तहत वर्षा जल संचयन और जल स्रोतों के रिचार्ज की तैयारी करें ताकि हमारे पेयजल स्रोत साल भर टिकाऊ बने रहें। आइए हम सब मिलकर सरकार और समुदाय की साझा जिम्मेदारी निभाएं, अपनी पाइप पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त रखें, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाएं और यह सुनिश्चित करें कि हर घर तक सुरक्षित और नियमित पानी पहुंचता रहे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। स्वच्छ

0: श्रोताओं, पिछले अंक में हमने जो प्रश्न पूछा था उसके सही जवाब दिए हैं गौतम गुप्ता, अमित कुमार और अर्चना कुमारी ने। इस अंक का सवाल है, क्या होता है जल अर्पण दिवस? क्या आपके गांव में ये मनाया गया है?
1: अरे सुजल, अगले अंक के बारे में भी तो कुछ बताओ।
0: अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था दोस्तों। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे स्वच्छ भारत मिशन देश के हर गाँव को स्वच्छ और एक गाँव को ODF प्लस ग्राम बनाने हेतु क्या प्रयास कर रहा है और क्या रहेगी इसकी रणनीति। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और सुनिए
1: स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी। अगले अंक तक आप सभी को हमारा नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम।
1: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
2: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
3: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
4: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
3: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
1: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
5: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
6: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
7: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
8: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
7: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
8: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।

0: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो? उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
5: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
4: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में दो नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मौनिया चौक, गोपालगंज और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
2: सुनिए सुनिए सुनिए,
6: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
6: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
7: प्रसाद क्लिनिक,
8: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चमरों के सफल इलाज के लिए मिले
7: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज,
8: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
9: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
3: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
9: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
3: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
10: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
11: भरोसे वाले से लेंगे,
10: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
11: और कीमत भी।
10: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
12: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
13: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
14: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर
15: हित और संवेदनशीलता को मार्गदर्शक से अस्वीकार्य लाल सागर में बिगड़ती स्थिति पर चिंता व्यक्त की। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया, लोगों से व्यापारियों को ₹2,000 से अधिक के UPI लेन देन पर लगने वाला 0.4% शुल्क व्यापारियों पर लगेगा। लोगों के बीच होने वाले लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। हौसी हमले की अटकलों के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की और दिल्ली में भारत तथा अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच जारी। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यह जानकारी दी।
16: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और तीन पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
15: श्री जायसवाल ने कहा कि भारत और रूस के बीच ऊर्जा सहयोग द्विपक्षीय साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। उन्होंने कहा कि दोनों देश परमाणु क्षेत्र में भी लंबे समय से सहयोग कर रहे हैं। सम्मेलन से अलग विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और सऊदी अरब के विदेश मंत्री की बैठक के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि दोनों पक्षों ने हौसी विद्रोहियों के मुद्दे पर विचार विमर्श किया। भारत ने सऊदी अरब पर हाल के हौसी हमले की निंदा की। भारत लाल सागर क्षेत्र में बिगड़ती स्थिति से बेहद चिंतित है। श्री जायसवाल ने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान अर्बन मोबिलिटी सहित कई उपलब्धियां हासिल हुई हैं।
16: 50 के लगभग आउटकम्स हैं अलग अलग क्षेत्रों में और ये सब विकास आधारित आउटकम्स हैं और इन सभी पे लोगों के लिए अवसर पैदा होंगे। जब अर्बन मोबिलिटी की बात कही है, वहाँ भी हमारे देश में कई एक और ब्रिक्स देश में ई मोबिलिटी पर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे काफी काम हो रहा है। तो ब्रिक्स देश आपस में अपने अपने उनके जो उनका एक्सपीरियंस है उसको साझा कर सकते हैं और फिर ये एक प्रस्ताव है और इस प्रस्ताव पर लोगों को अब ध्यान देना है और उसको देखना है किस प्रकार से इसको आगे ले जाया जाए।
15: जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर 70 लाख पाकिस्तानी रुपए के पुरस्कार की पाकिस्तान की घोषणा पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस तरह के दिखावे नए नहीं हैं।
16: हम लोगों ने कई दफा देखा है कि इस प्रकार का आंख में धूल झोंकने वाली हरकत पाकिस्तान करता रहा है। इससे एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर के नाम पे अनाउंसमेंट करने की जरूरत नहीं है, उनको एक्शन लेना चाहिए क्योंकि उनको खुद ही पता है कि लोग कहाँ हैं, उनको अरेस्ट करना चाहिए।
15: ओमान के तट पर वाणिज्यिक जहाज MTEL गाइया पर हमले पर श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों, चालक दल के सदस्यों, लोगों और असैन्य बुनियादी ढांचे पर हमले भारत के लिए अस्वीकार्य हैं और उन्होंने कहा कि भारत उस क्षेत्र में मुक्त और सुरक्षित नौवहन का आग्रह करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, रक्षा बलों, अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा उद्योगों के बीच निर्बाध सहयोग के जरिए ही हासिल की जा सकती है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने मिसाइल से लेकर रडार तक, लड़ाकू विमानों से लेकर पनडुब्बियों तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में क्षमताओं का प्रदर्शन किया है।
17: आज 2026 में DRDO ने मिसाइल से लेकर रडार्स तक, कम्बैट एयरक्राफ्ट से लेकर सबमरीन्स तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में अपनी कैपेबिलिटीज साबित की है। डिफेंस सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए DRDO आज एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, इस सच्चाई को ही कोई नकार नहीं सकता।
15: देश के 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने आज यमुना नदी का अविरल प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली शामिल हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि श्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पानी से जुड़ा ये 10वां विवाद है जो अब सुलझने वाला है। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस समझौते का स्वागत किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि एक ऐतिहासिक समझौता है।
18: आज एक बहुत बड़ा समझौता 6 राज्यों के बीच में हुआ है जिसका फायदा सिंचाई का भी होगा, पीने के पानी का भी होगा, पर्यावरण की दृष्टि से भी होगा। ये समझौता आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार देश के अंदर जल बंटवारे को लेकर के लंबित इन प्रकरणों का समाधान हो रहा है।
15: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के प्रयासों से ये समझौता संभव हो पाया है।
19: किशाऊ परियोजना हस्ताक्षर हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की पहल और सक्रिय प्रयासों से ही कई वर्षों से लंबित इस विषय पर राज्यों के बीच आज सहमति बनाने का रास्ता साफ हुआ है।
15: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
20: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
21: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
20: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
22: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि व्यक्तियों के बीच यूपीआई से कितनी भी राशि के लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। छोटे व्यापारियों के लिए 2000 रुपये तक का लेन देन निःशुल्क रहेगा। इस प्रकार व्यक्तियों से व्यापारियों को लगभग 96% लेन देन अप्रभावित रहेगा। 2000 रुपये से ज्यादा के व्यक्ति से व्यवसायी लेन देन पर 0.4% का मामूली MDR लगेगा, जबकि 75,000 रुपये और उससे अधिक के हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए MDR की सीमा 300 रुपये प्रति लेन देन होगी। मंत्रालय ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यवसायी या कारोबारी का ये शुल्क UPI से भुगतान करने वाले ग्राहकों पर न लगाएं। देश के माल निर्यात में इस वर्ष अगस्त में 26.12% की वृद्धि दर्ज की गई है और ये 43 अरब 81 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात में उछाल से माल निर्यात में ये वृद्धि दर्ज हुई है। सोने के आयात में गिरावट से व्यापार घाटा कम होकर 5 महीने के निचले स्तर 26 अरब 86 करोड़ डॉलर पर आ गया। जून 2022 के बाद इस वर्ष अगस्त माह में निर्यात वृद्धि सबसे अधिक 30.12% रही। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जैव E3 नीति और जैव प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए भारत पादप और मानव जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में एक साथ प्रगति देख रहा है। नई दिल्ली में डॉक्टर सिंह ने कहा कि आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी को ऐसी तकनीकों में परिवर्तित किया जाना चाहिए जो कृषि संबंधी वास्तविक चुनौतियों का समाधान कर सकें और किसानों को लाभ पहुंचा सकें। खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से ने कहा है कि खेलों में प्रगति राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है। मिजोरम में आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्रीमती खड़से ने ये बात कही।
23: We need to develop sports infrastructure.
24: हमें खेलों के बुनियादी ढांचे के साथ साथ युवाओं के विकास पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि हमारे युवा ही विकसित भारत का भविष्य है। केंद्र सरकार लगातार राष्ट्र निर्माण के लिए युवाओं को तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं।
23: यूथ फॉर्मेशन बिल्डिंग।
22: अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम तथा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने आज राजस्थान के एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में डिजिटल लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। 16 करोड़ रुपए से अधिक की कुल लागत से ये स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए जाएंगे। नई दिल्ली में जनजातीय कार्य मंत्रालय की सचिव रंजना चोपड़ा ने कहा कि इन विद्यालयों के विद्यार्थी IIT और नीट प्रवेश परीक्षा में बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं।
25: इस साल जितने भी हमारे 500 से ऊपर स्कूल हमारे ऑपरेशनल हैं, उनमें से 450 से अधिक बच्चे IIT JEE एडवांस क्वालिफाई किए हैं और 350 से अधिक बच्चे नीट करे हैं। तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि जो बच्चे एडवांस क्लियर करे हैं और नीट क्लियर करे हैं, वो जरूर किसी न किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं।
22: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
26: आपको हर खबर से रखें अपडेट, expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
22: ये आकाशवाणी है। हौसी हमले की अटकलों के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से सऊदी अरब और प्रमुख क्षेत्रीय समुद्री मार्गों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। नई चेतावनी हमले और सैन्य झड़पों की खबरें लगातार मिल रही हैं। सऊदी अरब में आज मक्का, जेद्दा और तैफ में बहुत कम समय के लिए आपातकालीन चेतावनी जारी की गई। उधर यमन के हौसी विद्रोहियों ने आज दावा किया कि सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों के तैज प्रांत पर हमले में 3 लोग मारे गए हैं। यमन में नए सिरे से शुरू हुई इस लड़ाई से नागरिकों की जान खतरे में है और लाल सागर से होकर गुजरने वाले जहाजों के लिए भी खतरा उत्पन्न हो गया है। भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त फिलिप ग्रीन ने वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका की सराहना की है। श्री ग्रीन ने क्वाड संगठन की बढ़ती सक्रियता पर बल दिया। श्री ग्रीन ने भारत के राजनयिक नेतृत्व, विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर की भूमिका की प्रशंसा की। भारत ने एचआईवी एड्स के उपचार के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में सहायता के लिए आज बोत्सवाना को 10 टन एंटी रेट्रोवायरल दवाएं भेजी हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि इससे भारत के ग्लोबल साउथ साझेदारों के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने की देश की प्रतिबद्धता का पता चलता है। उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने रैपिडो संचालित करने वाली कंपनी रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर गुमराह करने वाले विज्ञापन के लिए 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना गलत ट्रेड प्रैक्टिस, गलत अनुबंध और डार्क पैटर्न के लिए लगाया गया है। इसमें राइड कन्फर्म होने से पहले राइडर्स से ज्यादा पैसे लेने के लिए कहा जाता था। केरलम के बिजली मंत्री सनी जोसेफ ने कहा है कि राज्य में बिजली की अत्यधिक कमी को देखते हुए सरकार उच्च दरों पर बिजली खरीदने पर विचार कर रही है। उन्होंने बिजली कटौती की समस्या के तुरंत समाधान का भरोसा दिलाया। इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता वी मुरलीधरन ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि बिजली कटौती से जनता त्रस्त है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
0: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 74,004 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 23,119 पर स्थिर हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया आज 41 पैसे कमजोर होकर 95.96 रुपए पर बंद हुआ।
22: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नुआखाई के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा कि ये पर्व किसान, फसल और भाईचारे का उत्सव है और ये सद्भाव की भावना को मजबूत करता है। ओडिशा के प्रमुख पर्व नुआखाई का अर्थ है नया खाना। इसे धान की नई फसल आने पर मनाया जाता है। दिल्ली में भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 19वें ओवर में 7 विकेट पर 148 रन बना लिए हैं। पहले मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया था। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। श्रृंखला का तीसरा और आखिरी मुकाबला बृहस्पतिवार को दिल्ली में ही खेला जाएगा। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पश्चिम बंगाल के हिमालय क्षेत्र, केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। अगले 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में गरज चमक और तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और सिक्किम समेत पूर्वोत्तर भारत में भी कल तेज बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने कहा चीन के साथ मुख्य चिंताओं को दूर करने में आपसी सम्मान, हित और संवेदनशीलता को मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। भारत ने कहा खाड़ी क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों को निशाना बनाना अस्वीकार्य। लाल सागर में बिगड़ती स्थिति पर चिंता व्यक्त की। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया लोगों से व्यापारियों को 2,000 रुपए से अधिक के UPI लेन देन पर लगने वाला 0.4% शुल्क व्यापारियों पर लगेगा। लोगों के बीच होने वाले लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। हौसी हमले के अटकलों के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की और दिल्ली में भारत तथा अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच जारी है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: सवा चार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
1: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
2: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
1: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
2: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
1: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
2: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
2: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
2: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
4: ठक ठक।
5: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा मिला ही नहीं।
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
7: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
7: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
8: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
9: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
1: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
2: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
10: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
11: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
10: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
11: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
10: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर, गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
11: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
10: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच, गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-89739।
4: सुनिए सुनिए सुनिए,
12: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
4: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
12: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
4: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।

साथ हम अनिकेत मिश्र, अब हाल चाल विस्तार से। शिक्षा विभाग में इन दिनों अवैध गतिविधियों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। अब तक लगभग दर्जन भर प्रधानाध्यापकों का निलंबन हो चुका है। कोई भी गड़बड़ी पाए जाने पर तत्काल शिक्षा विभाग कार्रवाई कर रहा है, जिससे शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। पिछले 15 दिनों के अंदर आधा दर्जन से अधिक प्रधानाध्यापकों पर कार्रवाई की गई है। अभी हाल ही में प्रमाण पत्रों की वैधता पर सवाल उठा तो विशिष्ट शिक्षक को निलंबित किया गया। मामला बैकुंठपुर प्रखंड के बनकट्टी उत्तर उच्च मध्य विद्यालय के विशिष्ट शिक्षक पंकज कुमार का बताया जा रहा है। नियोजन और दिव्यांगता प्रमाण पत्रों की वैधता को लेकर हुई सुनवाई के बाद इनको निलंबित किया गया। जांच में नियोजन वर्ष 2007 का जबकि प्रस्तुत दिव्यांगता प्रमाण पत्र 2014 का पाया गया। एक अन्य प्रमाण पत्र को शिक्षक द्वारा अपना नहीं बताया गया। विभाग ने प्रथम दृष्टया धोखाधड़ी, जालसाजी और गलत प्रमाण पत्र के आधार पर नियोजन कराने के आरोप लगाए। शिक्षक तत्काल प्रभाव से निलंबित किए गए। अब इस पर आगे की विभागीय कार्रवाई की जा रही है। वहीं फर्जी छात्र उपस्थिति और सरकारी राशि में अनियमितता पाए जाने पर एक प्रधानाध्यापक को सिधौलिया प्रखंड के बली छापर उच्च मध्य विद्यालय से निलंबित किया गया। इनका नाम इकरामुल हक है। बताया जा रहा है कि औचक निरीक्षण में 90 छात्रों के बजाय उपस्थिति पंजी में 195 छात्र दर्ज मिले। 105 छात्रों की अधिक उपस्थिति दिखाने का आरोप लगा। MDM चावल और सरकारी राशि में अनियमितता भी सामने आई। 75,000 रुपए के विभिन्न मदों के खर्च का वैध कागजात नहीं दिखाने का भी आरोप है। सफाई कर्मी के रूप में पत्नी को नामित कर मानदेय की राशि खुद निकालने का भी आरोप पाया गया। स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाए गए, जिसके बाद प्रधानाध्यापक को तत्काल प्रभाव से जिला शिक्षा पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार पांडे ने निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय प्रखंड संसाधन केंद्र हथुआ निर्धारित किया गया है। इधर भोरे में भी प्रधानाध्यापक से बदसलूकी करने वाले एक शिक्षक पर गाज गिरी। भोरे प्रखंड के राजकीय प्राथमिक विद्यालय उर्दू भोरे के शिक्षक मुश्ताक अहमद पर कार्रवाई हुई। औचक निरीक्षण के दौरान प्रधानाध्यापक से अभद्र व्यवहार और गाली गलौज का आरोप लगाया गया। बिना अनुमति विद्यालय से अनुपस्थित पाए गए और शिक्षण कार्य में लापरवाही के भी आरोप इन पर लगे हैं। जांच प्रतिवेदन के आधार पर शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय प्रखंड संसाधन केंद्र सिधवलिया निर्धारित किया गया है। इसकी जानकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार पांडे ने दी। इधर थावे दुर्गा मंदिर परिसर में अवैध पार्किंग वसूली का वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो इसका संज्ञान पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने लिया। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर तत्काल कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है थावे थाने में इस पर प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसमें मेला के ठेकेदार और अजय पासवान के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि वीडियो में एक वाहन चालक से जबरदस्ती 80 रुपए की पार्किंग शुल्क वसूली जा रही थी, जबकि वाहन चालक कह रहा था कि उसको यहां गाड़ी की पार्किंग नहीं करनी है, वह सिर्फ इस रास्ते से कहीं जा रहा है। फिर भी ठेकेदार के आदमी उसे बोल रहे थे कि इधर से गुजरने पर भी आपको पार्किंग शुल्क देना होगा। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और इसी वीडियो के आधार पर पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने मेला ठेकेदार और अजय पासवान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया और केस दर्ज कर इसमें जांच और विधिक कार्रवाई की जा रही है। बिहार सरकार के निर्देशानुसार समेकित बाल विकास सेवाएं के तहत संचालित योजना एवं कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा को लेकर जिलाधिकारी समीर सौरभ ने बैठक की। इसमें आंगनबाड़ी केंद्र, भवन निर्माण केंद्रों पर मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता तथा सितंबर माह में संचालित पोषण माह की गतिविधियों की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने और निर्धारित कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया। दीपावली और छठ के त्योहारों पर रेल यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए छपरा आनंद विहार के बीच पूजा स्पेशल ट्रेन का परिचालन शुरू होगा। इसकी जानकारी रेलवे प्रशासन की तरफ से दी गई है। बताया जा रहा है कि थावे से होकर यह ट्रेन 050/85 और 050/86 नंबर की गाड़ी चलेगी, जो 8-8 फेरे में चलाई जाएगी। 6 अक्टूबर से 25 नवम्बर तक इस ट्रेन का विशेष परिचालन होगा। छपरा से मंगलवार को दोपहर 1:05 पर यह गाड़ी
चलेगी और आनंद विहार से बुधवार को सुबह 10:50 पर यह छपरा के लिए रवाना होगी। त्योहार में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने इस ट्रेन के परिचालन की अनुमति दी है। इस बैठक में किराए के भवनों में संचालन

0: आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए अस्थायी भवन निर्माण की स्थिति की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जिले में जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र वर्तमान में किराए के भवनों में संचालित हैं, उनके पोषक क्षेत्र में सरकारी भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए अस्थायी भवन निर्माण की कार्रवाई की जाए। जहाँ आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों के प्रारंभिक विकास, पोषण और मातृ शिशु स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण कड़ी है, इसके लिए बेहतर एवं सुरक्षित आधारभूत संरचना उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को निर्देशित किया कि वे संबंधित अंचलाधिकारी और मनरेगा के कार्यक्रम पदाधिकारी के साथ समन्वय स्थापित कर आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भूमि की उपलब्धता एवं सीमांकन की कार्रवाई अनिवार्य रूप से पूर्ण कराएं। भूमि से संबंधित मामलों में किसी प्रकार की अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि जिन आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए तत्काल भूमि उपलब्ध नहीं हो पा रही है, ऐसे किराए के केंद्रों को नजदीकी विद्यालय भवन में शिफ्ट करने की संभावनाओं का परीक्षण करें। यदि विद्यालय परिसर में पर्याप्त भूमि उपलब्ध हो तो उसी परिसर में आंगनबाड़ी केंद्र का भवन भी निर्माण कराया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस दिशा में स्थानीय स्तर पर समन्वय स्थापित कर ठोस कार्रवाई सुनिश्चित करें। बैठक में आंगनबाड़ी केंद्रों पर उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि आंगनबाड़ी केंद्र पर शौचालय, स्वच्छता, पेयजल और विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करें। मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों पर पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। लगातार अभियान चलाकर छापेमारी की जा रही है, आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो रही है। इसी कड़ी में बरौली पुलिस ने गांजा और स्मैक जैसे मादक पदार्थ के साथ बेसुनपुरा बाजार में छापेमारी करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। फल के ठेला पर मादक पदार्थ बेचने की सूचना पुलिस को मिली थी। पुलिस ने छापेमारी की तो वहां से गांजा जैसा मादक पदार्थ और स्मैक जैसा मादक पदार्थ कुल 28 पुड़िया में पुलिस ने जब्त किया। तो इस मामले में नबी हुसैन नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद आरोपी को आज न्यायिक हिरासत में भेजा गया। साथ ही बरौली पुलिस ने रतन सराय में भी छापेमारी की, जहां मकान में छुपा कर रखे गांजा जैसे मादक पदार्थ की सूचना मिली थी। यहां भी 311 ग्राम मादक पदार्थ बरामद किया गया। साथ ही विनय कुमार सिंह और एक युवती को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अंचलाधिकारी की मौजूदगी में मादक पदार्थों को जब्त कर दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। उचका गांव थाना की पुलिस ने भी 160 ग्राम गांजा जैसे मादक पदार्थ के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई उचका गांव के श्यामपुर बाजार और बड़वा मठ के पास हुई। दो अलग अलग जगहों से मादक पदार्थों को जब्त किया गया और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अब संभावित नेटवर्क की पहचान करने में भी जुटी हुई है। इस मामले में जिन 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, उसमें श्यामपुर के सुरेंद्र मिश्रा, उचका गांव लुवसी के राकेश गुप्ता और उचका गांव लुवसी के ही विकास गुप्ता का नाम शामिल है। इन तीनों को भी आज पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस मामले में पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी सख्त हैं। उन्होंने शराब तस्करी और मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले के विरुद्ध कड़ा रुख अख्तियार करने के लिए सभी थानों को निर्देश दिया है और लगातार सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस अभियान चलाकर ऐसे लोगों की गिरफ्तारी कर रही है। और इसका नतीजा है कि पिछले 24 घंटों में कुल 36 लोगों को अलग अलग मामलों में गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान 100 लीटर से अधिक देशी विदेशी शराब को भी जब्त किया गया है। साथ ही पॉक्सो एक्ट और कोर्ट के द्वारा जारी वारंट के आधार पर भी इन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। सभी को आज पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इधर फुलवरिया थाना की पुलिस ने भी गुप्त सूचना के आधार पर 371 लीटर से अधिक विदेशी शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया और एक पिकअप गाड़ी को भी जब्त की गई। बताया जा रहा है कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी करते हुए माड़ीपुर नहर के पास से पिकअप गाड़ी को पकड़ा, जिसके अंदर से 371 लीटर से अधिक विदेशी शराब मिली। इस कार्रवाई में पुलिस ने पुरुषोत्तम कुमार, पिता दिनेश यादव, साकिन महारानी, थाना पिपरा, जिला मोतिहारी को गिरफ्तार किया है। पिकअप गाड़ी और शराब को जब्त कर इसे उत्पाद अधिनियम के तहत न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। इधर माधोपुर थाना की पुलिस ने हत्या के प्रयास में फरार चल रहे 2 प्राथमिकी अभियुक्तों को आज गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर लिया। इसमें एक आरोपी दिनेश शाह है, दूसरा रवि सोनी है। ये दोनों शिवचंदर शाह के पुत्र बताए जा रहे हैं और बेलसड़ के निवासी हैं। इन दोनों पर पहले से मामला दर्ज था। बताया जा रहा है कि भूमि विवाद को लेकर अभियुक्तों द्वारा विजेंद्र नाथ तिवारी को जान से मारने की नियत से कुल्हाड़ी से उनके कंधे पर वार कर गंभीर रूप से उन्हें जख्मी भी किया गया था और इसी मामले में पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया है। ये विजेंद्र नाथ तिवारी बॉलीवुड के मशहूर फिल्म अभिनेता पंकज त्रिपाठी के बड़े भाई बताए जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले 22/6/2026 को इन पर आरोपियों ने कुल्हाड़ी से हमला किया था। भूमि विवाद को लेकर इन पर जानलेवा हमला किया गया था और उसमें यह जख्मी हो गए थे, जिसके बाद स्थानीय स्तर पर इलाज के बाद इन्हें पटना रेफर किया गया था। फिलहाल वे स्वस्थ बताए जा रहे हैं। इसी मामले में दोनों आरोपी फरार चल रहे थे। अब दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद इन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आज पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने भी अपने कार्यालय में लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान भारी संख्या में लोग अलग अलग थाना क्षेत्रों से आए थे। पुलिस अधीक्षक से सभी लोगों ने शिकायत की। उन्होंने सबके शिकायतों को गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ सुनते हुए प्राथमिकता के आधार पर मामलों और शिकायतों के त्वरित, निष्पक्ष और प्रभावी निष्पादन के लिए संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया। साथ ही प्रत्येक मामले में गुणवत्तापूर्ण कार्रवाई सुनिश्चित करने का आदेश दिया। मीरगंज थाना की पुलिस ने 194 लीटर से अधिक विदेशी शराब के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने सबिया पिकेट के पास गुप्त सूचना के आधार पर वाहनों की जांच करते हुए एक कार की तलाशी शुरू की तो इसमें से पुलिस को 194 लीटर से अधिक विदेशी शराब मिली। इस मामले में मिथिलेश कुमार को गिरफ्तार किया गया। यह आरोपी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के जयहरा थाना के बिशुनपुरा का निवासी है। यह आरोपी मिथिलेश कुमार वैशाली जिला के जयहरा थाना के बिशुनपुरा देवरिया का रहने वाला बताया जा रहा है। इसके साथ शंभु कुमार को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो पटना अगम कुआं का रहने वाला है। इन दोनों को गिरफ्तार कर इनकी कार और शराब को जब्त करने के बाद पुलिस अब इन पर उत्पाद अधिनियम के तहत विधिक कार्रवाई कर रही है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। प्रधानाध्यापकों के लगातार निलंबन से शिक्षा विभाग में मचा हड़कंप। मंदिर परिसर में अवैध पार्किंग वसूली पर केस दर्ज। थावे रूट से छपरा दिल्ली के बीच चलेगी स्पेशल पूजा ट्रेन। आंगनवाड़ी की भूमि को लेकर जिलाधिकारी का सख्त निर्देश जारी। कई अलग अलग जगहों से मादक पदार्थों के साथ तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: बनिए अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523-52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 41 51 51 पे।
2: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
3: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
4: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
5: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
4: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
4: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
5: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
4: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27।
3: 27 गोपालगंज।
5: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
6: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
7: अरे तो उसे डांटते क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
8: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
9: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
8: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
6: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
10: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
11: आज ही आए चंद्रगोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86-034-48-652 पे।
12: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
13: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
12: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। मैं सोनू SMS फरमाइश के साथ। यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। मैसेज का नंबर है 72 77 16 65 96। ध्यान रखना है कि जब भी गाने की फरमाइश करना है, आप लोग से हर रोज़ बताई जाती है और आज भी मैं कहना चाहूँगा कि जब भी गाने की फरमाइश करें आप तो पुराने गाने की फरमाइश करें ताकि आपकी फरमाइश हम पूरी कर सके। यहाँ पे कुछ मैसेज पहुँचे हुए तो मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और

और यहाँ पे पहला मैसेज एक ही पहुँचा हुआ है और इस मैसेज को पहुँचाए हुए हैं मिस्टर विराट यादव गोपालगंज से, और कहते हैं कि मुझे गाना सुनना है, और गाने का बोल देते हैं कभी बंधन चुरा लिया। कहते हैं सर मेरा भी गाना बजा दीजिए। बिल्कुल, आपके गाने के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं, और जो भी श्रोतागण इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं, बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को एक छोटा सा टेक्स्ट मैसेज करना है जिसमें अपना नाम, गाने का नाम और कहां से मैसेज कर रहे हैं, जगह का नाम बताना है, और फिर कुछ ही समय में आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे। तो फिलहाल पहले गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं, एंजॉय करते हैं हम सभी विराट जी के गाने के साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे।

रेडियो एमसीएम 94 एफएम सुन रहे हैं आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है एसएमएस फरमाइश का। यदि आप भी सुनना चाहते हैं अपने पसंद के गाने तो बिल्कुल आप भी सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है छोटा सा, जिसमें अपना नाम, गाने का नाम, कहां से मैसेज कर रहे हैं, सारी बातें बताना है, और फिर कुछ ही समय में आपकी फरमाइश पूरी की जाएगी। तो गाने के साथ इंजॉय करना है। यहाँ पे कुछ मैसेज पहुँचे हुए, आगे मैसेज लिखा गया है कि हेलो सर, मैं सनी पटेल, सॉन्ग अखिया लड़ल बजब से दिल में करार नहीं है, पवन सिंह का सुनाएंगे। और एक और मैसेज हमारे पास पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि कैसे हैं आप, तो बिल्कुल बढ़िया है। और गाने की फरमाइश, बनला के दस गो साथी, बिगड़ला के केहू ना। डेडिकेट सिस्टर काजल, पिंकी, मनीषा, अनुजा, अनु, मीरा, निक्की, पूजा, सरिता, सनम और सभी को। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे। और इस मैसेज को करती हैं श्रेया अमो मौजम से। आगे मैसेज हमारे पास पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि उजड़ी वही दुनिया को तू आबाद ना कर, उजड़ी हुई दुनिया को तू यूं आबाद ना कर, बीते हुए लम्हों को तू याद ना कर, एक कैद परिंदे ने ये कहा है हमसे, मैं भूल चुका हूँ मैं उड़ना, मुझे आज़ाद ना कर। सुनो भाई नमस्कार, और कैसे हैं आप, क्या हाल चाल है? और मैं रोहित देहरादून से, तो बिल्कुल बढ़िया हूँ और आप सभी के बीच उपस्थित हूँ और कार्यक्रम के साथ, और बन रहे हैं आप हमारे साथ रेडियो एमजीएम 94 एफएम सुनते रहें। और आगे मैसेज पहुँचे हुए, तो मैसेज को शामिल करते हुए आगे बढ़ेंगे। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, हाय मैं कमलेश जी विलेज सबिया फील्ड गोपालगंज से, और मैं भी जुड़ चुका हूँ इस शो से, मेरा भी हाजिरी लगा दीजिए। बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि हाय सोनम बाबू, कैसे हैं? हम भी ठीक हैं और टाइम से जुड़े हैं, तो मेरा सॉन्ग सुना दे। फिल्म सूरज और चंदा, लता जी और रफ़ी जी के स्वर हैं, बिल्कुल सुनाएंगे। फ़िलहाल स्वागत है आपका। और आगे मैसेज कई पहुंचे हुए थे, मैसेज को रुकते हैं और गाने को अगली प्ले करते हैं और सुनते हैं, इंजॉय करते हैं।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
2: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
3: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
2: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
2: संपर्क करें 9939365923।
5: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
6: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
7: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहां है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
8: हमारे यहां दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
7: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9947044468 पे।

छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो एमसीएम 90.4 एफएम पे और शो चल रहा है इसमें फरमाइश का। और यहाँ पे आगे मैसेज कई पहुँचे और लिखा गया है कि हेलो हाय सोनो भाई नमस्कार और सभी को नमस्कार, हम भी जुड़ गए हैं, बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में दिलीप राम जी। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि शॉन्ग हम तो बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। और इस मैसेज को करती हैं निशा शुक्लवा से, तो चलिए आपकी फरमाइश पूरा करने की कोशिश है। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ लिखा गया है कि हम हेलो भाईजान, मैं शमीर सागर चौराव से और शौंग सुनाएं, बिल्कुल सुनाएंगे, फिलहाल स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ लिखा गया है कि गरीबी अक्सर लड़कों को बहुत रुलाती है, सिर्फ एक कामयाबी के लिए पूरी जवानी गुजर जाती है, और एक तरफ मोहब्बत और एक तरफ घर की जिम्मेदारियां, तनख्वाह भी इतनी कम है, कैसे सबको खुश रख पाऊंगा और पाऊंगा। खैर छोड़ो, इस जन्म पर घर की जिम्मेदारियां निभाते हैं, मोहब्बत करने के लिए अगले जन्म अमीर बनकर आऊँगा। बड़ड़िया थाना क्षेत्र बालापुर से सनोज कुमार जी, आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे में से इस पहुँचा हुआ है मधुसरिया से राजू कुमार, कहते हैं मुझे शम सुनना है, तू कातिल तेरा दिल कातिल। ओहो, चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है लिखा गया है कि सर मेरा मैसेज नहीं पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल आपका मैसेज हमारे पास पहुंचा हुआ है। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुंचा हुआ है लिखे हुए हैं कि हाय सुनो सर, मुझे गाना सुनना है, गाने का नाम है जियो हो बिहार के लाला। सत्यम जी जुड़े हैं श्यामपुर से और आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है पवन जी, जब अपने के प्रिय मैडम जी

आखिर ये मैडम जी बाड़ी तो इधर उधर कहेला, अखिया लड़ावेनी, ये तो गलत काम बा। बात तो सही बा, और ये मैसेज के करता नहीं वीरेंद्र गुप्ता भैया के खरिया रक्सोल नेपाल बॉर्डर से, और कहा था नहीं कि अब अपने बिहार के MLC बन गई बानी। हाँ, दुवर्षीय MLC बन चुकल बनी, और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि थैंक यू सर सॉन्ग प्ले करने के लिए, और यह सॉन्ग कैसा लगा? बिल्कुल बढ़िया। और इस मैसेज को करते हैं सन्नी पटेल जी, यदि आप लोगों की फरमाइश प्यारे प्यारे पहुँचते हैं तो पूरा करने की कोशिश रहता है, और थोड़ा सा नए धुन की गाने की फरमाइश पहुँचती है तो हमें जो इजाज़त मिला है उसी गाने को प्ले कर पाते हैं। हमें कहा गया है कि पुराने गाने पुराने धुन की गाने को प्ले करना है, तो आप लोग पुराने गाने फरमाएंगे, भोजपुरी हो या हिंदी कोई भी हो, पूरा करने की कोशिश रहेगा। और समय भी है जो रात्रि के समय है, तो उसमें थोड़ा मधुर धुन होना चाहिए, जो गाने हम सभी सुने तो हर किसी को अच्छा लगे, ये नहीं कहे कि इस शांत माहौल में कैसा धुन बज रहा है। तो सब समय समय पर अच्छा लगता है, तो रात्रि के समय में मधुर धुन होना चाहिए, फिर आपकी फरमाइश बिल्कुल पूरा किया जाएगा। बढ़ते हैं आगे और अगले गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं, देखते हैं कैसा गाना का फरमाइश पहुंचा हुआ है। बदला के 10 गो साथी, बिगड़ ला के कोई ना।

0: प्रसाद क्लिनिक।
1: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
0: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
1: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
2: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
2: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
3: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करे।
3: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
2: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
4: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
3: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
5: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
3: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
5: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
3: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
5: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
3: संपर्क करें 84710309 या 9765065750।

थोड़ा सा ब्रेक हो गया ख़त्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजीम 94.4 FM पे। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि मैं बहुत सत्य घटनाओं पे आधारित ये सॉन्ग है, अच्छा लगा। और इस मैसेज को करते हैं वीरेंद्र गुप्ता भैया, बिल्कुल। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, अगले गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं और जन्मदिन के उपलक्ष में गाने की फरमाइश करती हैं निशा शिकुलवा से। तो ये नहीं बताया गया है कि किनका जन्मदिन है और कुछ मिलेगा कि नहीं, कि सब अकेले ही बटोर लेंगी। तो हम सब भी बैठे हुए हैं मिठाइयों के इंतज़ार में, तो यदि सुन रही हैं तो ज़रूर पार्सल कीजिएगा। फिलहाल गाने को प्ले करते हुए हम सभी इंजॉय करते हैं, आप भी इंजॉय करें अपने गानों के साथ रेडियो रमझिम 90.4 FM पे।

हमसे बचेगा तब ना देंगे आप लोगों को। आप लोग दुकान से खरीद के खा लो, हम भी खुश आप लोग भी खुश। अच्छा चलिए आप ही खाते रहिए और हम सब तो दुकान से खरीद के खाते ही हैं। निशा शुक्लवा से और आगे बढ़ेंगे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि किन का जन्मदिन है। निशा बेबी जो भी हो आपके बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं। डट कर केक खाइए। और मैसेज करते हैं वीरेंद्र गुप्ता भैया के खरिया रक्सौल नेपाल बॉर्डर से और इनके तरफ से गाने की भी फरमाइश पहुंचा हुआ है और गाने के फरमाइश किया गया है जीना है अब तेरे साथ दिन रात तेरे बाहों में। डेडिकेट पहले मैडम जी को और शफाक रोशनी हिना आशा निशा शाहजहाँ शाबा गुड़िया ब्यूटी खुशी शाबा शबीना और दिलीप भाई और सोनू भाई के साथ सभी मित्रों को और जानने पहचानने वाले सभी को। इस मैसेज को करते हैं वीरेंद्र गुप्ता भैया के करे और रक्सौल नेपाल बॉर्डर से। तो चलिए आपकी भी फरमाइश हम प्ले करेंगे। यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि हम ना होते तो आपको गज़ल कौन कहता, ये तो संसार है मोहब्बत का वरना पत्थर के दीवार को ताजमहल कौन कहता। मधुसरिया से राजू कुमार जी इस लाइन को भेजते हैं। बिल्कुल आपका रहना ज़रूरी है राजू जी। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है। मंकेश सहानी जी जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत है। इस कार्यक्रम में मैसेज करके डिलीट कर दिए हैं तो आप मैसेज जब भी टाइप करें तो पहले देख ले फिर सेंड करें। थोड़ी सी गलती हो गई थी उसी वक्त हम मैसेज को देख लिए थे और केवल नाम ही लिख के भेजे हुए थे आप। आगे बढ़ते हैं और आगे गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं हम सभी रेडियो रेमझिम 90.4 FM पे वीरेंद्र गुप्ता भैया की फरमाइश।

FM सुन रहे हैं आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस फरमाइश का। और यहाँ पे आगे जो है कई मैसेज हमारे पास पड़े हुए हैं और एक ही गाने प्ले करने का मौका है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे मैसेज देखा जाए, लिखा गया है कि मंकी सहनी भैरवगंज चंपारण से फिल्म चांदनी का सॉन्ग, तो आज तो नहीं हो पाएगा क्योंकि हम समाप्ति के कगार पे हैं, कल कोशिश रहेगा शाहनी जी। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि शुक्रिया सोनू बाबू, चलिए आपको धन्यवाद है रेडियो रेमझिम सुनने के लिए और कार्यक्रम के साथ बने रहने के लिए। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि वीरेंद्र भैया जी को नमस्कार और गाने सुपर, मुझे सॉन्ग में शामिल किए, दिल से शुक्रिया आपको। दिलीप राम दिल्ली से मैसेज करते हैं। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि सुनो भैया हमार भी हाजिरी लगा लो। संदीप कुमार हसनपुर से जुड़े हुए हैं और चलिए आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और गाने की फरमाइश तो आज तो पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि अंतिम समय हो चुके हैं, कल कोशिश रहेगा। और आगे बढ़ते हैं, अगले गाने के फरमाइश हम प्ले करते हैं और इस मैसेज को करते हैं शमीर सागर चौराव से, और गाने के फरमाइश करते हैं सोचेंगे तुम्हें प्यार करे कि नहीं, बिल्कुल सोचना चाहिए। चलिए गाने को प्ले करते हैं और इसी गाने के साथ इस कार्यक्रम को भी हम समाप्त करते हैं, सुनते हैं, आप भी सुने एंजॉय करें और हमें दीजिए जाने की इजाज़त। सुनते रहें, एंजॉय करते रहें, नमस्कार।

0: सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिद्म 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज ये जानकारी दी।
1: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और तीन पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान अर्बन मोबिलिटी सहित कई उपलब्धियां हासिल हुई हैं। जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर 70 लाख पाकिस्तानी रुपए के पुरस्कार की पाकिस्तान की घोषणा पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस तरह के दिखावे नए नहीं हैं। ओमान के तट पर वाणिज्यिक जहाज MTEL गाइला हमले पर श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों, चालक दल के सदस्यों, लोगों और असैन्य बुनियादी ढांचे पर हमले भारत के लिए अस्वीकार्य हैं। उन्होंने कहा कि भारत उस क्षेत्र में मुक्त और सुरक्षित नौवहन का आग्रह करता है। हूती हमलों की अटकलों के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से सऊदी अरब और प्रमुख क्षेत्रीय समुद्री मार्गों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। नई चेतावनी, हमले और सैन्य झड़पों की खबरें लगातार मिल रही हैं। सऊदी अरब में आज मक्का, जेदा और तर्फ में बहुत कम समय के लिए आपातकालीन चेतावनी जारी की गई। उधर यमन के हूती विद्रोहियों ने आज दावा किया कि सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों के तैज प्रांत पर हमले में 3 लोग मारे गए। यमन में नए सिरे से शुरू हुई लड़ाई से नागरिकों की जान खतरे में है और लाल सागर से होकर गुजरने वाले जहाजों के लिए भी खतरा उत्पन्न हो गया है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि व्यक्तियों के बीच UPI से कितनी भी राशि के लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। छोटे व्यापारियों के लिए 2000 रुपए तक का लेन देन निःशुल्क रहेगा। इस प्रकार व्यक्तियों से व्यापारियों को लगभग 96% लेन देन अप्रभावित रहेगा। 2000 रुपए से अधिक के व्यक्ति से व्यवसाय लेन देन पर 0.4% का मामूली MDR लगेगा, जबकि 75,000 रुपए और उससे अधिक के हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन के लिए MDR की सीमा 300 रुपए प्रति लेन देन होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, रक्षा बलों, अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा उद्योग के बीच निर्बाध सहयोग के जरिए ही हासिल की जा सकती है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने मिसाइलों से लेकर राडार तक, लड़ाकू विमानों से लेकर पनडुब्बियों तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में क्षमताओं का प्रदर्शन किया है।
2: आज 2026 में DRDO ने मिसाइल से लेकर रडार तक, कम्बैट एयरक्राफ्ट से लेकर सबमरीन तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में अपनी कैपेबिलिटीज साबित की है। डिफेंस सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए DRDO आज एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, इस सच्चाई को ही कोई नकार नहीं सकता।
0: भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में आयोजित 69वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भाग ले रहा है, जो 19 सितंबर तक चलेगा। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश कर रहे हैं। सम्मेलन में भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के 32 पीठासीन अधिकारी और 18 सचिव भी शामिल हैं, जो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के सदस्य हैं। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज 17वीं सदी के कवि संत मकुलदास महाराज की स्मृति में भारत सरकार के डाक विभाग द्वारा जारी स्मारक डाक टिकट का विमोचन किया। श्री सिंधिया ने संत मलुकदास को आध्यात्मिक शक्ति का वाहक बताया और देश में मुश्किल दौर में भी सनातन धर्म की मूल भावना को बनाए रखने में उनके योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि आज भारत जिस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है, उसके पीछे केवल आर्थिक विकास नहीं बल्कि गहरा सांस्कृतिक आत्मविश्वास भी है, जो दूसरे देशों से उसे अलग बनाता है। दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने भारत को 160 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में भारत ने 14 ओवर और 5 गेंद में 3 विकेट खोकर 163 रन बनाकर मैच जीत लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Renuka. The Ministry of External Affairs has said several issues were discussed during the meeting between Prime Minister Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping on the sidelines of the 18th BRICS summit held in New Delhi recently. Addressing media in New Delhi this evening, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said the Prime Minister referred to India's concerns and underlined that both sides should show sensitivity to each other's core concerns.
1: Several issues came up during the discussions. Prime Minister referred to Indian concerns as well and underlined those that both sides should show sensitivity to each other's core concerns and be guided by the three mutuals: mutual respect, mutual interest and mutual sensitivity.
3: The spokesperson said External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar held a meeting with the Saudi Foreign Minister on the sidelines of the BRICS summit. During the meeting, they discussed regional and international developments. Mr. Jaiswal said that the issue of the Houthis was also discussed. There was recently an attack on Saudi Arabia, which India has condemned. Mr. Jaiswal said New Delhi is deeply concerned with the escalation in the situation in the Red Sea region.

0: एह उमर के उमंग में सन्हैया के रंग में अतु दूसरा के संग में जाता रह अतने अफसोस रही कि तू हमार ना भइल।
1: चुप रह, हमके माफ कर दो।

0: जाता नहीं जान, अपन ख्याल रखिया।
1: जान, अकेले खुश रहिया।
2: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपने भाषा की पहचान, रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: हेलो।
1: हाँ हेलो।
0: हाँ सोना।
1: हाँ कौन?
0: अवनतनी कोना।
1: अरे कौन बोल रहे हो?
0: अरे हम तार पूछू बेबी, नंबर भी डिलीट कर दियो क्या?
1: अरे नहीं नहीं
0: भाई, अवन डीजे बजाता बस तार आवाज सुनाते नहीं के।
1: बस 2 मिनट रुक जाना।
0: हेलो।
1: हाँ हेलो।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: Now pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
2: The phone ring, they watch the head, don't get the hell.
3: नमस्ते नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त मनोरमा और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM और समय हो गया हेलो माई चॉइस कार्यक्रम का। तो समय के साथ बिल्कुल हाजिर हूं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
4: हेलो
5: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
4: और क्या हाल चाल है मैडम
5: जी? जी सब बढ़िया है, अपना बताइए।
4: बढ़िया है। और बारिश वारिश हो रहा है भोपाल में?
5: नहीं, बारिश
4: आज एक फरमाइश कारीलाल का फिल्म में का है। कोई
5: कौन सा
4: खेसारीलाल का वो कोई फिल्म में का गाना है, उसको गा करके बता दे क्या?
5: जी बिल्कुल।
4: हम धरती के राजा दूरानी नील गगन के, हम धरती के राजा दूरानी यही वाली गाना है।
5: और गाइए, आप तो बहुत अच्छा गा रहे हैं।
4: और याद नहीं खेलो मैडम?
5: चलिए कोनो बात नहीं खे। और गाना बताइए, उके उके सुनवाए के भी चाहता नहीं।
4: तो पहले आपको सुनवाना है ना, फिल्म में का गाना है उसका।
5: जी जी।
4: कोई फिल्म आया था, हम देखने के लिए गए थे श्याम हॉल में।
5: अच्छा।
4: 3 दिन हम लोग देखे थे लगता।
5: चलिए फिर तो प्ले करते हैं गाना आपका।
4: जी ठीक है, ओके मैडम,
5: सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिंग 90.5 जी। कैसे हैं आप?
1: ठीक बताइए
0: जी। मेरा भी बढ़िया। तो
1: जी क्रांति का कोई गाना बजा दीजिएगा, सब गाना अच्छा।
0: क्रांति में का कोई भी सॉन्ग?
1: हमारा ठुमका बदल गए चाहते भी, आपके जो इच्छा है जो भी गाना अच्छा है।
0: नहीं
1: कोई कर दीजिए,
0: आप ही बता देते तो सही रहता।
1: यही जो बताए हमारा ठुमका बदल गया चाहते,
0: क्या ये आप दुलाई मुझे गा के बताएंगे?
1: वही जो बताए वही
0: जी जी, वो तो ठीक है। आप दुलाई मुझे गा के बताते तो शायद सही रहता।
1: यहाँ पर दूसरी नहीं बैठा है हमको, चलो चलिए ठीक है दूसरी बार गा लीजिए।
0: चलिए ठीक है। पर गाना सुनवाना भी चाहते हैं किसी को?
1: रजाक है, रफीक है, नूर मोहम्मद है, इम्तियाज है और आप है, आपका टीम है। उस दिन जो सोमवार को रिकॉर्डिंग किए थे वो टावर नहीं मिल रहा था, पता ना दोबारा लग भी नहीं रहा, याद है ना?
0: जो सोमवार को रिकॉर्डिंग हुआ था तो बच चुका है।
1: बच चुका है, मैं सोचा कि रिकॉर्डिंग कुछ गर्ज फिल्म का इसे बताया था, हम सोचा कि चलिए कट गया था, रिकॉर्डिंग हुआ भी नहीं इसलिए।
0: जी तो आप गाना बताएंगे तो रिकॉर्ड हुआ होगा, थोड़ा देर बच गया होगा। चलिए फिर तो ये वाला गाना आप प्ले करते हैं।
1: ठीक है
0: जी, सबके साथ रेडियो 90.4
1: नमस्ते
0: नमस्ते।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से। तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: हेलो मैडम, नमस्कार।
3: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
2: जी, हमको गाना सुनना है मैडम।
3: गाना सुनवाएंगे, नाम बता दीजिए अपना।
2: मेरा नाम है मन्नान, कपरपुरा से बोल रहा हूँ।
3: जी, और कैसे हैं आप?
2: पहले से उतना अच्छे नहीं है।
3: क्या हो गया है?
2: पहले से उतना अच्छा नहीं है इसलिए कि आजकल कॉल हम नहीं कर रहे हैं गाना के लिए।
3: अच्छा जी, ऐसा क्या?
2: आज क्या मन में आया है कि कॉल कर लिए हैं?
3: जी, तो कोई प्रॉब्लम हुआ जो कॉल नहीं कर रहे?
2: नहीं हुआ, नहीं है। आप लोग थोड़ा सा वो जो 1 बजे वाला 12 बजे वाला प्रोग्राम में आप लोग कॉल उठाते नहीं है, कोई प्रॉब्लम है।

0: जी, तो क्या है ना कि अलाउ नहीं होगा, इसीलिए भारती जी कॉल नहीं उठाती होंगी।
1: हाँ वही। अच्छा भारती जी नहीं बोल रही, मनोरमा बोल रही हैं।
0: जी हाँ।
1: अच्छा हाँ, तो एक शिकायत तो था हम समझे कि भारती जी हैं, उन्हीं को शिकायत सुना रहे थे हम, है ना। तो हम नहीं समझते थे कि मनोरमा जी हैं, है ना। तो कोई बात नहीं है, अब वो रहती तो उनसे हम शिकायत करते और थोड़ा सा। हाँ, तो उसमें कोई नहीं है, तराजी के नहीं है, है ना। और रही बात कि हमको ये गाना सुनना है मैडम, ई आई का बहुत गाना बना है, तो ये गाना है मार दिए जाए कि छोड़ दिए जाए, ए आई वाला गाना है ना मैडम, यही गाना सुनवा दीजिएगा ना मैडम। अच्छा आप कौन कौन से प्रोग्राम में आती हैं मैडम?
0: मैं तो ऑल प्रोग्राम चलाती हूँ, लेकिन अभी तो 12 बजे वाला शो नहीं चला रही हूँ, क्योंकि जो अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ उसको भी तो बनाना पड़ता
1: है। इसके बाद कोई प्रोग्राम में आप नहीं है?
0: नहीं, इससे पहले तो कोई प्रोग्राम नहीं है।
1: ओ, आपको यही प्रोग्राम दे दिया गया कि आप यही बनाओ और बजाओ, है तो मिलना चाहिए, और भी कोई प्रोग्राम तो मिलना चाहिए, जैसे उनको जो है भारती जी को मिला है तो एक दो प्रोग्राम तो करती है, आपको भी मिलना चाहिए, क्योंकि आपको भी कुछ दिन हो गया रेडियो स्टेशन में काम करते हुए। वैसे तो रेडियो इंजन तो बहुत ऊंचाई पर तो चला गया है, और रहा के जो जो आदमी आ रहे हैं तो उन लोगों को प्रोग्राम मिलना चाहिए, कोई कोई भी प्रोग्राम, जैसे मान लीजिए कि कोई डॉक्टर आता है उसे सवाल जवाब करना, कोई कोई बात पे जो है सवाल जवाब करना, या कोई आर्ट बनाना, है ना। तो ये सब होता है तो अच्छा लगता है थोड़ा सा। तो ज्यादा विशेष बात नहीं है मैडम, यही बात था कि हमको अभी आई वाला जो है गाना वो सुनवा दीजिएगा। डेडिकेट तो अब क्या चाहे, मनोरम जी के खास ये गाना रहेगा मेरे तरफ से, डेलीकेट मार दिए जाए कि छोड़, और किसी को नहीं देंगे, आज मनोरमा जी को दे रहे हैं डेलीकेट ये गाना। आप गाना को फुल एंजॉय कराइए, सुनाइए गाना, ताकि हम भी सुन ले, आज बज जाएगा मैडम।
0: जी जी, पूरा कोशिश रहेगा।
1: हाँ तो पूरा कोशिश करके आज बजाइएगा, 5 बजे एकदम रेडियो खोल के हम बैठे रहेंगे।
0: जी जी बिल्कुल, ले करते हैं गाना आपका, सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: हेलो
1: हेलो।
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगू 90.5 FM में। नमस्ते। गाना सुनाएंगे, नाम बता दीजिए अपना।
1: साहिल कुमार अहमदा।
0: साहिल कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: अहमदा।
0: अच्छा, तो साहिल जी क्या हो रहा था अभी?
1: अभी कॉल कर रहे थे।
0: अच्छा, तो चलिए कॉल तो लग गया। क्या है
1: आपकी फिल्म का कोई भी गाना बजा दिए?
0: कोई भी और सुनाना नहीं चाहती किसी को?
1: जितने भी रेडियो में।
0: ओके साहिल जी, तो फिर मैं गाना प्ले करती हूँ आपका।
1: थैंक यू मैम।
0: जी सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.5।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: Jab phone ki ghanti bajti hai to kehte hain hello.
4: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: हेलो
5: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
6: गुड मॉर्निंग मैम।
5: गुड मॉर्निंग,
6: बात नहीं बोल रही क्या?
5: नहीं जी, मैं मनोरमा।
6: ओह मनोरमा मैम, थैंक यू मैम, आपको गाना सुनाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू मैम। आप हमारी बहू का बहुत अच्छा गाना सुनाए जन्मदिन पे, बहुत अच्छा लगा मैम। तो मैम अभी क्या हो रही है?
5: कुछ नहीं, बस आप लोगों से बातें हो रही हैं।
6: ओ, नाश्ता तो हो गई?
5: जी जी, और आपकी है?
6: आप? बिल्कुल बिल्कुल मैम, बस नाश्ता तो करके अभी बैठे हैं। कॉल लगा रहे थे, बिजी बिजी बता रहा था। हम तो सोचे कि आज लगेगा नहीं, कम से कम मैम को थैंक यू बोल दे गाना बजाने के लिए। मैंने एक गाना सुना था आज।
5: जी बता दीजिए।
6: वो गाना है शोले फिल्म का, ये दोस्ती नहीं तोड़ेंगे।
5: क्या गाना आप मुझे गा के बता सकते हैं दो लाइन?
6: हम तो गाना गाते ही नहीं, आप बोल रहे थे।

0: जी
1: आप तो बहुत अच्छा गा रहे हैं।
0: कहाँ गए मैम, बहुत अच्छा, बहुत गंदा गाना गा।
1: नहीं नहीं बहुत ही अच्छा गा रहे थे आप।
0: बस हम चाहते हैं कि बस आप लोग तो इसी तरह से प्रेम मोहब्बत बना हो रहे थे, बस हम लोग को मनोरंजन करते रहे। मैम ये गाना कब तक बजेगा मैम?
1: ये गाना आपको शाम को चलेगा?
0: नहीं आप तो बोलते हैं शाम को और 3 दिन बाद बजता है मैम।
1: आप क्या करिएगा, बहुत सारे कॉल आए रहते हैं तो आगे पीछे हो जाता है।
0: हम इंतजार करते रहते हैं, अब मेरा गाना आएगा, अब मेरा गाना आएगा। जब नहीं गाना आता तो एकदम उदास हो जाते हैं। फिर सेकंड दिन इंतजार करते हैं, अब आएगा अब आएगा, फिर भी नहीं आता। फिर थर्ड दिन आता है गाना, हमें बहुत खुशी होती है।
1: सुना दिया जाता है ये गाना आपका 2 दिन में सुना दिया जाता है, या तो आज नहीं तो कल।
0: तो आज तो फ्राइडे है मैम
1: जी,
0: तो मंडे को हो जाएगा ना, सैटरडे को।
1: जी
0: मैम बहुत बहुत बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत खुशी मिलती है। बहू भी बहुत खुश थी कि हमारे जन्मदिन पे आप गाना, बहुत नाइस सॉन्ग था मैम, बहुत नाइस सॉन्ग। हमने बोले थे कि आप अपना पसंद से एक गाना गाइए बजवाइएगा, बहुत अच्छा लगा मैम। इसके लिए बहुत थैंक यू, आप स्वस्थ रहे मस्त रहे, इसी तरह हम लोग को एंजॉय करते रहे। थैंक यू मैम
1: जी, मोस्ट वेलकम। वैसे नाम बता दीजिए अपना।
0: मेरा नाम है शंकर गुप्ता, मैं गया जी से बोल रहा हूँ, बोध गया से।
1: अच्छा जी
0: जी, तो जी मैम, थैंक यू मैम।
1: गाना प्ले करते हैं।
0: थैंक यू मैम
1: जी। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: ठीक है मैम, थैंक यू।

0: हेलो,
1: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: नमस्कार मैम।
1: नमस्कार
0: गाना सुनने का मैम।
1: जी गाना सुना, नाम बता दिया अपन।
0: सुधीश कुशवाहा।
1: सुधीश
0: जी।
1: अच्छा जी, तो कैसे हैं आप?
0: मैम
1: नाश्ता वास्ता भैया?
0: नाश्ता खराब सब हो गई। आप कौन?
1: हमारे भी हो गई बा।
0: आज कल प्रोग्राम लेके चलो,
1: वो भी चली बहुत जल्दी, दो तीन दिन में वो चालू हो जाए।
0: आज कल हमारा फनी
1: आवाज की फरमाइश
0: फरमाइश सुना दी। हल्का जाना पर देसी साथ क्या निभाओगे?
1: कौन सा?
0: तीन के पैर पर देसी साथ क्या निभाओगे?
1: तारीख जाना गा के बता सकते नहीं?
0: ना गए देसी की उतना भाई गाना याद रह लगे जाओ।
1: अच्छा अच्छा, चलो इतना बात नहीं चल रही। गाना के सुनाए के विचार थे
0: नहीं?
1: ओके, तो चलिए फिर प्ले करते हैं सब गाना।
0: जी मैम।
1: जी सुनत रही सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
1: Pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
3: The phone ring, de bajti hai to kehte hain hello.
4: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंग 90.4 FM में।
6: नमस्कार मैम।
5: नमस्कार,
6: भारती मैम बोल रहे हैं?
5: नहीं,
6: मनोज मैम बोल रहे हैं।
5: जी,
6: कैसी है मैम?
5: जी मैं खुश हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
6: जी मैम, हम भी अच्छे हैं। और सब आगे लोग कैसे हैं?
5: जी सब कोई बढ़िया है।
6: जी मेरा नाम पप्पू कुमार है और अरौना बढ़रिया से बोल रहा हूँ। तो मैम गाना सुना दीजिए हमको।
5: बता दीजिए।
6: तीज का गाना कुछ अच्छे कलाकार का सुना दीजिए।
5: तीज का?
6: जी जी।
5: और जो गाना ये बताया वो डेडिकेट भी है?
6: वो रेडियो रिमझिम जितने भी श्रोता सुन रहे हैं सभी सुनेंगे। और मैम आज बज जाएगा?
5: आज नहीं तो कल बज ही जाएगा।
6: जी कैसे, आज हम जा रहे हैं गोपालगंज ही, तो सुन रहे थे कि वहीं से हम सुन ले आज।
5: बिल्कुल
6: ठीक है मैम, तो गाना सुनवा दीजिएगा और तीज के सभी भाई और बहनों को बधाई।
5: जी जी, आपको भी।
6: जी मैम।
5: जी तो प्ले करते हैं, सुनते रहिए सब रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
6: थैंक यू मैम।
5: जी वेलकम।

0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंग 90.4 FM में। अभी कैसे हैं आप? तो क्या हो रहा है, क्या करते हैं आप?
1: मैं तो कीपर की नौकरी करता हूँ बाराबंकी में।
0: अच्छा जी, तो क्या है आपकी फरमाइश?
1: फरमाइश है, गाना है ना, तुम याद आया करो, याद आने से पहले आ जाया करो
0: जी। गाना किसी को सुनाना भी चाहते हैं आप?
1: गाना अपनी वाइफ को, आपको, तमाम रेडियो रिंग सुनने वाले श्रोताओं को और रेडियो रिंग परिवार को।
0: ओके जी, तो फिर प्ले करते हैं आपका सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंग 90.4 FM।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: हेलो
3: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4।
2: सलाम मैम।
3: वालेकुम अस्सलाम।
2: कैसे हैं मैम?
3: जी मैं ठीक हूँ, आप बताइए।
2: जी हम भी अच्छे हैं। मनोरमा मैम
3: जी,
2: हेलो माय चॉइस में आपका भी स्वागत है हमारे साथ।
3: जी।
2: और बताइए मैम, नाश्ता हो गया?
3: हाँ, नाश्ता तो हो गया। और आपका?
2: जी हमारा भी हो गया। चलिए तो नाम बता देते हैं। मेरा नाम सफरोज अली, गोपालगंज से।
3: जी, गोपालगंज में कहाँ?
2: गोपालगंज में गाँव है आटिल टोला, वहीं से। अभी फिलहाल मैं गोपालगंज टाउन में ही है।
3: कहाँ, किस जगह?
2: फिलहाल मैं अभी चंद्र रोड में है।
3: अच्छा, तो वहीं जाते हैं?
2: नहीं, घर तो हमारा आकिल टोला गांव में है।
3: तो फिर यहाँ पे
2: काम करते हैं मैम।
3: अच्छा जी,
2: शॉप है अपनी।
3: चलिए बहुत अच्छी की बात है
2: जी। हम कहीं भी रहते हैं रेडियो सुनते रहते हैं और जुड़ते रहते हैं।
3: जी, चलिए आपको दिल से धन्यवाद।
2: मैम एक बात बताते हैं आपको, मतलब रेडियो हमको इतना लगाव हो गया ना, इसके अलावा कुछ भी सुनने का हमको मन ही नहीं करता। हाँ मैम, आपको चले ना चले लेकिन सुनते रहते हैं।
3: तो भी बहुत जल्दी चलने वाला है
2: वाला, तो नहीं चल रहा है तो मन नहीं लग रहा है मैम। कोशिश कीजिए चलाने का।
3: जी, बहुत जल्द चलेगा।
2: और ये तो चलता ही रहता है मैम। तो हमको आज एक भोजपुरी सॉन्ग सुनाइए, हिंदी तो हमेशा सुनते ही है।
3: बता रही
2: है। गाने का नाम है याद है, गाने का नाम है याद और प्रमोद करेनी का आवाज है, यही सुनना है।
3: गाने के बोल,
2: गाने का बोल यही है याद, ऐसा ही कुछ नाम है गाने का।
3: क्या बोलेंगे कि नहीं बता सकते हैं?
2: ये वाला गाना तो हमको खुद याद नहीं, लेकिन कहीं पे सुने थे, बहुत अच्छा लगा हमको, इसलिए सोचे कि यही वाला सुन ले आज। याद ऐसा ही करके सर्च कीजिएगा, आ जाएगा।
3: ये गाना आप डेडिकेट भी करना चाहते हैं?
2: डेडिकेट है सबसे पहले आपको, भारती मैम को और सभी रेडियो दोस्त को। कोई हमको तो डेडिकेट करता नहीं, लेकिन हम सबको करते हैं।
3: और सबको करे,
2: और चलते चलते तो ये एक बात बोलेंगे मैम। उस दिन मेरा फर्स्ट टाइम बजा थी, इसके लिए हम इतना खुश है, आपको मतलब बता नहीं सकते कितना खुश है, लेकिन बहुत खुश है। बुधवार को फर्स्ट टाइम बज गया मेरा। हाँ मैम, फर्स्ट लगाए हैं, 2-3 मिनट पहले से लगा रहे थे।
3: चलिए प्ले करते हैं गाना।
2: जी मैम, हमको रेडियो का रूल पता हो गया है, इसलिए बहुत पुराना है, इसलिए कैसे कब कॉल करना है। चलिए मैम, तो एडवांस में धन्यवाद।
3: तो प्ले करते हैं।
2: बाय
3: बाय।

0: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंची 90.4 FM में।
1: नमस्ते।
0: नमस्ते जी। ठीक था, अपन
1: बताएंगे।
0: तबियत ठीक नहीं के का जी?
1: ठीक हुआ।
0: बहुत आवाज स्लो आवा था। अच्छा, हाँ हाँ हो गई बार और भाई
1: लड़ी।
0: ठीक है, तो क्या बात की फरमाइश?
1: हिंदी सॉन्ग बजा दी कौन?
0: अच्छा, बहुत आवाज स्लो आवा था।
2: अच्छा,
0: हेलो
1: बोली
0: कावलो, कुछ बोल बता जी। खुश नजर नहीं किया तो कुछ तो बात
1: बाइसे।
0: चले ठीक
2: है, फोन लगल है
0: तनिषा जागलो के
2: चौकिया पर चल बनी है। हम कहीं ना बताइए पति आवे लगल है।
0: चलिए रोग लो अपना में झगड़ा कर ले, हमारा से झगड़ा थोड़ी बा।
2: हाँ बात सही बा।
0: चलिए कोनो बात ना, लड़ाई ना कोई ला। और गाना जन बतनी है के सुनवाई की विचार तनी।
1: हाँ, सबसे पहले रहुआ के भारती दीदी के स्वामी दीदी के जितना सुनता है लोग हम लोग के और हम
2: सुनवा दीदी। हाँ जी, एक शिशिया मिठाई लिया खिया जन तो ना खिल दिया।
0: हाँ, मिठाई आ जी शाम के।
2: हाँ,
0: और अपन भैया के ना सुना है
1: ना?
0: अच्छा चलिए ठीक बात, तो गाना प्ले करते नहीं।
1: ठीक
0: जी, गाना प्ले करते नहीं, इंजॉय करेगा।
1: ठीक बात।
2: नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते।

0: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगजिम 90.4 FM में।
3: नमस्ते जी।
2: नमस्ते।
3: ना
2: रघु से कहे कि क्या हम
3: ना
2: कहा फोन आई था
3: ना फोन आई ला रघु देखी दो पानी पिए थे
2: कैमरा लगे मानी क्या
3: कैमरा नहीं लगे मैंने और मानी की पानी पिए थे फोन ना उठा कोई नहीं है।
2: हाँ हो सकता है।
3: अबे आधा 20-25 मिनट होता है और अगर ना उठा नहीं तो हम पच्चीस मिनट बताएंगे फोन में
2: झगड़ा झगड़ा मत करी लो, मान जान थोड़ा देर बाद। अभी तो आप नाम बता दी। कहाँ से? कौन सा
3: भोजपुरी सॉन्ग?
2: भोजपुरी में कौन सा?
3: भोजपुरी में भाई बजाती हूँ, जय हो ना पूरी बुआ बोलाऊंगा जदिया मारे बंगली की
2: अरे बता के बता सकता
3: नहीं है ना लगे
2: माँ समझ में ना आई गई बता दे
3: मारे यही
2: जी यसन मारे के भी चाहत
3: के लिए स्पेशल में करिश्मा जी के, सोनी दीदी के, भारती दीदी के और पूरा रेडियो रे निम्न के सुनने है। रौजा आजकल छुट्टी नहीं की मारे क्या दिन मेला घूमने का थी। हाँ ऐसे रोज रोज मेले रहा।
2: हाँ तो करे इंजॉय। चलिए तो फिर और गाना प्ले करता नहीं।
3: ठीक बात।
2: नमस्ते।

0: बहुत बहुत स्वागत
1: है। और बताइए
0: जी, सब बढ़िया है। आप बताइए अपना, आप कैसे हैं?
1: प्रभु की कृपा चल रहा है। आपको प्रोग्राम सुनने मेरे को बहुत अच्छा लगता है।
0: अच्छा जी,
1: आपका क्या नाम हुआ मैडम?
0: जी मेरा नाम मनोरमा।
1: मनोरमा जी है
0: जी।
1: और कोई भारतीय जी है?
0: हाँ हाँ उतनी है।
1: वो भी आती है
0: जी।
1: अच्छा तो ये बताइए कि मेरा ये फरमाशी गाना कब सुनाएंगे?
0: जी
1: गाना मेरे को बाद मिल जाएगा फरमाशी जो बोलूंगा।
0: ये गाना आपका आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा, दोनों दिनों में।
1: हाँ
0: जी।
1: आज का समय चला गया?
0: नहीं, आज भी बच सकता है। अगर बहुत सारे कॉल्स आए हुए तो कॉल आगे पीछे हो सकते हैं।
1: अच्छा नहीं, कल 9 बजे से?
0: नहीं, शाम को 5 से 7 के बीच।
1: शाम को 5 से 7 के बीच आज भी
0: चल सकता है? आज भी चल सकता है।
1: अच्छा आज भी चल सकता है, कोई गारंटी नहीं है?
0: नहीं,
1: ऐसा नियम हो ना कि जिस दिन हम फरमाइशी करते हैं उसी दिन शाम को गाना आ जाए तो अच्छी उत्तम हो।
0: जी जी, वो तो वैसे ही होता है, लेकिन
1: जैसे हम आज अभी रिकॉर्डिंग करवाया, अभी फोन से बात किया और हमारा शाम को 5 बजे गाना मिल जाए मेरा पसंद का, वो आदमी एकदम मैंने इससे कोई ठिकाना नहीं कब मिलेगा, तो फिर आदमी विचलित हो जाएगा ना।
0: जी जी बिल्कुल, तो वैसे ही होता है। लेकिन
1: आप लोग का भाई गोपालगंज में रेलवे स्टेशन 4 चांद लगा दिया है और आगे बढ़ेगा। ये तो बात मानना पड़ेगा भाई, हम भी शिवाज जिला बसौली से बोल रहे हैं।
0: जी तो क्या आप रेडियो रेंजी में पहली बार कॉल किए हैं?
1: नहीं, एक बार इसको पहले भी किया था लेकिन मेरा फरमाइशी आया ही नहीं, कब आया पता ही नहीं चला।
0: अच्छा जी, तो सुने नहीं होंगे आप?
1: नहीं सुने नहीं, 2-3 दिन लगातार हम सुने, लेकिन वो क्या ना है प्रभु की कृपा से मेरे को कब आया कब नहीं गया पता ही नहीं चला, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अगर डिटो रहेगा ना कि आज शाम को मेरा फरमाइशी पूरा हो जाएगा या कल शाम को पूरा हो जाएगा या सुबह पूरा हो जाएगा कल 9 बजे, मतलब शाम को ही पूरा होता है सुबह होता है?
0: जी आपका ये कॉल जो रिकॉर्ड करा रहे हैं शाम को भी पूरा हो सकता है।
1: नहीं तो कल शाम को?
0: नहीं तो कल शाम तक फिक्स है।
1: अच्छा कल शाम को फिक्स है। 5 से 7 का हम इंतजार करते हैं और मेरा गाना का है यशोमती मैया से बोले नंदलाला राधा की गोरी मैं क्यों काला।
0: जी वैसे आप अपना नाम नहीं बताए?
1: हाँ जी मेरा नाम प्रभुनाथ सिंह है, आप पूछे नहीं मेरे को।
0: और कहाँ से हैं आप?
1: और मैं हूँ यहाँ तेलिया बसौली नवीन बाजार से।
0: ये कहाँ पड़ता है?
1: ये हरदिया से पश्चिम पूरब पड़ता है।
0: अच्छा जी,
1: हरदिया मोड़ से पूरब पड़ता है 6-7 किलोमीटर बसौली।
0: जी
1: मैं वहीं से बोल रहा हूँ और मेहरबानी करके अब मेरा गाना सुनाइए ताकि मेरे को खुशी होगा, बाकी का गाना आदमी नहीं लेता है लेकिन आप लोगों से बातचीत करने में आनंद आता है, वो कुछ और है।
0: जी जी, तो मैं पूरा कोशिश करूंगी कि ये गाना आपका आज ही चले।
1: आज प्रयत्न कीजिए, आज शाम को 5 बजे चल जा रहे थे, कल तुम्हारे श्योर 100% मैं आज 5 बजे और कल 5 बजे में इंतजार करूंगा आपका। है
0: जी बिल्कुल,
1: चलिए ओके थैंक यू।
0: और ये गाना किसी को सुनाना भी चाहते हैं?
1: हमारे दोस्त जो सुनेंगे सारा तो मेरा पूरा रिंझिन का सोता है, सब मेरा दोस्त है सब सुनेंगे, अकेला थोड़े सुनेंगे, आप भी सुनिएगा।
0: जी बिल्कुल, तो फिर प्ले गाना आपका।
1: हाँ जी प्ले कीजिए।
0: रेडियो रिंझिन 90.4 FM में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपका

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: Jab phone ki ghanti bajti hai to kehte hain hello.
5: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो
7: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
6: जी नमस्कार।
7: नमस्कार,
6: क्या हाल खबर है जी?
7: जी बिल्कुल बढ़िया।
6: आवाज पहचानी आपने?
7: पहचाना सा तो लग रहा है।
6: बताइए।
7: सही बताते हैं, आप ही बताते तो सही रहता।
6: पहचान भी गई है, मनोरमा दिया कर रहे थे, आप ही बता दीजिए।
7: पहचान गया लेकिन कहीं कुछ और नाम रख दे आपको बुरा लगे।
6: कहा बुरा लगेगा, एक बार बताइए तो सही।
7: जी जी, तो मैं आपको बता दूँ की आप दिलीप जी बोल रहे हैं ना?
6: जी दिलीप जी ही बोलते हैं। मैं तो 11 बजे 10 मिनट ट्राई करते करते 11:16 हो गया। उस समय से प्रतीक्षाएं कर रहा हूँ, लगा रहा हूँ, लेकिन लग ही नहीं रहा है। जिस तरह की सबको 10 मिनट से लगता है ट्राई करने के लिए। और बताइए कैसी हैं आप?
7: मैं तो ठीक हूँ, आप अपना बताइए, आप कैसे हैं?
6: हम भी बढ़िया हैं, बस अभी गाड़ी पार्किंग से निकाले हैं, सोचे हैं कि पहले मनोरमा जी से बात कर ले, उसके बाद निकले हैं। क्या है कि सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सभी आदमी को प्रतीक्षा रहता है आपसे बात करने के लिए। क्योंकि ऐसे तो बात हो नहीं सकती, कॉल के माध्यम से ही बात हो सकती है।
7: जी जी।
6: तो मौसम कैसा है अभी दोपहर में? यहाँ तो गर्मी बहुत ज्यादा है।
7: इधर मौसम तो ठीक है, कभी धूप कभी छांव हो रहा है।
6: तो बारिश होने की चांस है कि नहीं?
7: बारिश तो होगी, ऐसा तो लग रहा है।
6: मौसम हो रहा है बारिश का। और भारती जी का क्या हाल चाल?
7: वो भी ठीक है,
6: बढ़िया ही होनी चाहिए। आप दोनों खुश और खुशहाल रहे।
7: दुआ प्यार से हम लोग भी,
6: ऊपर वाले की दुआ होता है, सब ऊपर वाले की कृपा होता है, लेकिन नीचे वाले का वही होता है कि मुख से आवाज आता है कि हाँ आप लोग ठीक रहे, तो ऊपर वाले की कृपा से सब कुछ आवाज निकलती रहती है। तो नशापन सही से हुआ ना?
7: हाँ हाँ हो गया। रात किए हैं?
6: हाँ हाँ हम भी किए हुए हैं। अभी तो मैं सोच रहा हूँ कि आप बढ़िया से किए हैं कि नहीं। तो 12:30 तक आपको जो है ना कॉल पे बस आपको जवाब करना पड़ेगा। पानी साथ में लेके बैठिएगा, ठंडा बोतल, कहीं खराब ना हो
7: जी।
6: तो एक जाना है हमारी दुलारिया हो, चले जाइए ना सेवा करके। हम
7: क्या बोलेंगे के बता सकते हैं?
6: उसका बोल है, हमारी दुलारिया चली गई हम के हमार। ओकरा बाद जेकर बानी ले गई है लास्ट में बटे, तो ये भोजपुरी बहुत अच्छा गाना बटे, कहीं ना देगा। सबसे पहले आपको और भारती जी हैं, और सविता जी, बबीता जी, गुड़िया जी, नेहा जी, मीका भारती जी हैं, सगीर अंसारी, महबूब आलम, मुस्तफा आलम, सोनू भाई, आजाद भाई और अफसर भाई हैं, अहमद भाई हैं, और इसके बाद जो है अफसरी जी हैं, और सभी दोस्तों के गाना जो रिक्वेस्ट है तो सुना दीजिएगा। बाकी जो है और भी लाइन में लगे होंगे, तो नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो जिम 90.4 एफएम में।
1: मनोरमा मैम प्रणाम।
0: प्रणाम।
1: एक क्वेश्चन बानी गणेश कुमार मिश्रा दिल्ली से।
0: जी जी बानी अपन बताई
1: पहचाना तनी।
0: हाँ हाँ पहचाना तनी।
1: अच्छा क्वेश्चन बानी तबियत पानी
0: सब ठीक ठाक बा। हम ठीक बानी।
1: मौसम बदल था
0: कहीं रहुआ ठीक बानी
1: ठीक है बानी काम पर बानी आज तनी जल्दी लग गए 20:30 बार में लग गई।
0: हाँ वे कहे रही बड़ा जल्दी लग गई है।
1: 18:30 लगनी तो लग गई लगा दी ऐसे निश्चिंत हो जाए टेंशन ना रही। नाश्ता कहे के आदमी 9 बजे काम पर लगे नजदीके बा काम नजदीके बा 2 मिनट लगे नाश्ता तनी कह के आदमी 9 बजे आई ओकर बाद काम पर लगी। अभी एगो टेंशन रहे लगी फोन लग जाए एक बाद में काम होत रही नाश्ता पानी के न आज तो रौड़े के सुनाए के बाद बीस बार चुन के रख ले बनी एकदम रौड़े खाती वही तो बताई।
0: हाँ हाँ बिल्कुल बताई
1: रौड़े अपने से फरमाई
0: ना ना राउर फरमाइश हम बजाय रौड़े बताई तो पहले।
1: अरे हमारे ये फरमाइश बा सासु के न खरा ससुरा में झेल के पड़ी केतनो करबु पराई रोटिया के नहीं के पड़ी।
0: अच्छा ये गाना।
1: हाँ ये गाना
0: चली गाना तो ठीक
1: खास करके रौरा के आदारती जी के आयु केहू के नहीं सुनाये के।
0: हाँ
1: आयु केहू के नहीं सुनाये के तुम्हें आदमी सुनाये को।
0: अच्छा अच्छा चलिए ठीक बा
1: सुना दे बेरा की। अच्छा
0: शाम के
1: हमारा अगला हफ्ता चली
0: काहे
1: काहे हमारा तो लास्ट में चलता
0: ना ना लास्ट में ना चली ठीक बा तो चलिए प्ले कर देना और गाना।
1: ठीक है प्ले करो ठीक बा। We'll be right back.

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: Jab phone ki ghanti bajti hai to kehte hain
4: दोस्तों। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM।
6: नमस्कार मैडम।
5: नमस्कार,
6: मैं रमार गुप्ता पहला खास से बोल रहा हूँ।
5: जी कैसे हैं आप?
6: बढ़िया है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। मिजाज का मौसम हुआ है, मिजाज का बहुत बढ़िया मौसम हुआ है।
5: अच्छा,
6: जी सुना है,
5: बता दीजिए।
6: गुलाम अली का कोई बढ़िया सा गजल
5: आप बता देते तो सही रहता।
6: गुलाम अली का कोई गजल हो और सुनवाना चाहते हैं सतीश साइकिल दुकान असंदापुर चौक और शंकर भाई से रिशिया हरपुर।
5: अच्छा चलिए, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
6: नमस्कार मैडम।
5: नमस्कार, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: और मैडम क्या हाल?
0: जी सब बढ़िया है, आप बताइए आप कैसे हैं?
1: बढ़िया है, मजे में है, काम कर रहे हैं।
0: अच्छा जी, वैसे क्या करते हैं आप?
1: सिलाई करता हूँ।
0: अच्छा जी जी, तो फिर क्या है आज की फरमाइश?
1: आज फरमाइश हमको बोल राधा बोल का वही टाइटल सॉन्ग है, बोल राधा बोल, तूने ये क्या किया।
0: जी जी,
1: और ये गाना जितना रेडियो सुनने वाले श्रोता है सबको सुनाना चाहता हूँ।
0: ओके जी, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
1: जी,
0: जी सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: Now pick it up,
1: hello.
0: Now pick your phone up,
1: hello.
0: Pick it up,
1: hello.
0: Now pick your phone up,
1: hello.
2: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो
3: हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो
2: भागे भागे फिरते हैं।
4: तो श्रोताओ, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं। नंबर है 8029494 पर कॉल करके। तो अब हमें दीजिए जाने की इजाज़त और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।
5: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
6: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
5: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से। आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

रंगत है, खुशबू है, नगमा है, जादू है।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: हम हैं इस पल।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

श्रीमन नित्य निकुंज बिहारिणे नमः। श्री बिहारी बिहारिणी जो जयति, श्री स्वामी हरिदासो विजयते तराम। ब्रजमंडल की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो हमारी श्यामाजू श्री राधा रानी है। जो ब्रजमंडल 84 कोस में फैला हुआ है, जिसमें कि श्री राधा रानी का हृदय स्वरूप हमारा श्रीधाम वृंदावन है। तो आइए मेरे साथ मिलकर युगल छवि का ध्यान करते हुए और श्री राधा नाम का आश्रय लेकर ब्रजमंडल के प्रमुख स्थानों का नाम लेते हुए श्रीधाम वृंदावन से अपनी यात्रा को प्रारंभ करिए और मेरा विश्वास

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।